आदा, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, आज इतवार हैं, शक समत 1948 के वैसाख महीने की 20 तारीख, मुताबिक 10 मई 2026 ईस्वी। समीन, सुबह के 6:31 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज़ होता है

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, आइए प्रोग्राम सुनते हैं सुबुगाही।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम का आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक और इसका तर्जमा सुनने से।

पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संती हे बेद जाति। पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल।

अगर इंसान ये तमन्ना करे कि उसका दिल खालिक कायनात का मस्कन बने तो इसके लिए जरूरी है कि वो उसी खालिक की तमाम मखलूकात से बिलोस मोहब्बत करे, उनकी सेवा करे और खुदा से अज्र की उम्मीद रखे। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है कि अगर किसी को समाज का कोई बुलंद पाया शख्स देखना हो तो उस शख्स की तलाश करे जो नरम दिल और इखलाक हुस्न का मालिक हो। उसी इंसान का जमीर जिंदा है, क्योंकि बद इखलाकी जमीर की मौत है। एक दानिश्वर का कौल है कि खुद एतमादी एक खूबी है। जिस इंसान ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया वो दूसरों के लिए भी काबिल एतमाद बन जाता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी।
2: आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
3: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झाः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम्, एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटिरूप्यकाणाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं

0: चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृतमहोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबंगालस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्रीसुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीयगृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीकेदलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये 9 मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-उत्तर-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरललक्षद्वीपदक्षिणकर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रकाशिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के

0: दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global centre of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support

0: है, एंजाइटी है।
1: देखिए परवेज, मॉर्निंग का टाइम है, यही कहना चाहेंगे अपने सभी दोस्तों से कि सुख की सैर में वो लुत्फ है जो कहीं और नहीं है। चलने वाला हर कदम जिंदगी में नूर भर देता है।
0: बिल्कुल सही सकीना जी, सुख की सैर जहनी सुकून के लिए भी मुफीद है। इससे खून साफ होता है, दिल मजबूत हो जाता है और हमारा जिस्म जो है
1: बिल्कुल चुस्त रहता है।
0: डॉक्टर्स भी इस बारे में हमेशा मशवरा देते हैं कि कम अज कम 30 मिनट सुबह की सैर जरूर की जाए।
1: बिल्कुल सही,
0: इससे जहनी थकावट जो है वो दूर हो जाती है।
1: देखिए जब हम जहनी थकावट की बात करते हैं, पहले तो हमने सेहत की बात की। जहनी सेहत बहुत मायने रखता है आज के दौर में। जब हम कहते हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सुकून नहीं है, और जब आप कहते हैं कि डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं 3 से 45 मिनट ऐसा कुछ वॉक करना चाहिए मॉर्निंग में, इससे यह होता है कि इंसान सारा दिन तवानाई के साथ काम कर सकता है। मगर ये स्पन्न माजन बेनिन करण मर्द हजरा तेल पथ्यम नबर नीनच कोशिश करा यूत कल पत डॉक्टर वनान वन शुगर या खुदा रचन पत बाकी बेमार नाल वाल मगर यह वनित कि कोशिश करें अच्छे बन हेल्थ कॉन्शियस,
0: बिल्कुल
1: फिटनेस कॉन्शियस, तेले गस इंसान मजबूर, तेले नेर सु सुबह मॉर्निंग वॉकस, तेले गस सु शामस चक्रस
0: आदत छु बनन पछुन आइ वरे आइ ती यवन किन
1: वक्त
0: ती यवन किन इंसान छु दपन ना अगर मैं रात 10 मिनट 20 मिनट वॉक कर
1: आज ती नेर ब
0: बिल्कुल आज ती नेर ब चूंकि अगर आज कुन रंग आवरे रसम ते छुस मगर तो कर ब 10 15 मिनट
1: बिल्कुल वुचस प्रत कुन गर चेस अगर वंकनस कत करो सुबुक टाइम छु सरी आसन वंकनस एस बोजन लगभग पन निम लिसनर छे या बाकी ती आज गनिश लट एस सोन चैनल ट्यून करमुत सु छुन कह गर यत मजन नफरस पनन दवा लिफाफ या दवा डबा आसे
0: बिल्कुल
1: वजह छु यी गनत के ओबेसिटी छे बॉडी डिशेप गछान डिशेप गछन पछे स्नेरान पत पछे सने स्पन्ने वापस शेप मज मगर सुचु वारिया मुश्किल गछान
0: वारिया मुश्किल गछान त लिहाजा वना ये चीज के प्रण अकात पे हम याद की प्राणो छ वनमुत हट गछन
1: मत मत गछन त ये वनो बे हेल्थ कॉन्शियस बनो फिटनेस कॉन्शियस बनो त फिलहाल बुझतो ये कशर बथान।

0: जी दोस्तों, मॉर्निंग शो पयाम सुबह आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ है परवेज अहमद, और कंट्रोल रूम में हमारे साथी हैं आईपी सिंह और नसीर अहमद। और दोस्तों को बता दें कि
1: आज जो है ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है।
0: जी बिल्कुल,
1: जारी है। इस साल का थीम है सड़कों पर चलने वालों, बशमूल पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए।
0: और परवेज ये भी है कि शहरों में रफ्तार की हद को कम करने और 30 किलोमीटर फी घंटे की जोनिंग पर जोर दिया जा रहा है, और कोशिश ये हो रही है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कम हो जाए।
1: पैदल चलने वालों और जो साइकिल सवार हैं या जो भी रोड पे सफर कर रहे हैं उनके लिए महफूज रास्तों की फराहमी भी एक मिशन है, एक मकसद है कि उनकी जो सेफ्टी है उस पे जोर दिया जाए।
0: और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगही पैदा करना, या ये कह सकते हैं कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल, हेलमेट और तेज रफ्तार से गुरेज भी इस बेदारी का एक कह सकते हिस्सा है, वो जारी मुहिम है। लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भी इसमें हद से ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो जो बच्चे डिमांडिंग बन गए हैं, अंडर एज बच्चे भी ड्राइविंग करते हैं, अगर 18 साल की एज के बाद आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, वो बच्चे अब भी देखा गया है कि वो रोड पे गाड़ी चला रहा है
1: 15 साल की उम्र के बच्चे।
0: तो
1: जो
0: देखिए, जब जिंदगी है, ये कह सकते हैं कि जिंदगी की शाहरा वन वे है,
1: सही बात,
0: वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी जब है तभी आप बाकी आसाइश अवेल कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को अवेयर रहने की जरूरत है, मोहतात रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बच्चे की आए दिन डिमांड्स पूरी करते हैं। इसी पर वनान थे, अगर बच्चे मज डिमांड कर कुछ चीज मगर कह हफ्ते गस रुकन तेमिस गस जिद कर तेम सू जिद गस वो कत हद तम ग थोड़ा हेकव टॉलरेट कर हको अम सी डिमांड कह कल रुक व कि मोल मोज स्कूटी वातना गाड़ी वातना तो
1: बराबर।
0: तो इस वक्त हमने मुनासिब जाना कि SSP ट्रैफिक सिटी एजाज अहमद भट्ट साहब से फोन पे बात की जाए आज के दिन के हवाले से, तो शो में इनका वेलकम करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी एजाज साहब, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2026 का बुनियादी मकसद सड़कों पर होने वाले हादसात को कम करना है और महफूज नकलो हमल को फरोग देना है। अब चूंकि एक की लापरवाही दूसरे की मौत की वजह बन जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस वीक पे या रोड सेफ्टी वीक के बारे में या एक्सीडेंट्स के बारे में?
2: देखिये, हम लोगों को हमेशा ये

0: समझाते रहते हैं। सड़कों पे भी जब हम होते हैं, वहां भी हम, जहां भी हमसे हो सकता है, हम बच्चों को स्पेशली और जवानों को समझाते हैं कि सेफ्टी कैसे कायम की जाए, वो सेफ कैसे रहेंगे, ड्राइविंग कैसे सेफली कर लेंगे, और जब घर से निकलें क्या क्या चीजें लाजमी होनी चाहिए जिस वजह से आगे जाके उनको दुश्वारी ना हो जाए
1: जी।
0: उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि अगर उनके पास बाइक है और लाइसेंस है, कागज बराबर हैं, तभी जाके बाहर निकले। और अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो अपना क्रैश हेलमेट साथ ले लें और पहने, और एक और क्रैश हेलमेट भी साथ रखे, अगर उनके साथ कोई दोस्त है उसको भी पहनाए। ये एक बहुत ही अहम चीज है जो हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स, जैसे आपने अभी कहा कि पेरेंट्स इस चीज को इग्नोर करते हैं,
1: बिल्कुल
0: बच्चों को वो लाइटली ले लेते हैं इस बात का। सुबह सवेरे पेरेंट्स को चाहिए, अगर ये बच्चा निकल रहा है इसको अच्छी तरह से देखें, इसने अपना जो है पूरा गियर पहन रखा है, हेलमेट पहन रखा है, तभी उसको अलाउ कर लें। दूसरा, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, पीक टाइम में जो है अवॉइड करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है, अपने इंस्टीट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन सेंटर्स जाना होता है, तो उनको देर हो सकती है। हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हम हमसे हो सके तो जो हमारी सिटीज हैं वो सेफ रहे, एक्सीडेंट फ्री रहे। आपको जानते हुए ये खुशी हो जाएगी कि इस बार जो है J&K का जो एक्सीडेंट का फिगर है बहुत कम हो चुका है, उसमें श्रीनगर का स्पेशली बहुत ही कम रहा, ओनली 35 एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, फैटल एक्सीडेंट्स। तो हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा एक्सीडेंट्स ना हो जाए, लोग सड़कों पे जब आ जाएं तो उनको सेफ्टी जो है वो फील हो जाए। वो तभी हो जाएगी जब ट्रैफिक अमला वहां होता है और उनकी जो है नकल हरकत पे नजर रख रहा है
1: जी।
0: उसके अलावा जो बाकी गाड़ियां जो प्राइवेट व्हीकल चलाते हैं उन पर भी हमारी नजर है। हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें हमने इस वक्त श्रीनगर में 117 के करीब ग्रिड्स हैं हमारे जो इस वक्त चल रहे हैं। हालांकि डाउनटाउन में कोई प्रेजेंस नहीं थी तो वहां भी हमने फुटफॉल अपना रख लिया है। काफी सारे इंटरसेक्शन पे हमने अपने नफरी जो लगा रखा है इस वक्त, मैनुअली हम कंट्रोल ट्रैफिक को कर रहे हैं और साथ साथ में हमें ऑटोमेशन पे भी आ रहे हैं। हमारा जो ITMS सिस्टम जो चल रहा है वो भी इन चीजों पे नजर रखे हुए है। कुल मिला के ये जो है पूरी सोसाइटी को भी सोचना है और हमें भी ये उस पे एज पेरेंट्स, एज जो एल्डर्स है, ये कोशिश करनी है कि ये ट्रैफिक कवानीन के बारे में बच्चों को बचपन से ही, स्कूल से ही और अपने मोहल्ले से ही, जहां से भी जितना भी हो सके उनको एजुकेट किया जाए।
1: जी, और सबसे बड़ी बात है तेज रफ्तारी पे कदगन लगनी चाहिए। जो फास्ट ड्राइविंग या तेज जो होता है हवस मंच बच उड़ान, उसमें भी देखिए अगर आप स्ट्रिक्ट रहें तो कह सकते हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि एक जिंदगी बहुत मायने रखती है।
2: और एजाज साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, कल शाम होते होते एक खबर सुनने को मिली कि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें बताया गया है कि जहां पर भी जो ट्रैफिक के जवान काम करते होंगे वो अपने मोबाइल फोन से किसी गाड़ी की तस्वीर नहीं ले सकते और वो चालान जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा।
0: देखिए, मैं दो चीजों पे, जो आपने दो सवाल उठाए एक ही बार
1: जी।
0: एक सवाल तो आपका ये था कि इसको जो बच्चे हैं, बच्चों को कैसे बचाया जाए एक्सीडेंट से, रैश ड्राइविंग जो ये कर रहे हैं, उस पे हमारा पिछले 6 महीने से हमारा फोकस रहा है। हमने कोशिश की है कि माइनर्स को जहां भी हमें मिलेंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमने, आपने देखा भी होगा, काफी स्टंट ड्राइवर से जो थोड़ा शोकेसिंग करते थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, फिर लोगों को रागिब करते थे इस तरफ, तो उनको हमने लाया, उनको काउंसलिंग की, उनके खिलाफ एक्शन भी ली, उनके पेरेंट्स को भी समझाया और उसको हमने पब्लिकली भी डिस्प्ले किया ताकि एक मैसेज मिले सभी को। उससे असर ये रहा कि आज की डेट में हमें स्टंट बाइकिंग बहुत कम मिल रही है। इस वक्त जो हमें रिपोर्ट आ रहे हैं वो राजबाग सेक्टर में आ रहे हैं, वो भी देर रात को, जहां हमारा अमला होता भी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमने अब रात को भी अपना अमला लगा रखा है। वहां पर हमारी प्रेजेंस राजबाग सेक्टर में भी होती है। तो कोशिश हमारी ये है कि पूरा श्रीनगर में जो है ट्रैफिक कामिंग की जाए, यानी कि काम तरीके से आराम से ट्रैफिक चले, कोई रैश ड्राइविंग ना करे और साथ साथ में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे।

0: जी
1: रही बात जो दूसरे दूसरा क्वेश्चन आपका रहा कि कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है,
0: जी
1: वो डायरेक्शन कोर्ट ने नहीं दी है, वो एक वकील हजरत है,
0: जी
1: उसने अपने जो है कुछ चालान थे उसको रिसिंट करवाया कोर्ट
0: अच्छा
1: से।
0: जी
1: देखिए
0: जी
1: कोर्ट हैज द पावर्स टू रिसिंट एनी टाइप ऑफ चालान ऑन सम ग्राउंड जहां उनको लगता है कि इसमें सफिशियंट एविडेंस नहीं है।
0: जी
1: ये हर एक केस में हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है।
0: जी
1: हमसे कभी कभार जो गलती हो जाती है, कभी एविडेंस इतनी क्लियर नहीं होती। सपोज किसी का फोटोग्राफ उठा दिया, उसको ब्लर आ गया,
0: जी
1: नंबर प्लेट पूरा नजर नहीं आ रहा है।
0: सही बात
1: अलबत्ता उनका ये कहना कि हम मोबाइल से चालान जनरेट करते हैं, ऐसा कोई एप्लीकेशन हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ मशीन है और पेपर चालान है जिससे हम चालान इशू करते हैं। देर इज नो मैकेनिज्म, अदर मैकेनिज्म कि जिससे हम चालान इशू कर लें। ये गलत नोशन है। अगर किसी ने कहा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता फोटो हम उठाते हैं एविडेंशियरी वैल्यू, वो हम एविडेंस रखते हैं। इसी तरह जब कोई कॉन्टेस्ट करता है तो उसको हम लोगों को दिखाते हैं, देखो जी भाई आप जो कह रहे हो आपने इस वायलेशन की है, उसका
0: जी
1: हमारे पास प्रूफ ये है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जजमत भट्ट साहब हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए सभी यही चाहते हैं कि सभी की जान बचे। पहले भी मैंने कहा कि जिंदगी की शाहराह वन वे है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो सो जिंदगी का मजा लीजिए और ड्राइविंग कीजिए। कोई ये मसला नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर अंडरएज है तो माँ बाप को सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं अपने लिए गलत कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए गलत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया, थैंक यू।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: इंजीनियरिंग में फ्यूचर बनाना है तो एनरोल योरसेल्फ इनटू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जुकुरा कैंपस। जुकुरा कैंपस के ओपन डे पर ऑन 11th ऑफ मई 2026 एक्सप्लोर कीजिए मॉडर्न लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, इनोवेशन स्पेसेस और इंटरैक्ट कीजिए एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। एडमिशन्स ओपन है बीटेक और एमटेक प्रोग्राम्स के लिए इन सिविल, मैकेनिकल, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी अदर कोर्सेज। एनएएसी A++ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टेड एकेडमिक एनवायरनमेंट में पाइए क्वालिटी एजुकेशन, प्लेसमेंट्स और फ्यूचर रेडी लर्निंग्स। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13th May 2026। तो इंतजार किस बात का, विजिट कीजिए iot.uok.edu.in इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वेयर इनोवेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी।
2: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
3: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
2: ओह,
3: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
2: भाई ऑफर तो ठीक है लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
3: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
2: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
5: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
6: पर क्या कर सकते हैं?
5: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
7: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
8: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
9: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
8: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
9: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
8: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
9: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
8: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
9: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
8: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
9: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
8: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
10: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
11: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
10: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
11: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुब।
12: यारो वन यारो वन।
10: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
11: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुब।

0: पयाम में सुब
1: पयाम सुब में हम आपके साथ हैं। मैं परवेज मीर
2: और मैं सकीना। संडे है तो संडे का थीम होता है गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि बर्लिन की चिड़ियाघर में दुनिया के मुअम्मर तरीन गोरेला फातू की 69वीं सालगिरह मनाई गई, जो जानवरों की देखभाल में एक मुनफरिद मिसाल है।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है और उम्मीद करते हैं हमारे,
2: ये कह सकते हैं कि साइंसी सकाफती एक संग मील है। और जब हम 69वीं सालगिरह की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी एज कह सकते हैं कि अगर हम जानवरों की बात करें
1: और ये बहुत एक अच्छी खबर है। और अब खेलों के जरिए जो है वो आगाही जो है, हम क्योंकि आगाज में हम बात कर रहे थे सेहत से मुतालिक, तो जब सेहत की बात आती है, वर्जिश की बात चलती है, खेलों की बात चलती है,
2: जी फिटनेस की बात चलती है।
1: इलाके डांगरपोरा में यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जोन ने मनुष्यात के खिलाफ आगही मुहिम के तहत खेलों की सरगर्मियों को फरोग दिया है, जिसे नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जा रहा है।
2: जी अच्छी बात है, अच्छा स्टेप है। तो सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए ही एक तहकीक सामने आई है जो माहिरीन ने, देखिए हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो कुदरती मशरूबात है, खासतौर पर गुड़ की जो शरबत है, उनके इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, जो तवानाई बख्श होने के साथ साथ हीट स्ट्रोक से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि फिट रहने की कोशिश कीजिए इस समर सीजन का, तभी आप मजा ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। जब आपकी सेहत ठीक होगी
1: तो सब चीज ठीक है, क्योंकि सेहत पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, या यूं कहें कि सारी चीजें सेहत पर ही डिपेंड करती है।
2: और जब आपकी सेहत ठीक होगी तभी आप हमारी नशियात एंजॉय कर पाएंगे और बेहतरीन नगमे एंजॉय कर पाएंगे।

0: जी दोस्तों, आपको बता दें कि आकाशवाणी इस साल अपनी नशरियात के 90 साल मुकम्मल कर रहा है। जो
1: 8 जून 2026 जो है वो नशरियात के 90 साल मुकम्मल कर रहा है।
0: तो अपने दोस्तों को बता दें कि आज हम एक मारूफ ब्रॉडकास्टर और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आकाशवाणी श्रीनगर शमशाद करलवारी साहब से बात करेंगे आज के लाइव पयाम शुभ शो में। तो आगे चल के हमारे साथ रहिएगा, उनकी बातचीत सुनिएगा जरूर। फिलहाल परवेज कुछ कहना चाहते हैं।
1: जी हाँ, प्रोग्राम जो ये लाइव शो है, मॉर्निंग लाइव शो पयाम सुबह, हम इसमें कोशिश करते हैं कि हर तरह की जो मालूमात है अपने दोस्तों तक पहुंचाए, सामिन तक पहुंचाए, और इसका एक ही मकसद होता है कि हमारे जो सामिन हैं वो मुस्कुराते रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, और हमारे ट्रैक्स वगैरह सारी जो चीजें हैं
0: एंजॉय
1: करें। ये सारी चीजें हम इकट्ठा करके अपने शो के जरिए दोस्तों तक पहुंचाते हैं।
0: अरे क्या बात है, अब चूंकि मॉर्निंग टाइम है तो ब्रेकफास्ट भी हो रहा होगा।
1: सही बात,
0: तो कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट के साथ अंडा भी हो तो क्या बात है।
1: सही बात है, और
0: क्योंकि संडे है
1: और संडे के दिन
0: अंडा
1: होना चाहिए। घड़ी का इशारा इस वक्त जो है 7:45 होने वाले हैं। कश्मीरी खबरों का बुलेटिन सुनते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए शो पयाम सुबह में।
0: जी
2: ये छ आकाशवाणी। सुबह दोन 8 बजे खबरनाम हेथ रऊफ अहमद वड़ खास खास खबरन पे नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करन आज कर्नाटक तो तेलंगाना दौर, तम करन तेलंगाना मज 900 करोड़ रुपये हिंद मालियत कें तरक्ती प्रोजेक्टन इफ्तिताह तो कैंसन प्रोजेक्टन थावन कनकन। तमिलनाडुस मज तुलन आज टी वी के एक सरबरा जोसफ विजय वजीर आला सन्द हैसियत अहद तो राजदारी हलफ। बेपास शोविंदो अधिकारी मगरबी बंगाल नए वजीर आला बनम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान नशुक न्याल गाल बापत समाज किन तमाम वर्गन हुंद अथवास मोंगमुत। सरकारन कौमी पंचायत अवार्ड 2015 किन जेनन वालन हुंद ऐलान कोरमुत। वन खबर तफसील सान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करन आज कर्नाटक तो तेलंगाना दौर। आज सुबह तकरीबन 10 बजे करन वजीर आजम बंगलुरुस मज द आर्ट ऑफ लिविंग 35वीं सालगिरह तकरीबन अंदर शिरकत। अम पत ग वजीर आजम हैदराबाद ये तम तेलंगानस मज तकरीबन 900 करोड़ रुपये हिंद मालियत कें मुख्तलिफ तरक्ती प्रोजेक्टन इफ्तिताह करन तो कैंसन प्रोजेक्टन थावन कनकन। वजीर आजम करन गुजरात तोन दोहन दौर उस पगह पे शुरू सपद। चंद्रवार दोह करन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर की आहिया 50वीं सालगिरह हिंदिस मौकस पे सोमनाथ अमृत महोत्सव मज शिरकत। तमिलनाडुस मज तमिलगा वैतरी कड़गम टी वी के पार्टी हिंद सरबरा जोसफ विजयन रात राजधानी चेन्नई मज लोक भवन मज गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मुलाकात अखत वह रुकनी असम्बली हिज हमायत सत सरकार बनान कुरुक दावा पेश। आकाशवाणी हिंद साम नगारन वोम रियासत गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तुलनावन आज सुबह 10 बजे चेन्नई हिंदिस जवाहर लाल नेहरू इंडोर स्टेडियम मज जोसफ विजयस तो तिहस काबिनस अहद तो राजदारी हलफ़।

0: कॉलेज में जाए, वहां से उसको फैसिलिटेशन होगी और उसको बताया जाएगा कि क्या उसको करना है। इसमें कोई ऑफ डे नहीं है, जो पब्लिक हॉलीडेज है वही ऑफ है। जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, बाकी प्रोसेस ऑनलाइन है।
1: सरकारन कौमी पंचायत अवार्ड जिस पंच कन जन वालन ऐलान कोरमुत, तमि बापत पूर मुल्क पठ दज पंचायत झारन आम। पंचायती राज मरकजी वजारत वोनमुत एवार्ड पेश कर तकरीब सपद नवि रतन त्रिमि तारीख यानि त्रिम जून नवि दिल्ली अंदर मुनद। वजारत मुताबिक कर्नाटक सारे खुद ज्यादा इनाम मिलम तो अमि रियासत शे पंचायत इनाम बापत मुंतखब कर आम। पत आंध्र प्रदेश तो ओडिशा च पांच पांच पंचायत झारन आम। आज मदर्स डे यानि माजन हुन दोह मनावन। मोज लोल माय शफकत चुक वाबस्तगी तो कुर्बानी हिज अख टाकार मिसाल। आज यौम मादर के हवाल मुल्की क्यों बैनलकोमी सुथरस पे माजि हिज पन्न अवलादन नस्बत अहमियत तो माजि हिज अजमत वेसनावन। हाल ही आई जम पे कशीर तान वंदे भारत रेल सर्विस शुरू कर यम सित जम्मू कश्मीर में सयाहत तो बापारस मज काफी बेहतरी दीड ग। रेलवे रेल खदम हासिल कर बापत वारिया ऐप ते जारी कर।
2: अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो।
1: खास खास खबरन पे त्रो बे नजर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कर आज कर्नाटक तो तेलंगानुक दौर। तम कर तेलंगानस मज नौ सात ओर हथ करोड़ रुपये हिंद मालियत कम तरक्की प्रोजेक्टन अफ्तताह तो कैसन प्रोजेक्टन थावन कन कन। तमिलनाडुस मज तुलन आज टी वी के एक सरबरा जोसफ विजय वजीर अला सन्द हैसियत अहदत राजदारी हल बे पास शोविंदो अधिकारी मगरबी बंगाल नए वजीर अला बनम। तो सरकार कौमी पंचायत अवार्ड जिस पंच कन जन वाल ऐलान कोरमुत। अथ सत वातन यह खबरनामा अंद इजाजत। खुदा हाफिज़।

4:00 बजे 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। शाम 5 बजे गोजरी प्रोग्राम नशर होता है। गनी भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं शाम 6:05 पर। हालत हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन नशर होता है शाम 7 बजे। और रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त करें वादी की आवाज़। हमारी आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप तक पहुंच रही है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली आपको लिए चलते हैं जहां से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट

0: सिटी और वरंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के, वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही

0: में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ, ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
3: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से

0: होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51 साल जोसेफ विजय के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की मरकजी शख्सियत होंगे। आज रियासत की राजधानी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ नए वजीर आला का खैर मकदम कर रहा है। 34% से ज्यादा मैंडेट हासिल करने वाले नीज कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। उनके वालिद एस ए चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें सियासी मुकालमे भी शामिल थे। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली टीवीके ने कांग्रेस वीसी के बाएं बाजू की पार्टियों और आईयूएमएल की हिमायत से अक्सरियत हासिल की है। हुकूमत की तश्कील के लिए उन्हें 5 दिन तक मुसलसल बातचीत और मीटिंगें करनी पड़ीं। अपनी मकबूलियत और करिश्माती शख्सियत के बायस विजय ने पहली ही कोशिश में तारीख रकम करते हुए वजीर आला का ओहदा हासिल कर लिया। उंगा विजय नान वारेन उनका इंतखाबी नारा था, जिसके जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इस नई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा आवाम लेंगे, जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है। तमिलनाडु से जो आय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी के वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया है। इस तकरूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने रंगासामी को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। 13 मई को जनाब रंगास्वामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुज़श्ता 9 अप्रैल को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में हुए इंतखाब में AINRC की क़यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगास्वामी 5वीं मुद्दत कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम बीजेपी कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। बीजेपी के 9 मुंतखब अरकाने असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान आसाम में एनडीए सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग बीजेपी के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद एनडीए कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद एनडीए कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाले हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेज़ी से तैयारियाँ जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन ज़िला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा बीजेपी के इकतदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वज़राए आला और मरकजी वज़रा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश जैनीथाला और VD सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम किए हैं। लेबर कोड्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह

0: मुंसलिक कर दिया गया है ताकि उजरतों की अदायगी में ताखीर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का इरादा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफुज हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नया फ्रेमवर्क चार लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तसव्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बरवक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों महकमों आइनी व खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि वो सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रर वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोज़ाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोज़ा उजरत 15 दिन ख़त्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मज़ीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
0: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानिए का एक जामे टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1200 सेकेंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरो स्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माई हाइड्रोकार्बन ईंधन जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज़ में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है जिसका मकसद कार्बन के सिफर इखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावाकी जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद ना सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज़्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबेगो में वाक़ नेल्सन आइलैंड का दौरा किया जहां उनके हमराह वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबैगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज़ पे

0: की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, शुभेंदु अधिकारी ने वजीर आला के अहदे का हलफ लिया, मगरबी बंगाल में पहली बार बीजेपी की हुकूमत। इसी अखबार की एक सुर्खी है, तमिलनाडु में काफ़ी उथल पुथल के बाद विजय की हुकूमत साजी का रास्ता साफ। वज़ीर आज़म का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के मंसूबों का आगाज़ करेंगे। इस खबर को अखबार प्रताप ने नुमायाँ तौर पर शाया किया है। सभी अखबार ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मुतअद्दिद दिफाई आदाब को निशाना बनाने वाले जदीद अग्नि मिज़ाइल के कामयाब तजुर्बे से मुतल्लिक खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत दीगर अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, लबनान में इजरायली फ़ौज के हमले जारी, मजीद 31 अफराद हलाक, मुख्तलिफ गांवों को खाली करने का हुक्म।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जूसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मेरे में 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय इन सुबह के 8:45 हुए हैं।
3: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
4: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक, ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408000।
3: प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबां है का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा। सामीन सताना, अगर एक शख्स दूसरे शख्स को तंग करता है, अजियत पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ या तो जंग होती है या कानूनी कार्रवाई। और अगर एक फर्द हुकूमत को तंग करे तो उसका इलाज हुकूमत के नजदीक जेल है। इसी तरह से जब एक शख्स या एक कौम दूसरे कौम से तंग होकर आजिज आ जाता है तो हिजरत मजबूरी बन जाती है। मगर जब इसी तरह का माहौल हमारे जिस्म में मौजूद अनसजा को आजा को तंग करने पर आमादा हो तो नतीजा बीमारी, डिसेबिलिटी, डिस्कम्फर्ट या किसी शख्स की डेथ भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि हमारे जिस्म को, हमारे अनसजा को, हमारे ऑर्गन्स को कौन लगातार तंग करता है? और इसका जवाब है फॉर्मोलॉजिकली दवाओं का गैर जरूरी इस्तेमाल, कीमियाई खाद, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, फूड एडिटिव्स वगैरह। समीन कहने का मकसद ये है कि जो इंसानी जिस्म खुदा के बनाए हुए कानून के तहत काम कर रहा है, इसमें जो भी चीजें खुदा के बनाए हुए कानून के खिलाफ है वो नुकसान ही है। इसीलिए हम बार बार अलग अलग अल्फाजों का सहारा लेकर दोहराते हैं कि नेचर में ही बका है और फितरत में ही शिफा है। आगे बढ़ने से पहले चंद मरीजों के तासुरात।
5: صبریٖنہ بہٕ روزان بیٖرو کَنہِ گوٚنٛڈ مےٚ حظ گٔے پٔتِم 2 ؤری لگاتار چھٲتۍ خراب مےٚ حظ ٲس آسان صرف خۄشک ژاس گۄڈٕنیٚتھ حظ گٔیَس بہٕ پَننٮ۪ن لوکَل ڈاکٹر صٲبَن نِش مےٚ حظ کھیوٚو دوا مگر فرق آیَم نہٕ کٕہٕنۍ تہِ تمہ پتہ گیس بہ سری نگر دون ترین ہاسپٹل۔

0: अपना ये तरीका इलाज है हमारा। तो मैंने एक और चीज़ इसमें ऑब्जर्व की कि जब ये सारे सिम्टम्स खत्म होने के कगार पे होते हैं तो सोर थ्रोट ही रहता है लास्ट में,
1: जी जी
0: और फिर हम सोर थ्रोट का इलाज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ड्रामेटिक रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नेचुरल तरीके जो हैं
1: जी
0: वो बहुत फ़ायदा देते हैं, ऐसे पुरानी खांसी में, ऐसे डिजीज़ में जिनमें बुनियाद जो है वो एलर्जी होती है।
1: बिल्कुल
0: देखिए इस तरह के बीमारियों में एलर्जी, राइनाइटिस होगा, यानी नाक बहने शुरू हो जाएगी,
1: जी जी
0: और उसके साथ साथ लवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी फिर इन्वॉल्व होता है।
1: इन्वॉल्व हो
0: अक्सर
1: जाता है।
0: दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, कभी अलग अलग भी हो सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि आज का जो मौसम है, जैसे हम देखते हैं पोलनस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन पोलनस के नतीजे में आज ये जो सफ़ेदे हैं उनका दरख्तों पे वो सफ़ेदा जो है ना गिर जाता
1: जी
0: है,
1: जी बिल्कुल
0: तो लोग अपनी गाड़ियों में अगर सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो, और खिड़कियां बंद कर रहे हैं, और फिर आप ये समझते हैं कि भैया हम अंदर वाले कंपैक्ट इसमें हैं, माहौल बना है, तो शायद बाहर वाली जो पोलनज हैं वो हमें शायद कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मगर
1: बिल्कुल
0: जो कंप्रेशन से आपके गाड़ी में हवा आ जाता है तो वो पोलनज जो उस हवा से अंदर आ जाते हैं
1: जी जी
0: वो कंप्रेस होके ज़्यादा बुरा असर डालते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे,
1: अच्छा
0: क्योंकि हवा के दबाव जो है वो नेचुरल दबाव से ज़्यादा कुछ दबाव होता है, तो उस दबाव की वजह से भी और दिक्कतें हो जाती हैं। और
1: अच्छा
0: ख़ास तौर से हम कहते हैं कि जब आप एसी चलाना शुरू करेंगे तो कोल्ड एयर जो है वो भी एलर्जी का एक सबब बन
1: बन
0: सकता
1: जाता
0: है।
1: है बिल्कुल
0: तो जब कोल्ड एयर एक सबब बन जाए, उससे भी एलर्जी हो जाए और उसके साथ साथ पोलनस भी हो, तो ये और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन बन
1: बन
0: सकती
1: जाती है
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए अब एक साइड में ये है, दूसरे साइड में आजकल ये है कि बागों में आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं और वो भी धनाधन कर रहे हैं। अमेरिका वालों ने भी सेब उगाने, मतलब उनके पास भी सेब है,
1: जी
0: वो दो दवाइयां साल में करते हैं सेबों की, और मेरे ख्याल में हम 12 से 14 के बीच में आ गए हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये चूंकि मेरा टॉपिक नहीं है, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि बेतहाशा इन दवाओं की वजह से हमें और एलर्जीज में इजाफा हो
1: हो
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है जी
0: तो वो जो एलर्जीज हैं वो फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी बन
1: जी
0: सकती हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि अगर आप बागों की दवा पाशी एक जगह पर, सपोज एक्स पे ये जगह का नाम है, वहाँ करते हैं, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर वो
1: इसके असर
0: इसके
1: रहते हैं।
0: असरात रहते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम एक साइड से आपके पोलन, दूसरे साइड से आपके पेस्टिसाइड्स, और फिर गाड़ियों के जो है ना जो कंप्रेशन से आपके,
1: सही
0: तो
1: बात
0: कहने का मकसद ये है कि आप अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात यह है कि पोलनस से बचने के लिए बहुत सारे तरीके भी सरकार ने भी निकाले थे, तो मगर शायद कामयाब ग्राउंड लेवल पे नहीं हुए।
1: जी
0: और दूसरी बात यह है कि हम मास्क यूज़ करें, ज़रूर करें, और रोज़ के रोज़ हम मास्क जो है बदल दें। और तीसरी बात है कि ऑयल इरिगेशन, ख़ास तौर से जैतून का तेल या बादाम का तेल या ग्लिसरीन,
1: जी जी
0: तो इनको आप चंद कतरे नाक में रोज़ाना डालें। और इससे क्या होगा कि जब आप चंद कतरे नाक में डालते हैं तो एक ल्यूब्रिकेशन बन जाती है या एक बैरियर बनता है बिटवीन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उससे क्या होगा कि जो बाहर से कोई पोलन आ गया तो नाक में घुस गया, उसकी वजह से नाक में घुसने से ये चिपक जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ नहीं चिपकेगा, उस तेल के
1: तेल
0: साथ,
1: के साथ चिपके
0: तो
1: था
0: फिर ये
1: बिल्कुल
0: आराम से ये बाहर भी निकल सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे कोई बुरा असर नहीं
1: नहीं
0: डालता।
1: पड़ेगा
0: और
1: बिल्कुल
0: उसके अलावा जो है, या इंसान को क्या करना चाहिए, जब खुशक खांसी हो तो ऐसी अद्वियात का तजवीज़ करें या ऐसी गुज़ाओं का तजवीज़ करें या उनका इस्तेमाल करें कि जिनमें खुश्की से ज़्यादा तरी मौजूद हो।
1: जी जी जी
0: तो तरी का मकसद क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि खुशक खांसी में तर चीज़ें खानी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: और उनसे क्या हो

0: होता है कि ये जो बलगम है वो आराम से बाहर आ जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें मुफीद हैं। हम लोग कहते हैं मुरब्बा भी ही खाना चाहिए, तो वो भी बड़ा मुफीद है।
1: जी जी।
0: तो कुछ जुलाल हम बोलते हैं, तो दवाओं के वो शरबतें जोशांदे वगैरह खाने चाहिए तो वो उनसे भी फ़ायदा मिल जाता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह के डिजीज हैं, इन्हें पुरानी खांसी है, सांस फूलना है, एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, हमारे पास आइए। आज इतवार है, इतवार के दिन मैं अनंतनाग वाले सेंटर में होता हूँ, जहाँ ये लाल चौक में HDFC बैंक के सामने हमारा सेंटर है यूनानी पंचकर्मा के नाम से। इसी तरह से एक और सेंटर हमारा शुपियान में कोट रोड पे है यूनानी पंचकर्मा नाम से। एक और सेंटर हमारा त्राल में है खान का फैज बनाए हाथे में। एक और सेंटर है हमारा सिकड़ाफर चौक ईदगाह श्रीनगर में। और एक सेंटर है हमारा बर्षा नगर में इकबाल कॉलोनी में। तो एक सेंटर हमारा मागाम बाजार के सामने है, एक सेंटर हमारा बारामुल्ला में है उर्दू बाजार में
1: जी।
0: तो अगर किसी भी इंसान को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो एक हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, नंबर है 9419408011। मैं दोहराना चाहूँगा 9419408011।
1: डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होंगे तो और बातें होंगी। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, तो लेते हैं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम।
2: कुदरत की जुबान है, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे
3: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैज बना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी बर्षा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
4: आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 9 बज चुके हैं।
5: आज की सुर्खियां।
6: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
4: आदाब। आज इतवार है, जिकदा 1447 हिजरी की 22 तारीख मुताबिक 10 मई 2026 ईस्वी। मकामे अकबरात से ली गई आज की सुर्खियां लेकर हम हाजिर, मैं परवेज मीर
7: और मैं हूं सकीना।
4: सबसे पहले उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज के लगभग तमाम अखबारात ने अपनी पहली सफ पर जगह दी है।
7: जी, पहली सुर्खी से पहले अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि कंट्रोल रूम में हमारे साथी हैं IP सिंह और नसीर अहमद। और एक मकामी रोजनामे की पहली सुर्खी है कि सौरोजा मनशियात मुखालिफ मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्यादत में बेदारी रैली, पैदल मार्च, सियासी व समाजी कारकुनान शामिल, मनशियात मुखालिफ जंग को जीतने के लिए खामोशी तोड़ें। मनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी अलग अलग चैलेंजेस नहीं हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क साजिश के दो चेहरे हैं। LG मनोज सिन्हा।
4: अकबरात लिखते हैं फौज की जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इकदाम जारी, मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने पर बदस्तूर तवज्जो मरकूज है, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फौज की तामीर के कौमी विजन को अमली शक्ल देने में मसरूफ वजारत दिफा।
7: एक मकामी रोजनामे की शह सुर्खी है कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय बहरिया के अगले सरबरा नामजद, आला अस्करी तकरीरों का ऐलान, मौजूदा सरबराहान माह मई के आखिर में सुबकदोश होंगे।
4: DC श्रीनगर का निशात में वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट का मुआयना, जिले भर में पानी की फराहमी और मयार को बढ़ाने के लिए अहम मंसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर।
7: एक और शह सुर्खी है कि जम्मू कश्मीर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा शिकंजा, पासपोर्ट, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने का जामिया SPO नाफिस, मुलजमान की शनाख्ती, सफरी और सरकारी सहूलियात वापस लेने का फैसला।

0: तो आप सेहतियाब हो सकते हैं।
1: जी सकीना जी, मेरे सामने अखबार है, इसकी ये सुर्खी है, पहलगाम सानिहे के बाद जम्मू कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियां तेज, नए कारोबारी यूनिटों की रजिस्ट्रेशन में 28% इजाफा दर्ज, एक रिपोर्ट।
0: और आखिरी खबर खेल के हवाले से यह है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 मुख्तलिफ बड़ी लीग्स में 100 या इससे जायद गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार

जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर। आपको बता दें कि आकाशवाणी इस साल अपनी नशरियात के 90 साल मुकम्मल कर रहा है। 8 जून 2026 को नशरियात के 90 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि 90 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सुरबानी जैसे मौसीकी के प्रोग्राम शामिल हैं। और दोस्तों, पिछले 90 सालों में आकाशवाणी ने खबरों, तालीम और तफरी के जरिए हिंदुस्तान की सकाफती और समाजी तारीख को तश्कील दिया है। और आप सभी जानते हैं कि रवायती रेडियो के साथ साथ आकाशवाणी अब ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी मुतहरिक है। इस तरह आकाशवाणी ने 9 दहाइयों से हिंदुस्तान की आवाज़ को न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जिंदा रखा है। इसी खुशी के सिलसिले में आज हमने सोचा कि एक मायानाज ब्रॉडकास्टर को कॉल किया जाए।

0: उनके तजुर्बात जानना चाहेंगे। तो आप हैं सीनियर ब्रॉडकास्टर और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी श्रीनगर शमशाद करालवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम सलाम सकीना, वेलकम।
0: जी सर जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर?
1: अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग फाइन।
0: जी आकाशवाणी 90 साल मुकम्मल कर रहा है, तो अपने टाइम स्पैन को कैसे आप याद करेंगे जो आपने आकाशवाणी में बिताया, जबकि टेक्नोलॉजी इतने चाव पर नहीं थी जितनी कि आज है। टेप डेक्स हुआ करते थे, फ्लैग लगाना पड़ता था, और किस नवियत के प्रोग्राम आपने तरतीब दिए?
1: First, I would like to congratulate you.
0: Thank you.
1: Akashvani completes 90 years. This is a journey that began the first broadcast in 1936.
0: Ji.
1: And has since become the nation's trusted voice. I am having the honor that I have been part of this organization. So my audience was Kashmiri and Urdu. But I have the privilege ki maine har haisiyat se is idare mein kaam kiya hai.
0: Ji.
1: I have been a casual voice. I have been a presenter on casual basis,
0: जी.
1: writing scripts, dramas, talks, whatnot. And right from my start, when I was participating in U1 service, so I was going for OB recordings. Then I got the opportunity that this was my aim in life, to be a broadcaster. So the Almighty completed it, gave me the strength, and I got the opportunity.
0: जी.
1: तो मैंने फिर कैजुअल अनाउंसर भी काम किया है। आपको पता है लोगों के साथ कितना जुड़ा रहता है आज।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये एक बड़े खानदान का एक शख्स होता है और इसके साथ सभी जुड़े होते हैं।
0: जी सर।
1: अनडाउटेडली उन दिनों ये तरीका नहीं था कि आप लाइव आएंगे स्टूडियो में, उन कैमरा लेना मना था।
0: जी।
1: आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे विदाउट परमिशन। तो आज तो आपको आने आना है, ये डिजिटल है, पूरा वीडियो ऑडियो है, पूरा मीडियम।
0: बिल्कुल।
1: तो उन दिनों मीडियम ऑडियो का अलग था और वीडियो का अलग था। तो मैंने फिर अनाउंसर के बाद एज न्यूज रीडर काम किया, न्यूज रीडर के बाद मैंने एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव काम किया। एंड यू हैव बीन विद मी थ्रू एंड थ्रू. We owe much to our younger generation who were with us every time, because we had the difficult times when we have served in this prestigious organization.
0: जी.
1: 90s में हमारा बाकायदा शुरू होगी हमारी इनिंग्स as programmer. तो और 90 पता ही है कि ये this was a changing scenario of Kashmir history. It changed the whole course. So, उसमें आप ये अंदाजा लगाइए कि वी हैड स्ट्रेंथ ऑफ 22 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स ऑन द रेडियो। मतलब दिस वाज़ द रेडियो कश्मीर श्रीनगर दैट टाइम।
0: जी जी।
1: 22 बाय अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ 90 द स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड टू 4 पैक्सेस। तो इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ब्रंट पड़ा होगा।
0: बिल्कुल।
1: I was looking after 13 full-fledged sections.
0: जी।
1: तो एक सेक्शन संभालना मुश्किल होता है, तो दिन रात काम करना पड़ा, दिन रात काम करना
0: पड़ा। जी जी जी।
1: तो आपको तो पता भी है इसमें जो हम
0: बिल्कुल
1: फिटनेस थी।
0: जी।
1: तो ओढ़ना बिछोना हमारा ब्रॉडकास्टिंग ही था। तो इसमें हमने फीचर्स भी किए, इसमें ड्रामे किए, हमने लिखे, हमने लोगों को तैयार किया। और उसके बाद 90 के बाद एक रिक्रूटमेंट हो गई, उसमें हमारे 2-3 साथी और अच्छे साथी डेडिकेटेड वर्कर्स केम, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ गई, थोड़ा सा ईज हो गया, उन्होंने युवानी को संभाला, हम जनरल सर्विस को संभालते रहे। तो इस वजह से एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, यहाँ से तो हमारी बहुत ही एक इलीट जो हमारी लिसनिंग थी, लिसनरशिप, और जो हमारा राइटर्स ग्रुप था, जो हमारा टैलेंट बैंक था, वो यहाँ से माइग्रेट हो गया। उन दिनों तो आपको, अगर आप खुद नहीं लिख पाते, खुद नहीं बोल पाते, खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो आपका एक नाम पैदा करना और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना नामुमकिन था।
0: यानी कि शमशाद साहब, तब भी वर्सेटैलिटी मैटर करती थी, आज भी वर्सेटैलिटी मैटर करती है कि बंदा माइक पे भी बोल पाए, लिख भी पाए, और कुछ एडिट अगर करना हो तो उसमें भी वो महारत रखता हो।
1: आई विल टेल यू अगर आप वो सलाहियत नहीं रखे, हमारे पास कुछ ब्रॉडकास्टर थे जो हमारे साथी थे
0: जी।
1: लेकिन वो कभी भी मशीन के साथ फिडल नहीं करते थे, वो माइक फेस नहीं करते। रेडियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कंट्रीब्यूट किया
0: जी, जी,
1: नहीं
0: जी।
1: रेडियो ने हमारी पर्सनालिटी में
0: शेप दिया, बहुत अच्छा,
1: तो हाँ, बनाने में मदद की।

0: शमशाद साहब, खबरों का वक्त हो चला है। खबरों के उस पार कुछ और बातें आपसे करेंगे। सुनने वालों को बोलेंगे कि हमारे संग बने रहिए।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: खो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आदाब, यह चु आकाशवाणी श्रीनगर, सुबह 9:20 सपद खबरन हूं बुलेटिन हूँ रऊफ अहमद। जम्मू कश्मीर मज दोहन पे मुश्तमिल नशे मुखालिफ अभियान तहत लूकन में जानकारी पैद कर अमल मज खास पेशरफ्त हासिल सपदान। अत अभियान तहत वनिस्तान मुनद कर आमत 2,00,00,000 जानकारी प्रोग्राम मज जायद 1 करोड़ लूको पन्न सरगरम शिरकत हम। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत पुलिस चन कारवाइन मज ताहाल 3 किलो 800 ग्राम हेरोइन, 32 किलो 900 ग्राम चरस तो 2,02 किलो दोयम नशावर मवाद जब्त कर आमुत। अथ दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अनंत नाग जिले नशे निश पाक कर बापत समाज कें तमाम वर्गन अथवास मोगमुत। अनंत नागस मज बॉयज डिग्री कॉलेज पे नशे मुखालिफ पदयात्रा झंडे हवित रवाना कर पे वो तमो ज नशुक नोसूर समाज खोखुर करान तो अथ नियाल गाल वक्त अहम तरीन जरूरत।
6: आने वाली नस्लें शायद हमें माफ नहीं करेंगी। आइए हम अनंतनाग की जमीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे।
5: अथ पदयात्राई मज बड़ तादाद मज तलबिलो ताजरो तो समाज के मुख्तलिफ वर्गन से तल्लुक थवन वालों लोगो शिरकत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला तुलन आज गांधरबल दौर कर 40 करोड़ रुपये हिंद लागत वाले मुख्तलिफ तरकती प्रोजेक्टन दस तम अति मुख्तलिफ कलीदी नवीत कन तरकती इकदाम तफसीली जायजे। अम ब्रोह वो वजीर आलन रॉयल स्प्रिंग्स गॉफ कोर्स श्रीनगर अके गॉफ टूर्नामेंट दस तुलने पत् आलमी सतर गॉफ कोर्स दिए न सिर्फ मकामी गॉफ खिलाड़ियों तहरीक बल्कि अमे सत मिले ये किस सयाहत पोछर।
7: हमारी कोशिश रहती है कि एक तो यहाँ जो हमारे लोकल गोल्फर्स हैं उनको बढ़ावा मिले और इन कोर्सेज का हम इस्तेमाल करें प्रमोशन के हवाले से कोशिश की जा रही है कि यहाँ हमारे खेल को बढ़ावा मिले और इसके साथ साथ नई जनरेशन जो गोल्फर्स का हम शुरू करें।
5: अथ दौरान कर एम एल ए बानहाल सज्जाद शाहीन वजीर आला उमर अब्दुल्ला सत मुलाकात कर तिमन सत पन्नस हल्कस नस्बत तरकती मामलन पे विस्तार सान खयाल बाबत। ज़रात वजीर जावेद अहमद डार तो खेल हंद वजीर सतीश शर्मा शुमल हंद वर्मुल सोपुर तो रफियाबाद इलाकन दौर कर तमीर तरक्की तो खेल हंद बुनियादी ढांचक प्रोजेक्टन जायजे हूँ तमो कर अतियन मकामी लूकन तो नौजवान एथलीटन सत बात। आज मदर्स डे यानि यौम मादर यह दोह वरी मई रतने दोमें आथवार मनावान यह दोह पूर् दुनिया मज माजन हज शफकस तो तिजन कुर्बानियन हंदिस एतराफस मज तिमन नस्बत शुक्र गुजारी हज बाबत कर्न मौक मोज बेगरज माय लोल चुख शफकत वाबस्तगी तो कुर्बानी हज टाकार मिसाल।

0: जी परवेज, खबरों से पहले हम बात कर रहे थे मारूफ ब्रॉडकास्टर और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आकाशवाणी श्रीनगर शमशाद करालवारी साहब से। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शमशाद साहब से पूछते हैं कि शमशाद साहब, आपकी स्पुरदेख प्रोग्राम रहा गमी बाई निंदी खतर यत पनुन अख चावोस, क्या ये चुवन?
1: जब रेडियो की ब्रॉडकास्ट जो हम अभी कह रहे हैं कि 36 में जब ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो गई, तो उस वक्त भी हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग का एम था वो एग्रीकल्चर और ये डेवलपमेंट थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी,
0: बिल्कुल
1: इसी को प्रोपेगेट करना था। तो यहाँ कमाया हमारी सोसाइटी, जब मुझे पहला इंटरव्यू लिया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा मुझे एक सवाल, क्या आप यहाँ ब्रॉडकास्ट में आकर क्या करना चाहेंगे? अच्छा। तो मैंने उनको बताया, मैं पहले जो तवहुमात है, सुपरस्टिशियस जो हमारा माइंड है,
0: बिल्कुल,
1: उसको मैं इरेडिकेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ऑफर करते हैं, हम देखते हैं। और उस वक्त हमारे थे एक स्टेशन डायरेक्टर मिस्टर रतन सिंह, बहुत ही अच्छे लिखने वाले थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो उन्होंने मुझे सीधे, हालांकि मैं अनाउंसर हो गया उस वक्त, परमानेंट की बात में कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त प्रोग्राम असाइन किया हेल्थ हिंट्स, कहा कि इसी में आपका वो जो आपने इंटरव्यू में बताया था वो काम करने का मौका मिलेगा। तो रूरल प्रोग्राम मैंने डिलीवरी के लिया, अदरवाइज मैं तो न्यूज से था, लेकिन मैंने वो लिया क्योंकि वो पूरा एक प्रोग्राम जो है पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, हर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे हर जगह जाने का मौका मिला, हर सेक्शन के साथ बात करने का मौका मिला। मैं एक बात बताऊंगा, मैं ओबी करने के लिए जा रहा था गांधरबल, तो वहां मैं फील्ड में जा रहा था, तो वहां मैंने देखा था कि वो उन्होंने बहुत ही मैकेनिकली जैसे हम प्रोपोगेट करते थे उसी तरीके से उन्होंने कटिंग वगैरह की थी और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उसका इस्तेमाल किया था। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनके साथ अलग से अलग उनका इंटरव्यू किया। तो वो जो फार्मर थे उन्होंने कहा कि आप अपना नाम बताइए, क्योंकि उस वक्त फेस वो जानते नहीं थे। तो मैंने कहा मुझे भेजा गया है रिकॉर्डिंग के लिए, कहा आप नहीं कहेंगे तो शमशाद साहब हमें शाम को बताएंगे हमने किसको भेजा था।

0: यानी रेडियो घर घर की आवाज वाकई में था और रहेगा, क्योंकि जो बात यहाँ से नष्ट की जाती थी सो सिवा मुस्तनद मान।
1: हाँ, एक तो वो दूसरी बात, जब हमने 14 में जो फ्लडर्स आ गए,
0: बिल्कुल,
1: तो आपको तो पता है, आप भी इनर्टेटेड थी, हम भी थे, मैं भी सैलाब में था। मुझे इस वक्त लग रहा है कि शायद मुझे वही काम करने के लिए वापस दिल्ली से यहाँ भेजा गया था, क्योंकि मैं दिल्ली में पोस्टेड था। तो वो ब्रेकडाउन पता, आप अंदाजा लगा सकते हैं रेडियो कितना पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबॉडी है, हर शख्स की लाइफ का एक हिस्सा है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई ऐलान नहीं कि हमारा ट्रांसमिशन शुरू होगा, लेकिन हमारे सब लोग जुड़ गए हैं और लाखों में जुड़ गए। तो ये अचीवमेंट थी, इस वक्त मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। और अगर मैं इस वक्त भी लिख रहा हूँ, वही एक्सपीरियंस की वजह से जब मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि रेडियो कश्मीर जो था, इसको कहते थे पूरे मुल्क लेवल पे, इसको कहते थे ये इंस्टीट्यूशन है ट्रेनिंग का। कहा जाता था कि जो रेडियो कश्मीर का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होगा, कोई भी प्रोग्रामर होगा, उसको दूसरी जगह पे इंस्ट्रक्टर भेजना चाहिए। मुझे वो प्रिविलेज मिला, मुझे बहुत सारे स्टेशन का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा गया, और वहाँ जो हम रिपोर्ट्स करते थे उसमें वो अमल करवाते थे कि ये देखो एक एक्सपीरियंस क्या मैटर करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ रेडियो कश्मीर। और एक बात मैं बताऊंगा,
0: जी जी बताइए,
1: जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम करे, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे जानने वाले माहिर लोग बाहर बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल यकीन है,
1: एक तो ये है ना चाहिए कि मैं जो बात कहूँ इनकी नॉलेज में ऐड होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन साथ में होना चाहिए कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं जो बोलूंगा सबके तब बोल सकता है कॉन्फिडेंस, वरना पता है आपको वीसी सुन रहे हैं, प्रोफेसर सुन रहे हैं, उस जमाने के प्रोफेसर, आज की छोड़िए बात, तो वरना आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आपको दोनों चीजें ख्याल रखनी है, मेरी ऑडियंस बहुत ही लर्न्ड है, और लेकिन मैं इसमें ये प्रिविलेज रखता हूँ कि मुझे ही मौका मिला है, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं बोल सकता हूँ, तो ऑल इंडिया रेडियो ने यही सिखाया।
0: तो एक हिसाब से शमशाद साहब, आपने ये नई जनरेशन के लिए एक मैसेज कन्वे किया।
1: हर बात आपकी एक मैसेज होनी चाहिए। मैंने आपको डेट बताया कि कब से ये शुरू हो गया।
0: जी जी, जी,
1: जी। जब सुनने वाले कहेंगे 90, फिर कहेंगे किस साल से हो गया था, वो ज्वाइन करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे।
0: हमने
1: सीधा ही बोलना है कि ये ऐसा है, इसमें आदमी सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर सीखेगा नहीं, लेकिन सीखने के लिए उसको जरूरी है कि वो खुद पढ़ता रहे। मैं बताऊंगा, मैंने ये रूरल प्रोग्राम किया, इसमें कश्मीरी ऑडियंस मेरी है
0: जी,
1: मुझे ओढ़ना बिछाना कश्मीरी था सारा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मैंने प्रेजेंट किया साइंटिफिक प्रोग्राम जुवन पाई, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। जब यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जब मैं उनके पास जाया करता था क्योंकि मैंने इसमें ट्रेनिंग की थी
0: जी,
1: तो वो कह रहे थे कि एनवायरमेंट यही है कि अपने घर के आसपास को साफ रखो तो और क्या है। उन दिनों डिपार्टमेंट शुरू हो गया था जब हम इस पे काम कर रहे थे, वो 15 साल मेरी निगरानी में चला, और मेरे बाद भी वो प्रोग्राम कई लोगों ने किया, आशफाक साहब ने भी किया, कई लोगों ने किया वो प्रोग्राम जुवन पाई, वो तो साइंटिफिक प्रोग्राम है। लेकिन साइंटिफिक प्रोग्राम को मैंने इतना मकबूल बनाया, जो ड्राई प्रोग्राम, ड्राई सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन मैंने उसको बहुत ही लवली प्रोग्राम बनाया जोन पाई के तौर पर, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, आकाशवाणी श्रीनगर से एक बार फिर बात करने के लिए।
1: मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, पूरे अमले का शुक्रिया। मैं आपकी कामयाबी और ऑल इंडिया रेडियो की, रेडियो कश्मीर जो हमारा था, मैं तो वो भी रेडियो कश्मीर ही कहूंगा, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, क्योंकि हमने इसको जिंदा रखने के लिए एबनॉर्मल हालात में बहुत कुर्बानियां दी हैं। जब ये कामयाब रहेगा हमारी शान होगी।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: माय प्लेजर, थैंक यू।
2: आकाशवाणी श्रीनगर से आप लाइव मॉर्निंग शो सुन रहे हैं पयाम में सुबह, और सकीना जी मैं आपको एक बात की तरफ आपका जहन में लेना चाहूँगा कि माँ की, और जब हम माँ की तरफ देखते हैं, माँ की बात करते हैं, तो कोई एक मखसूस दिन माँ के लिए डेडिकेट किया जाना चाहिए।
0: देखिए मुझे लगता है ये तो नहीं कह सकते कि ना इंसाफी है, लेकिन माँ के लिए एक दिन माँ के पर्सनैलिटी को, माँ के किरदार को, माँ की खूबियों को, माँ की अच्छाइयों को एक दिन में कैद करना, वो मुझे लगता है कि ज्यादती है। माँ के लिए तो हर दिन मखसूस है, और माँ के बगैर कौन सा दिन है,
2: कोई दिन है ही नहीं, कोई लम्हा है ही
0: हर
2: नहीं,
0: हर दिन माँ का दिन है।
2: तो आप माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: यही कहना चाहेंगे तमाम माओं को इस वक्त सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, और ये कहना चाहेंगे कि ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है ये मकाम तुमसे है।
2: तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब,

0: बेसबब ऐसे उजाले नहीं होते घर में, माँ के चेहरे की चमक होती है दीवारों में। वो लफ्ज़ जिसमें पूरी कायनात की मोहब्बत सिमट आती है, वो हस्ती जो खुद धूप में जलकर अपनी औलाद के लिए साया बनती है, वो रिश्ता जो दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है, एक माँ का रिश्ता होता है। आज मदर्स डे पर हम माँ की इस अजीम हस्ती को सलाम अकीदत पेश करते हैं और हर माँ को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। माँ की इन्हीं खूबसूरत खसाइल के जज्बे से लबरेज आपके अपने इदारे जम्मू कश्मीर बैंक के वीकली रेडियो ब्रॉडकास्ट के 10 मई 2026 के शुमारे में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
1: प्रोग्राम की शुरुआत हस्बे मामूल आइए करते हैं इदारिया से।
0: पहाड़ों की खामोशियों से लेकर हसीन वादियों की रौनकों तक, चिनार की ठंडी छाओं से लेकर लद्दाख की बुलंद चोटियों तक, जम्मू के बासमती खेतों से लेकर कश्मीरी सेब के बागानों तक, एक रिश्ता, एक एतमाद, एक भरोसा बरसों से कायम है और उस भरोसे का नाम है जम्मू कश्मीर बैंक।
1: दोस्तों, गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक के सालाना माली नतीजे का ऐलान किया गया और हस्बे तवक्का बैंक ने तमाम तर चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद अपना आज तक का सबसे ज्यादा सालाना प्रॉफिट दर्ज किया। 2363 करोड़ रुपए का मुनाफा महज एक फिगर नहीं है, बल्कि उस मजबूत रिश्ते और उस ताल्लुक की कहानी है जो इस बैंक का अपने साथ जुड़े हर शख्स के साथ कायम है। ये एक तारीखी लम्हा है। बैंक पिछले 4 साल से लगातार शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है और हर नए साल एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है जिससे वो अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर आने वाले सालों के लिए अपना सफर मजीद चैलेंजिंग बना रहा है। अपने आप को चुनौती देना आसान नहीं होता, लेकिन अपने परफॉर्मेंस बार्स को बहुत ऊंचा कर देना और उन्हें हासिल करना जम्मू कश्मीर बैंक के DNA में शामिल है। बैंक का मजमुई कारोबार 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसके लिए बैंक को हर समत से पजीराई हासिल हो रही है। एक ऐसे वक्त में जब खत्ते जम्मू कश्मीर पूरे साल गुनागुन मुश्किलात से दोचार रहा, तो ऐसे वक्त में बैंक की इस शानदार कारकर्दगी को हौसले, हिम्मत और निगाह बुलंदी के तनाजुर में देखते हुए आला मकाम हासिल है। बैंक के MD व CEO अमिताभ चैटर्जी ने इन तारीखी नतीज को हौसला अफजा करार दिया। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ और अवामी विश्वास को इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का मौजिब करार दिया। उन्होंने बैंक के 12,500 मुलाजमीन की मेहनत शायका को सलाम पेश करते हुए कहा कि बैंक का विशाल वर्कफोर्स जब ठान लेता है तो कोई भी मंजिल नाकाबले हुसूल नहीं रहती। बैंक ने गुज़श्ता माली साल में जो कामयाबियां हासिल की वो महज एक मालियाती कामयाबी नहीं, बल्कि उन लाखों ख्वाबों की कामयाबी है जो इस बैंक के जरिए परवान चढ़ते हैं। ये उस किसान की कामयाबी है जो अपनी जमीन पे मेहनत करता है। ये उस नौजवान का हौसला है जो कार

0: कारोबार शुरू करना चाहता है। ये उस माँ की दुआओं का असर है जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। ये आदाद व शुमार सिर्फ तरक्की नहीं दिखाते, बल्कि ये इस बात का सबूत हैं कि लोगों का एतमाद इस बैंक पर रोज़ बरोज़ साल दर साल मजीद मजबूत और मजीद मुस्तहकम होता जा रहा है। ये उस एतमाद की मजबूती है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने अपने इस इदारे पर बरसों से कायम रखा है। लोगों के साथ हमारा ताल्लुक बैंक अकाउंट्स तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक दिलों का है, और जब रिश्ते जज्बाती हों तो कामयाबी हुदूद की कैद से बालातर होती है। MD और CEO का मानना है कि हमारे साथ जुड़े लोगों के भरपूर तआवुन से हम अगले 3 साल में अपना कारोबार दोगुना करने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए अब बैंक के मुलाजिमीन ग्राहकों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि ग्राहकों के पास जा जाकर बिजनेस बढ़ाने के प्रयास करेंगे और अपनी कोर टेरिटरी में बैंक के बिजनेस की शरह को बेहतर बनाएंगे, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया की हमारी ब्रांचेस भी अब मजीद सूरत के साथ कारोबारी अहदाफ को हासिल करने के लिए तगोदो करेंगे, ताकि बैंक अपनी रीजनल पहचान से आगे बढ़कर एक मजबूत नेशनल बैंक के रूप में पूरे मुल्क में जाना और माना जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा इस साल बैंक पूरे मुल्क में भी नई शाखें खोलेगा और स्टाफ शॉर्टेज की शिकायत का इजाला करने के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव भी जल्द की जाएगी। बैंक के कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी जज्बे को दवाम बख्शते हुए बैंक ने गुज़श्ता 3 साल में लगभग 100 करोड़ रुपए की खतीर रकम तालीम, सेहत, माहौलियात, स्किल डेवलपमेंट वगैरह शोबों में सर्फ किए और अवामी सहूलियात में खातिर ख्वाह इजाफे का बायस बना। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोशिशों में सूरत के साथ इस साल भी कई अहम अवामी तरजीहाती प्रोजेक्ट्स को दरदस्त लिया जाएगा। MD और CEO ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की खदमत और उन्हें समाजी और माशी तौर पर खुद मुख्तार और तरक्की पसंद बनाना हमारी अवलीन तरजीह थी, है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि बैंक अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को मजीद मुस्तहकम बनाएगा, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए ग्राहक वर्ल्ड क्लास बैंकिंग प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास फीचर्स के साथ एंजॉय कर सकें। अपने एक रेडियाई पैगाम में MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने कहा,
1: जम्मू कश्मीर बैंक के इस शानदार परफॉर्मेंस और हिस्टोरिक प्रॉफिट पर हम सभी को गर्व है, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, प्रोमोटर्स और बैंक के एम्प्लॉइज को दिल से बधाई देता हूँ। 2363 करोड़ का ये प्रॉफिट सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, बल्कि आपके भरोसे, शानदार टीमवर्क और बेहतर स्ट्रेटजीज का नतीजा है। आप इसी तरह J&K बैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। हम वादा करते हैं कि इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का फायदा होगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। न केवल यहाँ, बल्कि आपका बैंक पूरे देश में अपनी पहचान और मजबूती को और आगे बढ़ाएगा।
2: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुज़ुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं, कि वो JK बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फ़ायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मैसर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाख से राबता करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएँ।
0: दोस्तों, गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर पुलिस के दरमियान एक अहम MOU पर दस्तखत हुए, जिसके तहत पुलिस एहलकारों, SPOs और उनके अहल खाना के लिए फलाही और माली तहफ़ की जारी सहूलियात को मजीद वसत दी गई है। इस एडेंडम टू MOU पर J&K पुलिस के DGP नलीन प्रभात और बैंक के MD व CEO अमिताभ चटर्जी ने दस्तखत किए, जबकि इस दौरान पुलिस और बैंक के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे, जिनमें स्पेशल DG सईद जावेद मुश्तबा गिलानी, ADGP हेडक्वार्टर्स मनीष सिन्हा, बैंक के चीफ जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन और जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा शामिल थे। इस माहिदे के तहत पुलिस एहलकारों को अब न सिर्फ बेहतर बैंकिंग सहूलियात फराहम की जाएंगी, बल्कि दौरान ड्यूटी शहादत की सूरत में खसूसी माली तहफ़, बच्चों की आला तालीम के लिए मावनत, बच्चों की शादी के लिए इमदाद, एम्बुलेंस सहूलियात वगैरह भी शामिल हैं। बैंक के MD व CEO अमिताभ चटर्जी ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां دی ہیں اور

0: उनकी कुर्बानियों के एतराफ़ में उनके अहल खाना की इज्जत फलाह और माली तहफ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। डीजीपी नलीन प्रभात ने भी जेके बैंक की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि ये इश्तराक दोनों इदारों की उस मुश्तरका सोच की अक्कासी करता है जिसका मकसद उन अहलकारों और खानदानों को मजबूत सहारा फराहम करना है जो कौम की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करते हैं। एमओयू के मुताबिक पुलिस अहलकारों को जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट्स, मुफ्त डिजिटल बैंकिंग, कंसेशनल लोन रेट्स, प्रोसेसिंग फी में छूट, फौरी तौर पर कर्जों की सहूलियत, कंसेशन ऑन लॉकर रेट्स जैसी मुतअद्दिद आसानियां भी बदस्तूर हासिल होंगी। दोस्तों, ये इकदाम एक इंस्टीट्यूशनल टाई अप ही नहीं बल्कि खामोश कुर्बानियों को सलाम पेश करने की एक बामानी कोशिश है जिनकी बदौलत यहाँ अमन अमान की फजा कायम है।
1: दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से फाइनेंशियल फ्रॉड्स में म्यूल अकाउंट्स का बार बार जिक्र आता है। और क्या है ये म्यूल अकाउंट्स और इनके बारे में हमें क्या मालूम होना चाहिए, जानने के लिए आज हमने दावत दी है बैंक के जनरल मैनेजर बराए केवाईसी एएमएल और ग्रुप कंप्लायंस ऑफिसर पीर मसूद साहब को। सर, जेके बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया।
1: जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
2: देखिए जावेद साहब, ये म्यूल अकाउंट, म्यूल तो एक अंग्रेजी लफ्ज है, इसका मतलब है गधा
1: जी।
2: म्यूल अकाउंट ये हो गया कि जिस अकाउंट को गद्दे के तौर पे इस्तेमाल किया जाए
1: जी।
2: गद्दा तो लाखों का बोझ डालता है लेकिन खुद को तो वही थोड़ा बहुत चारा मिलता है
1: जी।
2: बराबर यही मामला है कुछ अकाउंट्स के साथ, कुछ हमारे कस्टमर्स के साथ, जिसको कौमी सतह पे आज पे बड़ा मसला है बैंक्स के लिए
1: जी।
2: कि कुछ जो समाज दुश्मन अनासिर होते हैं, तो लोगों का पैसा चोरी करते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड के जरिए करें, चाहे वो और किसी तरीके से करें,
1: या मनी लॉन्ड्रिंग,
2: फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करें, वो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू ये पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे घुमाते हैं कि जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उनके लिए फिर ढूंढना मुश्किल होता है कि पैसा आया कहाँ और गया कहाँ
1: और इसका एंड यूज क्या हुआ
2: और उसका एंड यूज क्या हुआ। और दूसरा यह है कि फिर ये पैसा रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मेरा अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की लालच में आते हैं, चलो अगर ये लाख रुपए ट्रांसफर करता मुझे भी 2000 मिलेंगे। कुछ लोगों को ये ऑनलाइन ये ट्रैप हो जाते हैं और वो अपने अकाउंट की डिटेल इन समाज दुश्मन अनासिर के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद इनके ये अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं।
1: सर, एक अहम बात जानना चाहेंगे कि अगर किसी शख्स का अकाउंट एज म्यूल यूज हो रहा है, चाहे उसको पता है या नहीं है, कानूनी तौर पे उसकी क्या जिम्मेदारी बनती
2: है? अगर कोई बंदा डिलिबरेटली करता है उससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये काम छोड़ दीजिए। और अगर कोई बंदा अब बदकिस्मती से अननोइंगली मुलव्वस हो चुका है किसी और वजह से, उसको भी इमीडिएटली अपने बैंक के पास जाना चाहिए और नेशनल लेवल पर एक हेल्पलाइन है 1930 वहां रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरा अकाउंट इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आज की डेट में अगर ज्यादा देखेंगे जो ये म्यूल अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं और ये जो कौम दुश्मन अनासिर इसको इस्तेमाल कर हैं, वो UPI, IMPS और MPA जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरी इस्तेदा तमाम लोगों से, तमाम ग्राहकों से यही है, चाहे उनका अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में है या किसी और बैंक में है, कि आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर किसी वक्त अब आपके अकाउंट में पैसा आ ही जाता है तो आपको इमीडिएटली अपने ब्रांच में जाना चाहिए, वहां पर उनको बोलना चाहिए कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये किसी गलत तरीके से आए हैं, उसको स्टॉप करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए और वो पैसा आपको आगे कहीं ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। और साथ में जो मैंने आपको नेशनल लेवल पे जो हेल्पलाइन है 1930 वहां कॉल करना चाहिए कि मेरे अकाउंट में इस तरह पैसा आया हुआ है, ये जरा देख लीजिए क्योंकि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूं, ताकि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो।
1: पीर मसूद साहब, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, उसके अहम नुकात को आवाम के लिए बिल्कुल आसान जुबान में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया।
3: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
1: और अब इनामी सवाल की बारी।
0: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर पूछा था।
1: इस सवाल का सही जवाब है 1930 यानी 1930।
0: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए जिनमें दिए गए बेशतर जवाबात सही थे, लेकिन लकी

0: के जरिए चुने गए आज के हमारे तीन विनर्स हैं।
1: कश्मीर डिवीजन से टंगमर्ग बारामूला की मुबीना अख्तर, जम्मू डिवीजन से उधमपुर के श्याम सिंह राय और लद्दाख से शंकर लेह के कर्मा कंगला थे।
0: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
0: दोस्तों, आपको बताना होगा कि माली साल 2025-26 में J&K बैंक ने कितना खालिस मुनाफा दर्ज किया।
1: आपके जवाबात हमें 16 मई 2026 शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। याद रहे, अपने जवाबात के हमरा अपना नाम, पता, 16 डिजिट अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिखना ना भूलें।
0: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
1: 1800-890-2122
0: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
1: www.jkb.bank.in।
2: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
0: अब हम एक पंडित आलम की तफसीली गुफ्तगू सुनते हैं, जो हमें सनातन धर्म की रोशनी में हम आहंगी और इंसानियत का पैगाम देते हैं।
2: सनातन धर्म की बुनियादी तालीमात में सबसे अहम तस्वर वसुदेव कुटुम्बकम है, जिसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक खानदान है। इस फलसफे के मुताबिक हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब, जुबान या सकाफत से ताल्लुक रखता हो, हमारे अपने खानदान का हिस्सा है। हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि सच्चाई यानी सत्य, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा और धर्म पर चलना ही इंसान की असल पहचान है। अहिंसा का मतलब सिर्फ जिस्मानी तश

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक। जिन लोगों का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपनी ताकत और असर बढ़ाना चाहते हों, वो अनासिर माशरे के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं, क्योंकि वो दिलों को तोड़ते हैं, रिश्तों को कमजोर करते हैं और भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर देते हैं।
0: इसीलिए ऐसे अनासिर को बेनकाब करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ उलमा या लीडरों का काम नहीं बल्कि हर बाशऊर शहरी का फर्ज है कि वो सच और झूठ में फर्क करे और नफरत फैलाने वालों की हकीकत को पहचाने।
1: हमें चाहिए कि हम हर उस बात को कबूल करने से पहले सोचें, तहकीक करें और समझें। सोशल मीडिया या अफवाहों के जरिए फैलने वाली बातों पर फौरन यकीन करने के बजाय हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि एक गलत खबर या एक इश्तियाल अंगेज पैगाम कई दिलों में नफरत पैदा कर सकता है।
0: तालीमाते मजहब हमें हमेशा ये सिखाती हैं कि सब्र, बर्दाश्त और हिकमत के साथ काम लिया जाए। अगर हम वाकई अपने मजहब के सच्चे पैरोकार हैं तो हमें अपने अमल से ये साबित करना होगा कि हमारा दीन मोहब्बत और अमन का अलमबरदार है, न कि नफरत और तशद्दुद का।
1: हमें अपने घरों, अपने बच्चों और अपने माशरे में ये शऊर पैदा करना होगा कि इख्तलाफ कोई बुराई नहीं बल्कि फितरी चीज है। असल बात यह है कि हम इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम कैसे करते हैं।
0: जब हम दूसरों के अकायद को समझने और उनका एहतराम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दरमियान एतमाद पैदा होता है और फासले कम हो जाते हैं।
1: ये भी जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें और ये देखें कि कहीं हम खुद तो अनजाने में नफरत या तासुब को फरोग नहीं दे रहे। कभी कभी हमारे अल्फाज, हमारे रवैये या हमारे फैसले भी दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

0: havası.
1: Canım fakrı gökümü yok vay ne havası.
0: Canım fakrı

0: आदाब
1: आदाब, कैसे हैं आप सब?
0: जी बाजी, हम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम टिप टॉप। और टिप टॉप तो होना ही चाहिए क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कुछ ढीले ढीले हैं। जानते हैं आप क्यों? वो इसलिए कि जब मौसम बदलता है तो मौसमी बुखार, नज़ला, खांसी, ये सब जो है वो आ जाता है, चाहे हम सर्दियों से गर्मी के मौसम में आए या फिर गर्मियों से सर्दी के मौसम में आए। तो मौसम का जो बदलाव है उससे वायरल्स जो है हल्के फुल्के होते रहते हैं। यहाँ बैठे और घर बैठे सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, और जो आज पहली बार प्रोग्राम में बच्चे आए हैं उनके लिए पहले जोरदार तालियां। तो बात करते हैं कि आजकल का जो मौसम है इसमें एक एलर्जी होती है। आप में से मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि क्यों होती है?
2: क्योंकि हवा में पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसके चलते वो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि फॉरेन बॉडी आ गई हमारी बॉडी के अंदर, और इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसके नतीजे में हम बीमार हो जाते हैं और फीवर, नौसिया और बाकी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है, हमारी आँखों में इन्फेक्शन्स हो जाती हैं उससे। हाँ, तो ये इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको उसे, जैसा कि इन्होंने बताया कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सब वायरल्स हो जाते हैं, एक आप मास्क का इस्तेमाल करें और अगर हो सके तो आप सनग्लासेस पहने, उससे आपकी आंखें जो हैं वो बच सकती हैं। तो चले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मीर सियादत फिरदौस।
1: जी सियादत, क्या सुनाएंगी आप?
2: आज मैं कलम के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन अपनी नज़म को शुरू करने से पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि मैंने ये क्यों लिखी है ये नज़म।
1: जी,
2: दरअसल अगर हम बात करें, हम जब तुलना करते हैं अपनी और किसी दूसरे इंसान की, तो हम डिफरेंट फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए तुलना करते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, या किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो आपसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हकीकी मानों में देखा जाए, आजकल की दुनिया में सबसे बेहतर वही इंसान है जिसके पास इल्म है, और इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें एक कलम की। ये चाहे हम लोग बात करें उस ज़माने की, जिस वक़्त कायनात बन रही थी, तब से लेकर अब तक कलम की एक ख़ास अहमियत रही है। अगर हम लोग बात करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर गए थे तो वहाँ भी उन्होंने कलम की सरसराहट ही सुनी थी। इसके अलावा भी पूरा एक सूरा, सूरह कलम है कुरान शरीफ में, यानी कुरान शरीफ में कुछ ही आयतें हैं, कुछ ही सूरतें हैं, तो उस सूरत में भी कलम का नाम होना ये खुद दर्शाता है कि कलम की क्या अहमियत है।
1: और पहला लफ्ज़ जो है वो है
2: इकरा,
1: इकरा
2: यानी कि पढ़ो,
1: यानी कि पढ़ो जी।
2: और पढ़ने के लिए पहले कुछ लिखा हुआ ज़रूरी होना चाहिए
1: जी,
2: जिसके लिए कलम की ज़रूरत है। तो मैं अपनी नज़म को शुरू करने वाली हूँ। कलम बावफा औराक का है साथी, ज़ेरे नज़र है इसके क्या चींटी और क्या हाथी, अपनी लकीर से तय कर दे जिंदगानी, बेरोक है ये इसकी बेहद रवा रवानी, ये कलम है खुदा की अफजल तरीन न्यामत, जिससे जन्म है पाता हर एक सफाई लुगत, अर्श पर यही है वजह सरसराहट, इसमें है जोर इतना सहजाए हर हरारत, हर चीज से था आला तरी मकाम जिसका, बातिल से डट के लड़ना था खास काम इसका, अब मातहत तखत के खुद हो गया है नाहक, अक्सर पकड़ने वालों को मर्ज जर है लाहक, पर हर जुल्म की खबर है रखता खुदाए बारी, है जानता वो इनकी ये हेरा फेरी सारी, जो भी जुल्म हुए हैं इस कलम की वजह से, जितने भी लोग बैठे हैं इस चीज से खफा है, उन सब की आहुजारी पा जाएगी जवाब, जब होगा सब लुटेरों का आमाल कल खराब, सजा तो रब ही देगा जो हर बुरा सहेगा, जमीन पर फिर आखिर राइज कलम रहेगा, ये वो ही कलम होगा जो फैसले करेगा, पर इस दफा वो बातिल पर हक को ही चुनेगा।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, आप इसी तरह जारी रखिए, अभी आप बहुत छोटी हैं जब आप इसी तरह लिखेंगी। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, आप अक्सर बेशतर हमारे प्रोग्राम में आती हैं, आपके अल्फाज में पुख्तगी है, इसी तरह लिखना आप जो है जारी रखें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी।
2: मैं कुछ और भी कहना चाहती
1: हूँ। जी जी जी।
2: तो जब मैं कुछ भी लिखती हूँ, पहले मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर रहती थी और उनको सुनाती थी, लेकिन अब जब मैं अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हूँ तो जब मैं कुछ लिखती हूँ तो

0: इंतज़ार में रहती हूँ कि प्रोग्राम कब होगा, और मैं अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे भाई बहन यहाँ प्रोग्राम देने आते हैं उनके साथ, और जो भी मुझे घर बैठ कर रेडियो पे सुनते हैं उनके साथ अपनी नज़में शेयर करूँ, क्योंकि मैं अभी अपने घर वालों से दूर हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी सुनने वाले हैं वो सब मेरे घर वालों की तरह ही है, और मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छा लिखूँ और अपने सभी के सभी लोगों तक पहुँचाऊँ, जो भी मेरे अजीज़ वकारीब हैं और साथ ही साथ जो भी मुझे सुनने वाले हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका?
2: ज़ाहिद शौकत।
1: जी ज़ाहिद
2: कलम।
1: जी।
2: कलम क्यों चल रहा है पेच व खम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। अजब इसकी सब गुलकारियां हैं, ताजब गैर गौहर बारियां हैं। कहे ये बादशाह हाथ बनकर, हवा है अदल परवर या सितमगर। मिला गर शायर शायरियां बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। मसवर के जो ये हाथों में पहुंचा, तो खींचा हुसन का अलमो नक्शा। किसी को जिंदगी वापस दिलाई, तो मुश्किल में किसी के काम आई। जहां में है ये क्या क्या गुल खिलाता, हजारों अपने जौहर है दिखाता। शुक्रिया।
1: क्या नाम है आपका?
3: आयशा।
1: जी आयशा, क्या सुना? आगे हो जाएं आप। जी।
3: एहतराम। सब्र के बाद एहतराम से इंसान की मुलाकात होती है। जब इंसान अल्लाह की फैसलों का एहतराम करना सीखता है, जब इंसान अल्लाह की लिखी किस्मतों से शिकवाह करना छोड़ देता है, जो जब उसके हर हुक्म पर सर को झुका लेता है, जो चीज़ पसंद नहीं उसका एहतराम करना, और जो पास रह न सके उसकी दूरी का एहतराम करना, जिसने बुरा किया हो उसका एहतराम करना, जिसने अल्फाज से रुख की, यकीन की, सब्र की दस्तियाँ उड़ाई उसका एहतराम करना, जो शख्स एहतराम करना सीख जाता है उसके राह में दुनिया की कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, और अल्लाह तो मिलता ही एहतराम से है। शुक्रिया।
1: देखिए, हमें हर हाल में जो है वो एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को इज्जत देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो यकीन माने कि फिर हम भी ये उम्मीद करेंगे ना कि हमें भी एहतराम मिलेगा। और जब हम किसी को एहतराम देते हैं, हमें ज़रूर उसके इवज़ में एहतराम मिलता है। सबसे पहले जो एहतराम शुरू होता है एक इंसान का, वो अपने कहाँ से? घर से शुरू होता है, अपनी फैमिली से शुरू होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि 12 तारीख को एक बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत कदर वाला दिन होता है। वो इसलिए होता है कि हर बंदा जो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसकी फैमिली होती है, उसकी ताकत जो होती है उसकी फैमिली होती है। आप ये देखें कि एक शख्स अगर सुबह से शाम तक जाके एक मर्द कमाता है, तो किसके लिए कमाता है?
4: अपनी फैमिली के लिए।
1: अगर एक औरत सुबह शाम चूल्हा चौका करती है, खुद को भी झोंक देती है गर्मी सर्दी में, वो किसके लिए करती है? अपनी फैमिली के लिए करती है। तो 12 तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल फैमिली डे। तो आइए एक ऐसी शख्सियत से सुनते हैं फैमिली डे के बारे में, जिनसे हमने भी बोलना सीखा है। जब बच्चों में आप जितनी थी, तो तब शफकत बाजी प्रोग्राम में आती थी, और मैंने उन्हीं से सीखा है, क्योंकि उन्होंने हमें एक एक लफ्ज़ जो है वो हमें सिखाया है। और आज आपको फैमिली डे के हवाले से वो आपसे बात करेंगी।
5: आदाब बच्चों, कैसे हो? अच्छा, सभी माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक लग रहे हैं। भाई, पढ़ाई भी तो आप लोगों ने की ही होगी ना, और करनी भी चाहिए। बच्चों, एक चीज़ है, सब कुछ आप लोगों को मुहैया रहता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मोहताजी के हाथ आप लोगों के आगे फैलते हैं? आपने कभी सोचा है? बेटा, गरीब होना कोई ऐब नहीं है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से आता है, ना आप देते हैं ना मैं देती हूँ, लेकिन अल्लाह ने जो भी कुछ दिया हम शुक्र ज़रूर करते हैं। लेकिन बेटा, शुक्राना तब भी करना चाहिए जब आप किसी गरीब सगीर की मदद करें, आप वो हौसला बनाएं कि आप किसी के काम आने के लिए भी तो पैदा हुए हैं, सिर्फ पढ़ के एक बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, या बड़ा आदमी या एक बड़ी सी आप पोस्ट पे बैठे हैं तो उससे आप बड़े आदमी नहीं हो गए। कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागी अति दूर। ये तो भाई हम लोगों को एक दूसरे के लिए जीने के लिए अल्लाह ने लाया है, एक दूसरे की मदद के लिए लाया है।

0: एक दूसरे की हिफाजत के लिए लाया है। अगर आप लोग कहीं देख लें, कहीं आप लोगों को ऐसा लगे कि उस घर में चूल्हा नहीं जला, देखो खेलते खेलते भी बच्चे 10 बातें किया करते हैं, 10 जगहों की उनको भी खबर होती है, और तब भी आप अपनी मम्मी को कहें कि आपको 7-7 रंग के खाने खिला दें, तो वो कितना मायूब है। एक पढ़े लिखे माशरे में आप लोग रहते हैं, आप ख़ुद भी पढ़ते लिखते हैं, और अगर आपको इतना भी ख्याल ना रहे कि आपके पड़ोस में कहीं चूल्हा नहीं जला, तो चलो 2-4 घर ही मिल के उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दें। कितना अच्छा हो अगर ये व्यवहार हम लोगों में आ जाए, है ना? क्योंकि अल्लाह मियाँ भी चाहते हैं कि हम लोगों के काम आएँ, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने इंसान को सिर्फ अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए नहीं उतारा, नहीं लाया दुनिया में। अल्लाह मियाँ ने ये जान तब बख्शी है कि इसमें होश व हवास होगा, इसमें तरीका रहेगा, इसमें तौर तरीका भी रहेगा, इसमें इस इंसान में अच्छाई और बुराई में तमीज़ आनी चाहिए। इसके जो जिस तरह आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही अगर किसी को तकलीफ़ में देखें तो आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए, और जो ही आंखें नम होती हैं तो आप किसी की मदद के लिए ज़रूर आते हैं, है ना? तो बेटा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, और इन्हीं चीज़ों से अल्लाह मियाँ बहुत खुश होते हैं, और आपको और सभी ऐसे काम करने वालों को अपनी रहमत से नवाजते रहते हैं। तो बच्चों आज हम एक अहद कर लें। देखो गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी करोड़ों हुई होंगी, मालूम नहीं गिनती भी है कि नहीं, लेकिन जब फिर इंसान होश में आ जाता है ना, तो हर चीज़ का एहसास करता है। तो चलो आज हम इस चीज़ का प्रण कर लें, हम अब आज के बाद हम कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स के खर्चे हुए पैसे, उनकी मेहनत सबको हम परवान चढ़ाएंगे, और हम तभी तो बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले बच्चों के सफ में शामिल होंगे, और अपने साथ और एक गहवारा भी जमा कर ले। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी, तो चलो इतना ही सही, अगली बार मिलते हैं।
1: शफकत बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बातें जो हैं वो बहुत अनमोल होती हैं, और मैं और यहाँ बैठे सब बच्चे और घर बैठे सब बच्चे इनकी जो नसीहतें हैं, सबकामूज बातें हैं, उनको गिरा बांध लें, क्योंकि हम जिस उम्र में आप है ना, उस उम्र में इंसान कहता है मुझे क्या ज़रूरत है नसीहतों की, मैं तो सब कुछ खुद जानता हूँ। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो सब माजी की बातें जो हैं, हाँ पास्ट की बातें जो हैं, वो सब हमारे सामने आ जाती हैं, और हमें ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी के बहुत ऐसे नशीब व फराज होते हैं, ऐसे अच्छे बुरे दिन होते हैं, जबकि नसीहतें, किसी के तजर्बात हमारे काम आते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बड़ों के पास जब आप बैठते हैं तो कोई भी बात हो वो ध्यान से सुना करें, क्योंकि जब आप मन लगा के ध्यान से किसी की बात सुनेंगे, उसमें कोई ना कोई सबक आपके लिए ज़रूर होगा। जी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम रजब लाल है।
1: जी रजिया, क्या सुनाएंगे आप
2: आज? मैं अपने घर बैठे और यहाँ बैठे दोस्तों को एक खेल के बारे में बोलूंगी जिसका नाम पंजिक स्लाट है। पंजिक स्लाट की बुनियाद इंडोनेशिया की जजायर में 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये बुनियादी तौर पर जनूबी मशरकी एशिया का रिवायती खेल है या मार्शल आर्ट है। यूनेस्को ने इसे अपने सकाफती वर्षा की फहरिस्त में शामिल किया है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त, सकाफती शनाख्त और भाईचारे को फ़रोग देता है इसमें लात मारना और जोड़ तोड़ बाजी शामिल है। फेंकने की तकनीकें, इसमें बाज़ रिवायती हथियारों का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। पाकिस्तान की कराची और भारत, खास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में भी अब इस खेल के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है, और नौजवान इसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। यह अब एशियन गेम्स और दीगर आलमी चैम्पियनशिप का हिस्सा बन चुका है। पंजिक स्लाट एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर दिफा के काबिल बनाता है, बल्कि उसे इखलाकी और रूहानी तौर पर भी मजबूत करता है। शुक्रिया।

0: देखें, बिल्कुल सही कहा रज़िया बिलाल ने कि खेल कूद जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल कूद से ही हमारा जिस्म मजबूत होता है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा, हमारी हेल्थ खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अदीबा है।
0: जी अदीबा।
1: लोगों की मुनाफिकत। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को सच्चा होते हुए भी झूठा साबित होते देखा है। मैंने महसूस किया है आपका अपना भी आपका दुश्मन बन जाता है। आप मुनाफिकत करें तो सारी दुनिया आपकी है। जहां आपने सच बोला, हक बोला, किसी को इसकी गलती दिखाई, वहां आपको इतना शर्मिंदा किया जाएगा कि आप समझेंगे शायद आप ही गलत हो। लेकिन इस सब में एक चीज़ को सामने रखे और वो है ज़मीर। मैं जो करती हूँ सही और गलत, मैं खुद को ज़मीर की अदालत में खड़ा करती हूँ और फिर छुप कर आंसू पहुँच के मुस्कुरा देती हूँ कि मेरा अल्लाह सब देख रहा है। और ज़्यादती करने वालों को वक्त आने पर मुंह की खानी पड़ती है। बस सब्र करे और अल्लाह पर जो छोड़ दे, ये दुनिया और उसके लोग कभी आपके नहीं हो सकते। शुक्रिया।
0: अच्छा, एक नन्हा सा बच्चा है, इससे बात करेंगे। और इसके ये हमेशा ना अपने हाथ बंद रखता है, तो इसके बाद आपको इसकी ये मुट्ठियाँ जो बंद होती हैं ना, आ जाइए। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम रियान अली है।
0: रियान अली। रियान अली की मुट्ठी में क्या है?
2: नहीं,
0: घड़ी है, बहुत अच्छी घड़ी है। किसने दिलवाई आपको ये घड़ी?
2: मेरी मम्मा ने।
0: मम्मा ने दिलवाई। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज?
2: आए आए गर्मी बच्चों, आए आए गर्मी बच्चों, हालत कैसी कर दी बच्चों, प्यास पसीना तो बातो मच्छर की बेदर्दी, मच्छर की बेदर्दी बच्चों, रोज नहाना अच्छी आदत, धोना मैली बढ़ती बच्चों, कल तक हमने देखी कितनी हाय हाय तरती बच्चों।
0: तो चलिए अब एक नगमा सुनते हैं।

0: नाम है आपका?
1: मेरा नाम सईद शाहजेब अंद्राबी है।
0: क्या सुनाएंगे आप?
1: आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक बादशाह अपने एक चालाक सिपाही के साथ निकलता है, तो फिर जैसे ही वो निकला तो उसकी तलवार से बादशाह को जख्म लग गया। तो फिर बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने बोला कि मुझे जख्म लग गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे जख्म लगाया तुमने? और उसने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने उसको जेल में भेज दिया। फिर उसके बाद कुछ ही टाइम वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो दूसरों को पकड़ते हैं। फिर उन्होंने देखा कि इसके हाथ पे जख्म, उन्होंने कहा हम लोग इसकी बलि देंगे। लेकिन उसके बाद जब वो उधर उन्होंने उसके जख्म पे देखा, उन्होंने कहा हम लोग जख्मी की बलि नहीं दे सकते। फिर उसके बाद वो अपने उसी सिपाही के पास गया और फिर उसने उससे माफी मांगी कि मैंने आपको जेल में बंद किया। और फिर उसने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आप मुझे जेल में नहीं भेजते तो आपकी वजह से वो आपको नहीं, वो मुझे भेजते फिर अपने साथ। तो फिर इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है।
2: बच्चों, किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ये बहुत ही नेक और फराग दिल था। हमेशा गरीबों, मिसकीनों और नादार लोगों की मदद करता था और इनका बहुत ख्याल रखता था। अल्लाह ने उसे जिस माल से नवाजा था, उसे वो नहायत ही मोहब्बत, ईमानदारी और समझदारी से तकसीम करता था, और इसे इस अमल से बहुत खुशी मिलती थी। और जिन लोगों के लिए वो ये काम करता था, वो भी उसे ढेरों भर दुआएं देते थे। मगर अक्सर ऐसा होता कि इस नेक इंसान की बीवी इसके इस अमल से बहुत नाराज़ रहती थी। वो उसे कहती थी कि आप ऐसा ना किया करें, हमें इससे क्या फ़ायदा होता है, कहीं ऐसा ना हो आपके यूं दौलत बांट देने से हमारी सारी दौलत ख़त्म हो जाए। और वो औरत बहुत कंजूस भी थी, उसे गरीबों से हमदर्दी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा, आज तुम 5 लोगों के लिए खाना बना दो, हम ये खाना और कुछ अच्छे कपड़े गरीब लोगों में बांट देंगे। बीवी ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो सोच विचार में पड़ गई कि कैसे अपने शौहर को इस काम से रोके। ये सोचते सोचते वो सो गई। और अचानक रात को जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग उसके सामने खड़े हैं। वो इन्हें देख कर डर गई। बुजुर्ग आदमी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाने आया हूँ। बुजुर्ग ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। एक दफ़ा की बात है कि एक माहिर शिकारी जंगल में शिकार करने गया। दिन भर की बाग दौड़ के बाद उसने काफ़ी जानवरों का शिकार कर लिया, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही गई और उसकी वापसी का वक्त आ गया। जंगल से वापसी पर उसकी नज़र एक नहायत ही खूबसूरत हिरनी पर पड़ी और उसने हिरन का निशाना लिया, उस पर निशाना लगाकर इसका शिकार कर लिया। इसके बाद इसने सारे जानवरों को जिनका शिकार इसने किया था कंधे पर डालकर घर की तरफ चलने लगा। जब ये घर की जानिब चल रहा था तो थोड़ी ही देर आगे इसका सामना एक खूंखवार शेर से हुआ। शिकारी ने शेर को देखकर कहा, मेरे पास ढेर सारा गोश्त है, तुम इसमें से जो चाहो खा लो, लेकिन मुझे छोड़ दो और अपनी भूख मिटा लो। मगर शेर ना माना, क्योंकि इतना गोश्त देखकर उसके दिल में भी लालच हो गई थी। और शेर ने सोचा, क्यों ना शिकारी को भी इस गोश्त का हिस्सा बना दिया जाए। और ये सोचकर उसने शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए उस शेर से लड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने तीरों से शेर को बहुत जख्मी कर दिया। शेर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। लेकिन शेर से लड़ते वक्त शिकारी को भी बहुत गहरे जख्म लगे थे और बहुत खून बह रहा था, तो वो भी जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। कुछ ही देर बाद वहां से भेड़ियों का एक गोल का गुजर हुआ। भेड़िए बहुत दिन से भूखे थे और भेड़ियों के सरदार ने इतना सारा गोश्त देखा तो उसके दिल में लालच

0: पैदा हो गई कि मैं अपने तमाम इन साथियों को यानी भेड़ियों को जो है ये गोश्त न खाने दूं और कोई ऐसी तरकीब सोचूं कि जिससे ये सारा गोश्त
1: खुद
0: मुझे
1: से
0: ही
1: मैं
0: मिल जाए।
1: खाऊं।
0: तो वो अपने इन भेड़ियों से दोस्तों से लड़ पड़ता है और इस बीच ये भेड़िए जो है सब जख्मी हो जाते हैं और गोश्त किसी को भी मैसर नहीं होता। इस तरह हिर्स और लालच ने उन तमाम लोगों की जान ले ली और किसी के कुछ भी हाथ ना आया। अगर शिकारी कुछ ही शिकार करके ज़्यादा लालच न करता तो शायद बखैर वाफियत घर पहुंच सकता था। इसी तरह अगर शेर भी शिकारी की बात मान लेता तो उसकी भूख भी मिट जाती और वो शिकारी के तीरों का निशाना भी न बनता और न ही दोनों शेर और शिकारी हलाक होते। बुजुर्ग ये कहकर खामोश हो गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए तुम्हें समझाने आया हूँ कि ज़्यादा माल और दौलत जमा करना मुनासिब नहीं। इस माल और दौलत को इन लोगों में तकसीम करो जो इसके असल हकदार हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो फाका कशी पर मजबूर हैं और उन्हें पहनने के लिए मुनासिब लिबास भी मयसर नहीं, और दूसरी जानिब ऐसे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी माल और दौलत जमा करते रहते हैं, जबकि हम सबको मालूम है कि हम सबको एक दिन मरना है और ये सब माल और दौलत छोड़ कर जाना है। नेक आदमी की बीवी बुजुर्ग की कहानी से काफ़ी मुतासिर हुई और उसने अपनी इसलाह करने का वादा किया। अगली रोज़ सुबह उसने अपने शोहर से कहा कि मैं अपनी गुफ्तगू और सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आप आज ही मुझे सामान ला कर दीजिएगा, मैं खुद अपने हाथों से बेहतरीन खाना पकाऊंगी और हम दोनों मिलकर ये खाना और लिबास ज़रूरतमंदों में तकसीम करेंगे।
2: मुझे लगता है बच्चों क्यों ना एक सॉन्ग सुना जाए।
3: जी
2: ठीक
3: बाजी।
2: है।

इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक ताला आप सभी को उम्र नूर शान ज़ुल्कर्नैन अता फरमाए, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा

बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे होनहार। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए।

मीडियम वेव 2.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 8.8 मीटर तो एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समिन पेश छो सेठ रफी सुन तहरीर कुरमुद कशुर रेडियाई ड्रामा वीर सांडान टंग।

हता बुझा बोझू इस इंसान पन्ने करतूतों तो रश्मि बदव अकूर तूर बना गरीब सदि खतर सू इंसान मदि फजूल यसारस मं तो तिथिस इंसानस गस्ति नून दिन ताकि आइंद रोजस हैन दाजुक नाव जेवि पेट हैनस।

0: समीन 12 बज रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नश्र करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: News Bulletin.
1: मीडियम वेव 268 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। आई समय चंद गजलें समाप्त करते हैं। आगाज में आपको सुनवाते हैं कतील शफाई के अशार तलत अजीज की आवाज में।

जी दोस्तों, आप गज़लें समाप्त कर रहे हैं और ये था मोमिन का कलाम। और आखिर पर आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में जावेद अख्तर के अशआर।

0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो दोस्तों, ये फिल्मी गज़ल आप समाप्त कर रहे थे फिल्म साथ साथ से। कुलदीप सिंह की मौसीकी थी, जावेद अख्तर के बोल थे और ये आवाज़ थी जगजीत सिंह की। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है और मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले को मनुष्यात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है।

0: अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज से मनशात मुखालिप पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उन्होंने कहा कि मनशात का नासूर समाज को खोखला कर रहा है और इसका कला कमा करना वक्त की अहम जरूरत है।
1: ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं, ये लड़ाई आपकी, ये लड़ाई मेरी, ये लड़ाई हम सबकी। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ नहीं करेंगी। आइए हम अनंतनाग की जमीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे।
0: इस पदयात्रा में काफी तादाद में तलबा, ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबकाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर वादी और गोल्फ के दरमियान एक गहरा और तारीखी रिश्ता है और ये कि वादी के गोल्फ कोर्स मुल्क के बेहतरीन गोल्फ कोर्सों में शुमार होते हैं। रॉयल स्प्रिंग्स श्रीनगर में गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सतह के गोल्फ कोर्सेज न सिर्फ मकामी गोल्फ खिलाड़ियों के लिए तहरीक बख्श होंगे बल्कि इससे यहाँ की सियाहत में भी चार चांद लग जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सरकार महकमे सियाहत के बाहमी इश्तराक से इस तरह के मजीद टूर्नामेंट मुनक़द करने के मनसूबे पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि बात बायस इत्मीनान है कि अब जम्मू और कश्मीर से बाहर रहने वाले गोल्फ खिलाड़ी श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसी मकामात पर गोल्फ खेलने आ रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आला आज गांधरबल का दौरा कर रहे हैं जहां वो 40 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद ख़ान ने डाक बंगला दावर गुरेज में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए गुरेज सब डिवीज़न में सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जारी कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। एमएलए मौसूफ ने रकूमात के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि रवा माली साल में एक भी रुपये के लैप्स होने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सभी डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज के लिए दाखिले का अमल कल से शुरू हो गया है। ख्वाहिशमंद तालिबे-इल्म इन कोर्सों के लिए 27 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
2: माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पर और ये प्रोसेस चलेगा आफ्टर 27th, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। इसमें कोई ऑफ डे नहीं है, जो पब्लिक हॉलीडेज है वही ऑफ है। जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, बाकी प्रोसेस ऑनलाइन है।
0: वादी के मुख्तलिफ अजला में कल 2026 की दूसरी कौमी लोक अदालत मुनक्किद हुई। ज़िला बड़गाम में 1023 मामलात में से 585 मामलात को बाहमी इफ़ाम तफ़हीम के साथ निपटाया गया है और मुआवजे के तौर पर जायद 91 लाख रुपये वागुजार किए गए हैं। इसी तरह की एक लोक अदालत ज़िला अनंतनाग में भी मुनक्किद हुई जहाँ 574 मामलात को बाहमी इफ़ाम तफ़हीम के साथ निपटाने के बाद 1 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर वागुजार किए गए। इसी तरह से कोलगाम में 270 मामलात हल करके 44 लाख रुपये का मुआवजा, जबकि बारामुल्ला में 1169 मामलात निपटा कर 1 करोड़ 14 लाख रुपये और शुपया में 210 मामलात हल करके 59 लाख रुपये का मुआवजा वागुजार कराया गया। बांडीपुरा और दीगर कई अजला में भी नेशनल लोक अदालतें मुनक्किद की गईं। आज मदर्स डे यानी यौम मादर है। ये दिन हर साल मई की दूसरी इतवार को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में माओं की शफकत और उनकी कुर्बानियों के एतराफ़ में उनके तई सिपास गुजारी का इजहार करने का एक मौका है। काबिल जिक्र है कि माँ बेलोस मोहब्बत, शफकत, वाबस्तगी और कुर्बानियों का एक मुजस्मा होती है।

श्रीनगर है। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर ते एफएम अखत 3.5 मेगाहर्ट्ज़ सुन पेट वलिव सामेन के गजल बोजो आगाज करो कला में आहद भट्ट से फनकार गुलाम हसन सोफी।

0: आज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
2: पर क्या कर सकते हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
3: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
4: दीदी, नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
4: पर दीप,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
5: अच्छा,
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: इस आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर तो एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ सेंटर समय तो शुक शर्मोसा की बोजान तो वल्यू कला में अर्निवाल बोजो फनकार शे वहीद जिलानी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जी समयन आप समाप्त कर रहे थे मगरिबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 1:50 हो रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।

ये आकाशवाणी है, अब आप आदाब। ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वज़ीरे आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वज़ीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और तीरंदाज

0: वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय ख्वातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें योम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग बैन अल-अक़वामी सेंटर में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खिदमत, रूहानियत और समाजी कायापलट के फरोग में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के रोल को सराहा।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
0: जनाब मोदी ने माहौलियात से मुतालिक जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सियासी निज़ाम के मुकाबले समाजी शमूलियत ज्यादा बाअसर है और मुल्क की तामीर के लिए लाजमी है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में बीजेपी की कामयाबी उनकी सरकार की जानिब से नाफिज की गई कौमी पॉलिसी के लिए अवाम की हिमायत का मजहर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजों से लोगों के मूड की अक्कासी होती है और इससे ये इशारा मिलता है कि अवाम उनकी सरकार के कौमी प्रोग्रामों और पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। जनाब मोदी आज बेंगलुरु में बीजेपी कैडर से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने ऐसी सरकार की जरूरत उजागर की जो ठीक ढंग से काम करे, तेज रफ्तार के साथ अच्छी हुक्मरानी फराहम करे, मसाइल का हल निकाले और मुल्क को आगे ले जाए।
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
0: कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्लियामेंट में नारी वंदन संशोधन बिल के खिलाफ वोट देकर ख्वातीन को धोखा दिया है, जबकि इसमें पार्लियामेंट में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की बात कही गई थी। वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अमरीका ईरान जंग जैसे जुग्राफियाई और सियासी हालात व वाकयात से पैदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने के लिए मुत्तहिद रहें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब हैदराबाद जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 9,400 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी वारंगल में पीएम मित्र पार्क का इफ्तिताह करेंगे, जिसे काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और जिसे पीएम मित्र स्कीम के तहत तैयार किया गया है। जनाब मोदी सिंधु अस्पताल को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये इदारा हैदराबाद में बनाया गया कैंसर के लिए मखसूस जदीद तर्ज का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हिफ्जान सेहत मरकज है, जो किसी मुनाफे के बगैर काम करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कलगम टीवी के पार्टी के बानी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमराह 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। हलफ बरदारी की तकरीब में कांग्रेस के लीडर

0: राहुल गांधी और तमिल फिल्म सनात से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। जनाब जोसेफ विजय ने तारीख रकम की है। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली उनकी पार्टी टीवी के वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1967 के बाद से वो रियासत के ऐसे पहले वजीर आला बने हैं जिनका ताल्लुक न तो डीएमके से और न ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से है। जनाब जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसीके सीपीआईएम सीपीआई और आईयूएमएल की हिमायत के साथ 234 रुकनी ऐवान में 120 अरकाने असेंबली की हिमायत हासिल है। लोकभवन के एक अखबारी बयान के मुताबिक गवर्नर मौसूफ ने वजीर आला जोसेफ विजय को हिदायत दी है कि वो बुध के रोज या उससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर जोसेफ विजय को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार आवाम के रहन सहन को बेहतर बनाने की खातिर तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक़े राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमूई तौर पर पार्टी के 8 अरकाने असेंबली ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा का नाम तजवीज़ किया। वहाँ मौजूद दिगर अरकाने असेंबली ने इसकी तायीद की। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीरे सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात और राजस्थान में कल तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मगरबी भारत में भी अगले 7 दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में रफ्ता रफ्ता 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP legislature party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai.

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
2: Bharat ki janta keh rahi hai ki hame speed chahiye, hame scam nahi, solutions chahiye, hame rashtra niti wali rajniti chahiye. साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9400 crore rupees in Telangana The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal also known as the Kakatiya Mega Textile Park developed under the PM Mitra scheme He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care, not-for-profit hospital. The founder of Tamil Nag Vetri Karagam, TVK, actor-turned-politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion. During his address after taking the oath, Chief Minister Vijay appealed to the people to remain confident about his government and said that he will enable smooth and transparent governance to all.

0: एप्लीकेंट को फैसिलिटेट की बात है, हमने मोबाइल वैन की सर्विसेज दी है। कारगिल जैसे दूर रिमोट एरियाज में मोबाइल वैन पिछले साल लगातार जून से और अक्टूबर नवंबर तक हमने कंटिन्यू लगाया है। इसी सर्विसेज को हम डिफरेंट डिफरेंट जिलों में भी देते हैं।
1: आज की तारीख में इस साल आपने पिछले साल की बात की, 2025 की बात की, कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी आर रिसीव्ड अराउंड लैक और मोर देन लैक। कितने पासपोर्ट इशू किए गए पिछले साल के अंदर?
0: पिछले साल करीब मोर देन 95,000 हम लोगों ने इशू किया पासपोर्ट।
1: तो इस पासपोर्ट में जो इशुएंस है, इसमें किस एज ग्रुप के और कौन कौन सी कैटेगरीज कवर की गई?
0: इसमें सभी एज ग्रुप का होता है, इवन एनफेट से लेके और ओल्ड एज तक सभी लोग जो भी इंडियन सिटीजन है, सब जो भी पासपोर्ट आवेदन करता है उनको सभी को पासपोर्ट जारी किया जाता है।
1: जो रिलीजियस पिलग्रिम्स और हज पिलग्रिम्स होते हैं, अक्सर हर साल होता है हज पिलग्रिम्स के पासपोर्ट आते हैं, उनका टाइमली रिक्वायरमेंट होता है कि उनको वक्त पे पासपोर्ट मिले, उनकी एप्लीकेशन जैसे अनाउंसमेंट होती है कि तो उनको अप्लाई करना होता है, वेदर इन गवर्नमेंट साइड में या जो स्टेट हज कमेटी है उसमें उनको अप्लाई करना होता है, या प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू वो जाते हैं, उन वो जो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए किस तरह से आप, क्या कोई डिफरेंट या क्या कोई सेपरेट मैकेनिज्म है जो हज पिलग्रिम्स या कोई और रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जाना चाहते हैं?
0: हज के ड्यूरेशन में हम लोग एक हज स्पेशल फैसिलिटेशन काउंटर लगाते हैं हर साल जब भी हज का दौर होता है, और आवेदकों को अलग से फैसिलिटेट किया जाता है। उनको जिस किसी तरह की दिक्कत है, अपॉइंटमेंट की दिक्कत हो, चाहे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में दिक्कत हो, पासपोर्ट जल्दी इश्यू करना हो, तो जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो हम लोग उनको प्रायोरिटी भी इश्यू करते हैं।
1: जो हज पिलग्रिमेज से जुड़ा एक और सवाल निकल रहा है, पॉइंट निकल रहा है, क्योंकि वो कई लोग इसमें सीनियर सिटीजन होते हैं, दे आर नॉट यू नो टेक सेवी। आज का जो स्मार्टफोन्स है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दे हैव गॉन डिजिटली, उनकी सहूलत के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए किस तरह से आप यहाँ पे एक मैकेनिज्म सेटअप किया है?
0: हम लोगों की ऑनलाइन प्रक्रिया है उनको, अगर मोस्टली इस तरह का बहुत सरल प्रक्रिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ज्यादातर लोग अपने, अगर कोई ओल्ड एज है वो खुद नहीं इसको अपॉइंटमेंट ले सकता है, तो उनके घर में जो भी है नोन है या सर्विस सेंटर्स गवर्नमेंट के, उनके थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
1: डिफरेंट इलाकों से हैं, जैसे आपका ज्यूरिसडिक्शन जो है, मैंडेट जो है कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट, देन यू हैव कारगिल इन लद्दाख, लेह इज आल्सो देयर अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इतने डिस्ट्रिक्ट्स में जो, जैसे हज एप्लीकेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप रीच आउट उधर करते हैं उनके पास, या उनको अपनी फॉर्मेलिटीज पूरे, जैसे बायोमेट्रिक्स है, कुछ और चीजें जो इससे जुड़ी है पासपोर्ट इश्यूएंस में, उसमें किस तरह से उनको मोर फैसिलिटेशन मिलती है?
0: जैसे मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट उस टाइम में हर कैटेगरी में हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। चाहे अपॉइंटमेंट डिले हो रहा तो अपॉइंटमेंट प्रायोरिटी भी दे देंगे, पासपोर्ट इश्यूएंस में डिले हो तो पासपोर्ट इश्यू, उनको सभी को ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा। और जैसे कि हमारी लास्ट ईयर प्रयास थे कि जैसे हज के टाइम में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में हमें लगता है कि हज के एप्लीकेंट ज्यादा है, तो वैसे जगह हम मोबाइल वैन को डिप्लॉय कर सकते हैं इनकेस दे फेस टू ट्रेवल टू द आरपीओ से, तो उनके लोकेशन पे लगाए।
1: उन हज एप्लीकेंट्स के जो होंगे प्रोस्पेक्टिव हज एप्लीकेंट्स, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज की तारीख में?
0: मुझे उनको सबसे पहले तो यही कहना है कि जो भी आपका हज का टाइमिंग, आप बिफोर टाइम सही समय से पूर्व ही आवेदन करें, एकदम
1: अप्लाई करें पहले ही एडवांस में,
0: क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट्स में भी टाइम लगता है नेचुरली है, तो सो दैट उनको टाइमली पासपोर्ट मिले, तो कम से कम 3 या 4 महीने पहले अपना आवेदन जमा कर।
1: इस साल कितनी पासपोर्ट एप्लीकेशंस रिसीव की गई आज की तारीख?
0: साल हमने जनवरी से लेकर के अभी मार्च तक अप्रोक्सीमेटली 30,000 एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर लिए।
1: तो हाउ मेनी पासपोर्ट्स हैव बीन इशूड टिल नाउ?
0: टेंटेटिवली 25,000 के अराउंड पासपोर्ट इशू हो चुके हैं।
1: तो सर, इसमें अब पासपोर्ट सर्विसेज से जुड़े, पासपोर्ट सर्विस देने के लिए जाहिर है पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर यहाँ पे श्रीनगर में है, तो डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से लोगों को, क्या ऐसे फैसिलिटेशन होती है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस रूरल एरियाज या दूर दराज फार फ्लंग एरियाज है कश्मीर डिवीजन में या लेह में करगिल में, किस तरह से आप उसको यू नो हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस?
0: दूर दराज के एप्लीकेंट को, जैसे हमने बोला ना, एक मोबाइल वैन सर्विस हमारे पास उपलब्ध है, जो काफी दूर लोग हैं उनको हम समय समय पे मोबाइल डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, सो दैट कि उन लोगों को पासपोर्ट के लिए आरपीओ श्रीनगर तक आने की जरूरत ना पड़े।
1: जो पासपोर्ट कैंप्स का क्या, व्हाट इज दैट फॉर्मेट?
0: बेसिकली वो जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो बैन में ही इंस्टॉल किया गया है, जिसमें भी बैन में हम लोग जो अपॉइंटमेंट देते हैं उनको प्रायर अपॉइंटमेंट देते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद एक पर्टिकुलर लोकेशन में बैन को डिप्लॉय कर देते हैं, उनकी सभी एप्लीकेशन जितने भी आवेदक उनको उसी स्पॉट पे
2: प्रोसेस कर दी जाती है।
1: जो ही यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में या मोबाइल वैन पे जहां भी ये सेटअप आपका लगा है, जो ही बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो

0: ये सारे फॉर्मेलिटीज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद कितने टाइम के अंदर ये जो वेरिफिकेशन जो है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन या जो भी क्लियरेंस जिसके लिए ये एप्लीकेशन जाती है टू डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज टू डिफरेंट वेरिफिकेशन एजेंसीज कितने टाइम के अंदर उन तक पहुंचती
1: है? ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये तो सेम डे में ही निकल जाता है। जैसे द मोमेंट आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है जैसे ही ग्रांट हो जाए तो ऑनलाइन पे पुलिस रिपोर्ट इनिशिएट हो जाती है, तुरंत ही हो जाती है।
2: सबीन, गुज़श्ता माह की 24 से 30 तारीख तक वैक्सीनेशन या टीकाकारी का आलमी हफ्ता मनाया गया। इस हफ्ते के मनाने का मकसद दुनिया भर में आम लोगों के अंदर टीकाकारी की अहमियत को उजागर करना होता है ताकि मुख्तलिफ अकसाम के अमराज से लोगों को नजात दिलाई जा सके। इस हफ्ते के दौरान हमारी यूटी के अंदर भी तरह तरह के प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया। इन प्रोग्रामात के दौरान लोगों खासतौर से नवजायद बच्चों की माओं को इस बात की ताकीद की गई कि वो बच्चों को आइंदा उम्र में मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वक्त वक्त पर जरूरी वैक्सीन लगाएं। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर ने जम्मू कश्मीर के स्टेट इम्यूनाइजेशन अफसर डॉक्टर शाहिद हुसैन के साथ इस हफ्ते और जम्मू कश्मीर में इम्यूनाइजेशन के लिए दस्तियाब सहूलियात से मुतल्लिक खुसूसी बातचीत की थी। आइए सुनते हैं इस बातचीत का अगला हिस्सा।
3: डॉक्टर साहब, किस लेवल पे फैसिलिटीज ग्रास रूट से लेकर टॉप तक किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है सो दैट लास्ट माइल पे हम कवर कर सके जो भी वैक्सीनेशन करनी है बच्चों की?
4: हमारे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज, पहले तो हम आगे मेडिकल कॉलेजेस और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर पीएससी आती है, फिर हमारे नीचे सब सेंटर आते हैं। सब सेंटर वो हो गए जो हमारे गांव में होंगे। अब आप थोड़ा इमेजिन करें, गांव में एक सेंटर है जिसमें डॉक्टर तो नहीं है लेकिन हमारा वहां पे एमएलएचपी एक नया कार्डर एम्प्लॉय हुआ है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स, वो बैठे हुए। अब कोल्ड चेन पॉइंट हमारे वहाँ पे नजदीक बने हुए हैं। जहाँ जहाँ कोल्ड चेन पॉइंट है वहाँ हमारी वैक्सीन सेफ, इफेक्टिव, रिकमेंडेड टेम्परेचर में रखी हुई है, रिकमेंडेड। और मैं आपके थ्रू ये एक दावे से बोलना चाहता हूँ कि हमारी वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत पोटेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने टेम्परेचर बहुत रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। मेरा एक एक वर्कर, चाहे कुपवाड़ा हो या कठुआ का एरिया हो, उड़ी हो, कहीं भी ना, हम डेली उसको अपने मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह और शाम को भी देखते हैं हमारा टेम्परेचर कितना है। हमारी हर एक फैसिलिटी में जहां कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है वहां पे हम क्या करते हैं, आउटरीच एक्टिविटी कर रहे हैं थ्रू हेल्प ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। ICDS डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में हम विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे आउटरीच एक्टिविटी करते हैं। वो बच्चे किसी वजह से छूट के, जैसे एक लेबर क्लास है वो सुबह नहीं आ सकते, वो जल्दी निकल जाते हैं, तो हमने क्या किया होता है उनको कवर करने के लिए स्पेशल हमने एक रूटीन में एक मुहिम चलाई होती है। हर हफ्ते हम एक बुधवार के बाद थर्सडे को, हम एवरी थर्सडे मेरा वर्कर, मेरी ANM आशा वहाँ विजिट करती हैं, उन बच्चों को पकड़ते हैं जो किसी वजह से नहीं लगा पाए। तो हर एक गांव में ये मेरी वैक्सीन की फैसिलिटीज अवेलेबल है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। हमारे पास कोल्ड चेन एडिक्यूएट है, वर्कर एडिक्यूएट है लगाने का। सिर्फ यही है कि बस जो पॉपुलेशन है वो आए, अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं, हेल्थ फैसिलिटी में आए। अब क्या, जहां पैदाइश हो रही वहां तो रेगुलर लगना ही लगना है, लेकिन उसके बाद वाले जो वैक्सीन है ना वो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे लगवाने, वहां पे हमारे वर्कर अवेलेबल है। कहीं से कहीं दिक्कत आती है, कोई तकलीफ होती है, हमारे नंबर हर जगह अवेलेबल है, हमें रابطہ कर सकते हैं। हम पब्लिक की जो भी कोई मुश्किल होगी उसको खत्म करने की कोशिश या कहीं आसान करने की कोशिश करने के लिए बैठे हुए।
3: और कौन से एज ग्रुप आप कवर करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे जो इम्यूनाइजेशन इस मैंडेट के तहत आता है? विंटर से पहले कुछ एंटी इन्फ्लुएंजा लगाते हैं, कोई और भी ऐसे क्या आप कवर करते हैं, आपके प्रोटोकॉल में है या मैंडेट में है?
4: जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ना, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें ये वाला एज ग्रुप जो है ना, जो एल्डर एज ग्रुप है, वो हमारे पास कवर नहीं होता है। हमारे पास होगा 10 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 10 and 16 years, इसको हम TD वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको हम TD इंजेक्शन लगाते हैं। और आज हमने जो एडोलेसेंट एज ग्रुप HPV कवर किया है, हम इनको वैक्सीन लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी तक कोई मैंडेट नहीं है जिसके थ्रू हम इस पब्लिक जो है एल्डर्स है, हमारे जेरेट्रिक पॉपुलेशन है, इन्फ्लुएंजा लगाने का अभी तक हमें कोई ऐसी हिदायत नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गाइडलाइंस आती है, हम उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं।
3: आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो रिक्वायरमेंट है जो आप चलाते हैं, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो रेगुलरली चलता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, और स्किल्ड मैन पावर, टेक्निकली स्किल्ड या जो क्वालिफाइड लोग हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि फार फ्लंग एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, जिसे हम कहेंगे कि लास्ट माइल रीच जो है, लास्ट माइल एक्सेस जो हमें बनानी है, इसके लिए आप कितना समझते हैं कि रिक्वायरमेंट और है हमारे जम्मू एंड कश्मीर लेवल पे?
4: हमारे जो तकरीबन वर्कर मेजॉरिटी जो है

0: वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से है। उसके बाद हमें जो हेल्प है वो नेशनल हेल्थ मिशन के जो हमारे वर्कर्स हैं वो है। अभी तक तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास मैन पावर जो है वह एडिक्वेट है। दूसरा है इक्विपमेंट्स की बात, तो हमारे ऑलमोस्ट 700 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। चाहे आप ग्रेस की बात कर लें, किश्तवाड़ के ऊपर वाले एरिया की बात कर लें, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं होगी या स्नो बाउंड की वजह से बंद रहता है, वहाँ पे हमने बिजली वाले नहीं, हमने सोलर डायरेक्ट हमने डिवाइसेस वहाँ लगाए हुए जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हुए और उसको भी रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी बात रही जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, इनकी हमें रेगुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कई चीजें नई आती है, नई वैक्सीन आती है, कोई नया प्रोटोकॉल आता है, तो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, स्टेट लेवल पे हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। तो हमारे जो वर्कर्स हैं इनको रेगुलर हम ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि वो भी अपडेटेड है और उनके जो आशा वर्कर है उनको भी नॉलेज मिलती है। उस वजह से मैं ये समझता हूँ हमारा सिस्टम जो है बहुत रोबस्ट है, हमारे वर्कर्स बहुत अच्छे हैं। हमारी मेन फोर्स ही जो हमारी ANM है, फीमेल मल्टीपर्पज है, वो है और मेरी आशा है और आंगनबाड़ी वर्कर है। हम इन्हीं के सिर पे हम सारी अचीवमेंट कर पाते हैं और हम अच्छी तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, जो ऊपर सेक्रेटरी से हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर मैडम है, वो इसको रेगुलर मॉनिटर करते हैं, रिव्यू मीटिंग्स रेगुलर होती है। उससे हमें कहीं ना कहीं जो कमियां खामियां मिलती हैं हम मिनिस्ट्री से भी बात करते हैं, कहीं इक्विपमेंट की बात होती है रेगुलर हमें वो सप्लाईज भी आती हैं। वैक्सीन जो है वो हमारे तकरीबन 2 महीने में सप्लाईज हमें रेगुलर मिलती हैं हमारी डिमांड के हिसाब से, और हम इसको प्रॉपर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एज पर रिक्वायरमेंट इसको हम पहुंचा भी देते हैं, उसके लिए भी हमारे पास हर चीज दस्तयाब है।
1: डॉक्टर साहब, देयर आर चिल्ड्रन हु बिलोंग टू सर्टेन डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस लाइक ऑर्फेनेजेस में बच्चे हैं, किसी और चिल्ड्रन होम में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के अक्रॉस जम्मू कश्मीर, आप कैसे एक्सेस करते हैं या वो ऑर्फेनेजेस कैसे कवर करते हैं इन बच्चों को भी, क्योंकि वहां भी बच्चे छोटे होते हैं, आप रीच आउट करते हैं उनकी तरफ?
0: बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ग्रुप की आपने बात की जो की वल्नरेबल पॉपुलेशन हम बोलते हैं। अब जम्मू में और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ होम्स हैं, जम्मू में भी काफी होम्स हैं। उसके लिए क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, वहाँ पे स्पेशल मोबाइल टीम्स होती है, वो महीने में एक या दो बार वहाँ पे विजिट करते हैं। मोस्टली उनकी जो उन बच्चों की जो हमने भी देखा है, थोड़ी एज ग्रुप थोड़ा सा बड़ा होता है, अडल्ट एडोलेसेंट में आ चुके होते हैं, फिर भी अगर उनमें कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मदर भी वहाँ है, उसका बच्चा छोटा है उस एज ग्रुप में, तो 100% हम उनका वैक्सीनेशन का ख्याल रखते हैं। प्लस उनकी जो बाकी भी जरूरतें हैं हेल्थ के मुताबिक है, उनका हेल्थ चेकअप है, उनकी स्क्रीनिंग है, एनीमिया को देखना है, उनके बाकी चीजें हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स है, उनको कोई और है, न्यूट्रिशन इश्यूज है, तो उसके लिए भी जो हमारी मोबाइल टीम्स है उनको देखती हैं। वहां से फीडबैक जो आती है रेगुलर हमें अगर आती है, हमारी जरूरत होती है तो हम स्पेशल आउटरीच वहां पे भी करते हैं। और हमारे सिर्फ ये जम्मू में ही नहीं, और भी अगर हम कठुआ आरएसपुरा इधर उधर देखते हैं तो हमने आइडेंटिफाई करके रखी हुई है वो फैसिलिटी, जैसे जैसे वहां पे कोई ऐसी जरूरत होती है हम करते हैं। जैसे कोविड के दौरान अगर आपके थ्रू मैं बताऊं तो हमारे जो जेल इनमेट्स थे या कुछ ऐसे थे, तो उनको भी कवर करने के लिए हमने स्पेशल मुहिम चलाई थी। उसमें हम विद द परमिशन ऑफ वो जो उनके सुपरिटेंडेंट रहते हैं, तो हमने उन लोगों को भी वैक्सीनेट किया था जो कि बाहर हमें इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने हमें हिदायत दी हुई है कि उन लोगों को वल्नरेबल पॉपुलेशन को भी कवर करना है। और दूसरा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अर्बन पॉपुलेशन में अर्बन स्लम्स भी है, अर्बन पुअर भी है, तो ये मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है। इसके लिए स्पेशल अर्बन आशाज है और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो नोमैडिक पॉपुलेशन है, जो पहाड़ों पे गर्मियों में ऊपर जाएंगे, सर्दियों में नीचे आ जाएंगे, तो उनके बच्चों को भी कहीं छूट ना जाए, तो उसके लिए ट्राइबल आशाज रखी हुई है, डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उनको मैं जैसे बताया यूविन पे एंट्री करने से क्या हो रहा है, उनके भी फोन है, जब वो नेटवर्क एरिया में आते हैं तो उनके हमें अलर्ट्स आते हैं, उनको भी अलर्ट जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मोबाइल टीम्स की मदद से उनको कवर कर लेते हैं।
2: सुनिए, जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले माली साल के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा 2,363.47 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया और इस तरह से बैंक ने गुजश्ता माली साल के मुकाबले में अपने मुनाफे के अंदर 13% इजाफा हासिल किया। बैंक ने अपने बुनियादी ढांचे में भी काफी हद तक बेहतरी लाई है, जबकि सार्फिन के लिए खिदमात में भी रोज अफजू टेक्नोलॉजी पर मबनी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर ने जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी के साथ बैंक के कामकाज और खिदमात के अलावा हसूलियाबियों के ताल्लुक से एक खसूसी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आइए समाप्त करते हैं।
3: जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के इन कंपैरिजन टू दैट, सो दिस इज अनदर फीट इन द J&K बैंक्स कैप। सो सिमिलरली द बैंक ऑल्सो एंडेड द फाइनेंशियल ईयर ऑन अ हाई विद अ रिकॉर्ड क्वार्टरली परफॉर्मेंस। हाउ डू यू सी द एनुअल रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26?
4: The results

0: including the business growth that has happened in 25-26, has a special meaning, because we all know what went through the geography of Jammu and Kashmir during this year, right from 22nd of April, and later on the impact on the business because of that, tourism and other sectors being affected. Pichle saal humne jo mushkilat dekhi yahan Jammu and Kashmir mein, तो वो उसके मद्देनजर अगर आप हमारे प्रॉफिट को या हमारे बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल है. आप फ्लड्स को ले लें, जो हाईवे बंद था, इन सभी चीजों की वजह से बिजनेस काफी अफेक्टेड था. तो हमने इसी वजह से कुछ अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाए थे. हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एमएसएमई पे फोकस किया लास्ट क्वार्टर में, और इसके साथ में एक बिजनेस मिक्स हमने किया रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे ब्रांचेस हैं. हमारा ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हमारे ब्रांचेस हैं, तो उन सबको भी हमने एक्टिवेट किया इस दौरान, इस साल. तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, इंडस्ट्री से बेटर बिजनेस ग्रोथ रहा, इंडस्ट्री से बेटर डिपॉजिट ग्रोथ भी रहा, इंडस्ट्री से बेटर एडवांसेस ग्रोथ भी रहा, और करीब करीब इंडस्ट्री से मैचिंग हमारा कासा का भी ग्रोथ रहा. तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ देखें तो ये साल रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुआ है, इन स्पाइट ऑफ इतना सारा डिफिकल्टीज रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में.
1: बैंक कैसे बिजनेस जो है ग्राउंड पे होता है, और बैंक की ग्रोथ को कैसे आप मेजर करते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, और लोगों को किस तरह से समझना चाहते हैं कि ये बैंक की ग्रोथ क्या है और उनकी ग्रोथ किस तरह इनसे लिंक्ड है.
0: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना. तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं. तो ये जो डिफरेंस है ना, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है. तो बेसिक तो बैंकिंग का यही है. इसके अलावा भी और भी सोर्सेज होते हैं इनकम के, जैसे हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स या म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं अपने ब्रांचेस के थ्रू, उस पर भी कमीशन मिलता है हमें. हम फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं, उस पर भी कमीशन मिलता है. तो इस तरह से जो अलग अलग एवेन्यू से हम इनकम जनरेट करते हैं उसको कंसोलिडेट करके एक टोटल इनकम हमारे बैंक का क्रिएट होता है. और जो हमारा कॉस्ट्स है, जैसे एम्प्लॉई का सैलरी होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है, जो हम रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, एम्प्लॉईज के सैलरी है, उनके टीएडीए है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, इन सब को जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है, जिस पे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को. और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं. जो 2363 करोड़ का आपने प्रॉफिट बताया इस साल का, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस.
1: जैसे आपने अभी जिक्र किया, यू मेंशनड अबाउट रेशन सिंदूर था, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी क्लोज हो गया उस टाइम एरेटिक वेदर पैटर्न्स की वजह से. उसमें जो इम्पोर्टेंट था, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ. तो सर क्या आपकी तरफ से उनके लिए ऐसा कुछ रिलीफ कहेंगे या उनके लिए कंपनसेशन कहेंगे, क्या बैंक का इस तरह का कोई प्रोविजन होता है ऐसे सेक्टर्स के लिए?
0: जब इस तरह का कोई भी कैलामिटी होता है तब स्टेट की तरफ से, यूटीएलबीसी की तरफ से स्टेट को रिक्वेस्ट किया जाता है, यानी कि यूटी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इसको एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करें. और उसके बाद हम आरबीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उस पे हम रिहैबिलिटेट करेंगे अपने लोनीस को जिन्होंने लोन लिया है, और उसको रिहैबिलिटेशन करने की वजह से उसको एनपीए नहीं डिक्लेयर करेंगे. तो ये स्पेशल पैकेज आरबीआई से हमें टाइम टू टाइम मिलता रहा है, पिछले साल भी मिला है. जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है और बिजनेस में डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, वो उसमें करीब 14,600 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको हमने रिहैबिलिटेट किया है रिहैबिलिटेशन पैकेज के अंदर में, जिसमें करीब करीब 10,000 से 12,000 करोड़ का हमारा आउटले रहा है. फ्रेश लोनिंग भी हमने की है, और जिन लोगों ने भी उस दौरान अप्लाई किया है, हर किसी को हमने वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है.
1: सर जेएंडके बैंक जो है अर्निंग प्रॉफिट्स एंड डूइंग गुड, तो ये ग्रोथ और प्रोग्रेस जो है बैंकिंग में, जेएंडके बैंक में, क्या ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉमन कस्टमर का है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से हम देखते हैं?
0: देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक तो 1938 से यही काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए. हम कुछ भी करते हैं, हमारा मेन कमिटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. जो कुछ भी कर सके हम करते हैं. हमारा

0: कमर्शियल एंगल जरूर रहता है, बैंक है, प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एम यही रहता है कि जिस तरह का भी स्कीम आए, आप किसी भी तरह का स्कीम ले लें, जैसे पिछले साल ये बहुत अच्छा एक स्कीम आया था मिशन युवा, उस स्कीम के अंदर भी हम सोल बैंकर हैं जो हमने 25,000 से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाया। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम टोटली कमिटेड हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
1: किस तरह से आप और इसमें करना चाहेंगे या करना चाहते हैं?
0: देखिए, जो नीडी होते हैं उनको जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको एक मोटे तौर पर कंट्री में उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है तो 40 से ऊपर बैंक्स, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो हर साल गवर्नमेंट का टारगेट रहता है, उसका करीब करीब 80% हम अकेले ही करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक। हालांकि 40 और बैंक्स हैं यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक उस कंप्लीट टारगेट का 80% खुद ही करती है। तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट हो, रिक्वायरमेंट जो लोगों को होता है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम पे लेंडिंग प्रोवाइड करता है जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम साल में करीब करीब 60,000-65,000 कैंप्स करते हैं, जहां फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उनका उनकी कमजोर है, बिल्कुल रिमोट एरियाज में जा करके हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके। और हम एक और काम जम्मू एंड कश्मीर बैंक करती है, वो अनबैंक्ड जो एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, वो उन हर जगह पे या तो ब्रेक एंड मोटर ब्रांच, मतलब प्योर जिसको ब्रांच कहते हैं, या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो खिदमत सेंटर्स कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, उनके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो एसेंशियली हमारा काम यही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, कि यहाँ के लोग जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रति लॉयल हैं, वैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम इनके लिए लॉयल है।
2: सर, जम्मू कश्मीर में आबी पनागाहों, सियाहती मकामात, हत्ता की झीलों और आबी रास्तों के रखरखाव के लिए बाज़ाबता अथॉरिटीज काम कर रही हैं। ये अथॉरिटीज इन अहम तरीन मकामात की देखरेख और तरक्की के ताल्लुक से सरगर्मियां अंजाम देकर इन मकामात को जाज़िब नज़र बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर ने इसी ताल्लुक से म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एहसान चिश्ती से बात की, तो उन्होंने अथॉरिटी के कामकाज से मुतल्लिक तफसीलात फराहम करते हुए कहा।
3: सर, आप किस तरह से देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स? फिलहाल हम आपकी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इसमें कितना आप देखते हैं पोटेंशियल है और कैसे प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है आगे इसमें?
4: देखिए, रोजगार है टूरिज्म में, मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सली देखा गया रोजगार के मौके बहुत हैं, सिर्फ एक डेडिकेशन चाहिए किसी भी लेवल पे, तो रोजगार के मौके तो हैं। मसलन हम फूड कुजीन, हैंडीक्राफ्ट तो खैर छोड़ दीजिए, मैं हैदराबाद गया हुआ तो वहाँ मुझे एक एक्सपोर्टर मिली, लेडी एक्सपोर्टर, शी वाज टेलिंग मी कि वो ओडेसा के कटक से वो वीड्स एक्सपोर्ट कर रही हैं, उन वीड्स के वो बास्केट्स बनाती हैं और उनका अमेरिका में अच्छा खासा मार्केट है। तो इवन मतलब वीड्स का भी एक, उसमें भी एक रोजगार है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। तो सर्टनली मैंने मतलब खुद भी अथॉरिटी के लेवल पे भी हमने कुछ एक्सप्लोर किया था, कुछ हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ यूथ ग्रुप या यूथ क्लब बनाने की कोशिश में है, ताकि वो एक एक्टिविटी लेकर और उसका मार्केट इंटरफेस करके, मार्केट इंटरवेंशन करके उनका एक एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सके। तो कुछ अच्छे हुनरमंद नौजवान मुझे मिले हैं वहां पर, जो कि एक एक सेक्टर में कुछ न कुछ काम करना चाहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको कहा कि वहां की मछली मशहूर है, मगर रादर देन सर्विंग द मार्केट द रॉ फिश, आप उस मछली का कुजीन बना के बेच सकते हैं, ताकि उसका वैल्यू एडिशन हो, तो आप खुद भी कमा सकते हैं, आपके दाएं बाएं भी लोग कमा सकते हैं।
3: तो उसके लिए भी तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे आप शेफ होंगे तो देयर ऑल प्रोफेशनल्स।
4: बिल्कुल,
3: ऐसे तो नहीं होगा खुद ही बनाएगा।
4: इसीलिए मैंने अर्ज किया कि मतलब मैंने
3: डिटेल्ड लोग होने चाहिए।
4: होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं थापा साहब, ही वॉज वेरी पॉजिटिव, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे अश्योर किया हुआ है कि ही वुड सेंड सम एक्सपर्ट्स, ताकि जो वहां इंटरेस्टेड बच्चे बच्चियां हैं उनको मुख्तलिफ जो कुजीन ट्रेड्स में है उनमें थोड़ा उनकी स्किल होनिंग करेंगे, ताकि एटलीस्ट जो उनका लोकल प्रोड्यूस वहां से, नदरू निकलता है फॉर एग्जांपल, नदरू की मुख्तलिफ वैरायटीज बन सकते हैं, नदरू के चिप्स बन सकते हैं, उसको एक मैनेजेबल ब्रांडिंग करके वो उस एरिया کو بھی پروموٹ کریں گے اور اپنے لیے روزگار بھی کما سکتے ہیں.
3: چونکہ پانی ہے، جھیل ہے، تو اس کا ہیلتھ ہے، سائنٹیفک یو نو
4: لیک ایکالوجی ہے،
3: ہاں ایکالوجی ہے، اس

0: कॉलेजी को इसमें किस इंस्टीट्यूशन का, किन इंस्टीट्यूशन का इंटरवेंशन है या एक सिनर्जी है आपकी अथॉरिटी और कौन कौन सी एजेंसीज या कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं जो रेगुलरली ये मॉनिटर करते हैं वाटर हेल्थ, जो ऐसे इकोलॉजी की आपने बात की लीक, और क्या ये इंस्टीट्यूशन आप बताएंगे किस तरह से काम कर रहे हैं?
1: बिल्कुल है, मतलब एक लेयर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिसके जिला लेवल पे डिप्टी कमिश्नर साहब कन्वीनर होते हैं, उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। आपका पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, आपका ये वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी है या LCMA है जो कि वाटर बॉडीज को डील करते हैं, तो उनके साथ सरकार में तालमेल रहता है और जब भी कोई ऐसी कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उनसे मशवरा।
0: सर क्या ये रेगुलर एक्टिविटी है वाटर हेल्थ इकोलॉजी को देखना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना?
1: जरूरी है, करना चाहिए, जितना रेगुलर हो, जितना एक रेगुलर एक्टिविटी हो उतना अच्छा है।
0: बिकॉज पीपल आर बिकमिंग सो कॉन्शियस अबाउट द प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन पार्ट, जो है हमारा सर्वाइवल है इसी पे, वाटर इज आवर लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि एक ओपिनियन है ग्राउंड पे कि इस तरह की जहां भी वाटर बॉडीज हैं हमारी, तो उनके लिए तो एक रेगुलर मैकेनिज्म, रेगुलर अथॉरिटी जैसी बननी चाहिए जो इसको।
1: और दूसरा यह है कि इससे कुछ फिर मतलब जब कोई पैनिक होता है तो मफरूजे फिर बन जाते हैं, तो उन मफरूजे भी गलत साबित करने के लिए जरूरी है कि रेगुलर ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज के साथ
0: रिपोर्ट्स आए, इंफॉर्मेशन आए, लोगों के सामने आ जाए,
1: लोगों के सामने आए, लोग खुद देखें कि क्या सही है क्या।
0: तो मुझे लगता है जो एलाइड से जिन डिपार्टमेंट्स की आपने बात की, जिन अथॉरिटीज की आपने बात की, कि एक आपकी अथॉरिटी या जो भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, तो ये चीजें जहां जहां हमारे एसेट्स हैं, नेचुरल एसेट्स हैं, नेचुरल इकोसिस्टम है, उस पर काम किया जाना चाहिए। आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए?
1: तालमेल तो जरूरी है, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट।
0: इसमें पोल्यूशन निकल, पोल्यूशन की बात हमने पहले भी की, तो इस पोल्यूशन को रोकने के लिए अथॉरिटी की तरफ से क्या क्या मुअस्सर इकदाम किए गए हैं?
1: देखिए, जो पोल्यूशन दो किस्म का है, एक तो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन का मैंने किया कि एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस में है। दूसरा है एक लिक्विड पोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम ग्रे वाटर, उसके लिए सरकार के पास एक बड़ा जामिया एक प्रोजेक्ट है, अथॉरिटी के पास नहीं, सरकार के पास एक इंटीग्रेटेड STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बाकायदा उसका DPR बना हुआ है जो कि मल्टी क्रोर प्रोजेक्ट है, तो वो बन चुका है, उसकी प्री फिजिबिलिटी भी हो चुकी है और वो जो प्रोसेस है दैट इज इन पाइपलाइन, और जो ही ऐसी चीजें हो जाए तो फिर काफी हद तक सुधार हो जाएगा।
0: ऐसा लग चिश्ती साहब अगले प्रोग्राम में भी हम इंशाल्लाह मधु करते रहेंगे और बातचीत होगी बिकॉज रेगुलर एक्टिविटी। तो आपका ऐसा लग चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: इसके साथ ही नई मंजिलें प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: समय आप समाप्त कर रहे थे शोभा खबर की पेशकश प्रोग्राम नई मंजिलें। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौज भाइयों, फौज भाइयों आदाब और हैप्पी मदर्स डे। जी हाँ फौज भाइयों, आज मई महीने की दूसरी संडे, दूसरी एतवार है और आज का दिन होता है इंटरनेशनल मदर्स डे। और आज के प्रोग्राम हम डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी सभी माओं को।

माँ तेरे जैसा कोई नहीं सारे ज़माने में। जी हाँ दोस्तों, आज मदर्स डे है और माँ अल्लाह की तख्लीक करदा ममता का मुजस्मा है, जो बच्चे की पहली धड़कन, पहली मुस्कराहट और हर सांस में पनाह होती है। जैसे ज़मीन माँ ज़मीन की तरह पालती है, जज्बाती तौर पर इसकी कुर्बानियाँ आँखें नम कर देती हैं। रातों की नींदें, दर्द की आहों और लामतनाही मोहब्बत का समंदर है, जो बहुत जोश से और हमेशा बहता रहता है। हमें याद दिलाता है कि माँ न सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बल्कि जन्नत का रास्ता है और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है।

मोच भाइयों, आज मई की महीने की दूसरी एतवार है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। और इस्लाम की रोशनी में माँ की अहमियत को देखें तो कुरान मजीद फरमाता है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया। माँ ने तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाकर इसे जाना, जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों तले हैं।

जी दोस्तों, आज हम मदर्स डे मना रहे हैं और कुरान मजीद माँ की हैसियत बयान करते हुए इंसान को याद दिलाता है कि माँ ने हमल और पैदाइश के मराहिल में तकलीफ़ें बर्दाश्त की और माँ की मेहनत और दर्द और कुर्बानी का एहसास दिलाता है आज का दिन। और इस्लाम सिखाता है कि वालदेन के साथ बेहतरीन इखलाक और माँ बाप के लिए, वालदेन के लिए दुआ की तालीम भी देता है।

जी फौज भाइयों, आज मदर्स डे है और आज के दिन हम ये प्रोग्राम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी माओ को। और कुरान सिर्फ अच्छे बर्ताव का हुक्म नहीं देखती है अपने वालिदैन के साथ, बल्कि गुफ्तगू के आदाब, आजिज़ी और दुआ भी सिखाता है। वालिदैन के साथ भलाई करो, इन्हें उफ तक न कहो, अदब के साथ बात करो और कहो, ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में हमें पाला है। इसे मालूम होता है कि माँ बाप के बुढ़ापे में इनके खिदमत, नरमी, एहतराम और इनके लिए दुआ करना एक दीनी फरीज़ा भी है और इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है।

माओं की इज्जत करने का एक दिन जब मौजूद हो तो ठीक है, वहाँ माएँ मौजूद हैं। कदीम ज़माने में माओं की ताज़ीम करने के लिए त्यौहार अक्सर देवताओं और देवियों और जच्चगी की ज़रखेज़ी पैदाइश और तख्लीकी सलाहियतों और नशोनुमा के से मुंसलिक होते थे। माँ बच्चों की महफ़िज़ होती है और परवरिश करने वाली होती है और तौसी के लिहाज से पूरी इंसानियत की। और फरीगियों ने देवी देवताओं के अजीम माँ साइबल के लिए एक त्यौहार मुनक़द किया। यूनानियों ने और रोमियों ने भी

अपने ही देवता उनकी मादर शख्सियत का एहतराम किया। और आज हम मदर्स डे मना रहे हैं और अपनी माओं को उनका दर्जा देने के लिए और उनके तकलीफ़ें दुख उनके कुर्बानियों को समझने के लिए आज हम मना रहे हैं मदर्स डे। आइए एक और नगमा सुनते हैं और डेडिकेट करते हैं अपनी माओं को एक और नगमा।

जी हाँ, अपनी माँ को दिल में रखिए, अपनी पलकों पे सजाइए, और ये रोशन हकीकत है कि माँ का मकाम इंतहाई बुलंद है। माँ की तकलीफ़ को याद रखना, इसके साथ नरम गुफ्तगु करना, इसके साथ खिदमत करना, इसके लिए दुआ करना और इसकी दिलजोई करना हमारा फ़र्ज़ है।

माँ तुझे सलाम। तो फौज भाइयों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद।

0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से उर्दू में खबरें नश्र होंगी।
1: सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मसरतशाह से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के खात्मे में जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल काबिले सताइश, एलजी मनोज सिन्हा। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में 40 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का किया आगाज। जेएलएनएम अस्पताल में जदीद तबी आलात को किया आवाम के नाम वक्फ। वजीर अजम नरेंद्र मोदी का इंसानी खदमत, रूहानी इकदार और समाजी इर्तका के जज्बे के फरोग पर जोर। और आलमी योम मादर आज। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के खात्मे और अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस के रोल की सराहना की है। आर्मड पुलिस कम्पलेक्स जेवन श्रीनगर में एटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड का मुआयना करने के बाद अपने खिताब में एलजी ने कहा कि पुलिस, सीआरपीएफ और सुरक्षा रसा एजेंसियों के बाहमी तालमेल से मस्बत नतीजे मिल रहे हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में मुंतखब किए गए पुलिस कांस्टेबलों में तकरीरनामे तकसीम किए। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में सागर कल्चरल फोरम के सदर सागर नजीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: देखिए, मनशियात एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ इंसान की सेहत बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देता है। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वालिदैन, असातिज़ा, सहाफी और समाजी रहनुमा मिलकर आवाम में शऊर पैदा करें ताकि मनशियात फरोश अनासिर का खात्मा मुमकिन हो। आए अहद करें कि अपने इलाके को मनशियात से पाक बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि सेहतमंद नौजवान ही रोशन मुस्तकबल की जमानत है।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बांडीपुरा और बारामूला में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान समाज को मनुष्यत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने आज अपने हल्का इंतखाब गांधरबल का दौरा करके वहां 40 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिनमें सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का पहला मरहला भी शामिल है। वजीर अला ने जिला अस्पताल गांधरबल में बोन डेक्सा स्कैन मशीन और फाइब्रो स्कैन मशीन का भी इफ्तिताह किया। ये आलात HDFC बैंक के सामाजिक कॉरपोरेट जिम्मेदारी के तहत नस्ब किए गए हैं। उन्होंने वहां मुख्तलिफ कलीदी नवियत के तरक्याती इकदाम का भी जायजा लिया। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर अला ने कहा,
4: गांधरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है, उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांधरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के

0: लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कोशिश की जा रही है कि गांदरबल को सही माने में तो डेवलप किया जाए और सिलसिला पहले ही शुरू हुआ है। इन दौरों का मुझे दो फायदे होते हैं, एक तो नए काम शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है।
1: इधर वज़ीर-ए-आला ने श्रीनगर के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में 2,25,00,000 रुपए मालियत के तिब्बी आलात को अवाम के नाम वक्फ किया। उनके हमरा नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक भी थे। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर वादी और गोल्फ के दरमियान एक गहरा और तारीखी रिश्ता और वादी के गोल्फ कोर्स मुल्क के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज में शुमार होते हैं। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सतह के गोल्फ कोर्सेज न सिर्फ मुकामी गोल्फ खिलाड़ियों के लिए बेहतरीक बख्श होंगे बल्कि इससे यहां की सयाहत में भी चार चांद लग जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि यह बात बायस इत्मीनान है कि अब जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले गोल्फ खिलाड़ी श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मुकाम पर गोल्फ खेलने आ रहे हैं। तालीम और समाजी पायदारी एक खुशहाल माशरे की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। तरक्की पजीर अकवाम तालीमी मंजरनामे को जदीद और मुस्तहकम बनाने पर खसूसी तवज्जो देती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में मुकीम आलमी शोहरत याफ्ता एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर हलीमा सादिया ने डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथिर के साथ एक खसूसी बातचीत के दौरान कहा,
2: सबसे ज्यादा जो अहम इस वक्त जरूरत है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि हमारी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ने की जरूरत है। हम अपनी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ करके सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सस्टेनेबल एजुकेशन की, तो एक बच्चा तालीम क्यों हासिल करता है, उसका अगर हम मकसद देखें तो मकसद यही होता है कि उसे फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे एजुकेशन दे रहे हैं। अब अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद, उसे जो लाइफ की बेसिक नीड्स है अपनी वही नहीं पूरी करनी आती है, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से, और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से तलकीन की है कि वो इंसानी खिदमत, रूहानी इकदार और समाजी इर्तिका के जज्बे को फरोग दें। बेंगलुरु में आज आर्ट ऑफ लिविंग नामी तंजीम की 45वीं सालाना तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने माहौलियात की पाकिजगी और नौजवानों की बाख्तियारी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया ताकि तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके।
3: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: आजकल के मौसम में वादी में रूसी सफेदों से गिरने वाले रुई के गालों से लोगों को निजाम तनफ्फुस में एलर्जी और इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। माहिरीन ने लोगों, खासकर बुजुर्गों को मशवरा दिया है कि वो इस सूरत हाल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस सिलसिले में बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया,
4: इस मौसम में दरख्तों और घास का पोलन हवा में ज्यादा होता है जो बुजुर्गों में एलर्जी, खांसी, छींकें, आंखों में आंसू और जलन और सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है। अस्थमा और एलर्जी वाले बुजुर्ग को खास एहतियात की जरूरत होती है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मा जरूर पहने और बाहर से आने के बाद हाथ और चेहरा धो लें, खिड़कियां बंद रखें, धूप और तेज हवा में कम निकलें, पानी ज्यादा पिएं और डॉक्टर के मशवरे से अपनी एलर्जी या इनहेलर वाली दवा रेगुलर इस्तेमाल करें। अगर सांस ज्यादा फूले या वीजिंग हो तो फौरन डॉक्टर से राबिता करें।
1: आज मदर्स डे यानी योम-ए-मादर है। ये दिन हर साल मई की दूसरी इतवार को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में माओं की शफकत और उनकी कुर्बानियों के एतराफ में उनके तईं स्पास गुजारी का इजहार करने का एक मौका है। काबिल जिक्र है कि माँ बेलोस मोहब्बत, शफकत, वाबस्तगी और कुर्बानियों का एक मुजस्मा होती है।
5: जो

अस्ती आवाज़ तुसा तोड़ी पहुँच रही आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी। मैं हाँ तुसा दा मेज़बान इम्तियाज़ अहमद मीर प्यार खलूस ते ताज़ीम नाल अपने सारे सामीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करदा ते प्रोग्राम विच जी आया आखदा। सामीन उम्मीद करदे हां कि तुसी सारे बखैर वाफियत नाल होसो और हमेशा की तरह अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कोर नाल सुन रहे होसो। अज अतारा दी महफिल है, हालात वाकात ते गीत संगीत दी महफिल किन के असीं तुसा दी खिदमत विच हाज़र हाँ। प्रोग्राम दे शुरू विच तुसा नाल मौसम के बारे में कुछ जानकारी साझी करा। समन वादी कश्मीर की अगर गल करा तो उत्थे गर्मी की लहर में वाधा होया है। श्रीनगर में पारा 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होया। इधरों महकमे मौसमियात सुन पेशनगोई की थी कि 11 से किन के 13 मई के दरमियान बारिशा हो सकती हैं। समय बारह वाले रोज दिहाड़ी के दर्ज हरा गैर मामूली इजाफा देखे को मिलिया। श्रीनगर भी पारा 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जड़ा मामूल थी 7.6 डिग्री ज्यादा आसा, जबकि वादी के कई दीगर इलाकों में भी दर्जा हरारत मौसमी औसत थी काफी ज्यादा आसा। काजीकुंड 31.0, पहलगाम 5.2, कुपवाड़ा 29.5, कोकरनाग 28.6, गुलमर्ग 23.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होया। समय अगर असं जम्मू खिते की गल करा तो जम्मू 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होया, तो बानहाल 23.0, बटोत 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में मसलसल 6 महीने थी मामूल थी घट बारिशा, अप्रैल के महीने भी 13% कमी रिकॉर्ड, शुपियां भी सबसे ज्यादा 67% गिरावट, कठुआ भी 60 और अनंतनाग 46% कमी रिकॉर्ड की गई। समय नौ पहला प्रोग्राम के शुरू भी तुसा वास्ते लोक गीत पेश करा। आवाज़ है बशीर परदेसी ते संगियां दी, आओ सुनते हैं।

बशीर परदेसी तसंगी लोकगीत पेश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि लोकगीत तुसां को पसंद आया। उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन बारह आले रोज अनंतनाग विच मनशियाती पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के हिस्से के तौर पर पद यात्रा भी शमूलियत इख्तियार की। एक अवामी इजतमा की खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन अवाम की अपील की गई कि वह मनशियात के खिलाफ

सकते हो, अस्था पता है इंचार्ज पहाड़ी प्रोग्राम, हरफ स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर, पिन कोड है 1900001। अगर प्रोग्राम विच तुसां दी नज़र एक गीत करदे हां, आवाज़ है मोहम्मद यूनस लोलाबी दी, आओ सुनते हैं।

मोहम्मद यूनस लोला भी गीत पेश कर रहे हैं। से उम्मीद करते हैं कि गीत तुसा को पसंद आया। उसी समझ जुलदा जुलदा तो सना एक अलग मौजूद है गल करा। अज असें के हम रिश्ते का ध्याड़ा मना

0: सुमिन, अभी आप पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। आइए पहाड़ी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन आ। 4:20 हो गए। खबरनामा कहनका मैं रेहाना आजीज। पहले खास खास खबर सुनो। जम्मू कश्मीर बिच दहशत पसंदी दे खात्मे वास्ते जम्मू कश्मीर पुलिस दा रोल काबले तारीफ। LG मनोज सिन्हा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन गांदरबल बिच 40 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टां दी कीती शुरुआत। JLNM अस्पताल बिच नवे सेहत दे आलियां को लोकां दे नां कीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दा इंसानी खिदमत रूहानी अकदार और समाजी बदलाव वास्ते जज्बे पर जोर। और आलमी मावां दा दिहाड़ा अज। हुण पेशा खबरां दी तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू कश्मीर बिच दहशत पसंदी को मकाए और अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाए वास्ते जम्मू कश्मीर पुलिस दे रोल दी तारीफ कीती। आर्मड पुलिस कंपलैक्स जेवन श्रीनगर बिच हाल ही बिच चुने गए पुलिस कांस्टेबलों बिच तकरनामे तकसीम करने दे सिलसिले बिच मुनक्कदा तकरीब को खिताब करदे होया LG सुन आख्या कि पुलिस CRPF और सरागरसां एजेंसियां दे आपसी तालमेल दे नतीजे बिच आवाम अज अमन और खुशहाली दा दौर दिख रही। इस मौके पर चीफ सैकटरी अटल टुलू और DGP नलिन प्रभात के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के कई आला अफसर भी मौजूद से। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिदत को पाक करने वास्ते 100 दिहाड़िया तोड़ी चलने वाला नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत न जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी। बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत को दूर रखे वास्ते बकार इकदाम के बारे सागर कल्चरल फोरम दे सदर सागर नजीर सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल्लां करदे होया कुछ इस तरह आख्या।
3: देखिए, मनशियात एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ इंसान की सेहत बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देता है। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वालिदैन, असातिज़ा, सहाफी और समाजी रहनुमा मिलकर आवाम में शूर पैदा करें ताकि मनशियात फरोश अनासिर का खात्मा मुमकिन हो। आए अहद करें कि अपने इलाके को मनशियात से पाक बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि सेहतमंद नौजवान ही रोशन मुस्तकबल की जमानत है।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के तरफों बांडीपुरा और बारामूले बिच जानकारी प्रोग्राम हुए, जिस दौरान समाज को मनशियात को पाक बढ़ाए वास्ते रल मिलकर कोशिशां करने की ताकीद की गई।

दुई अतारा को मनाई गेंदा। ए त्याड़ा दुनिया पार बिच मामा दी शफकत ममता और इंदिया कुर्बानियां दे एतराफ बिच मनाई गेंदा। काबिल जिक्र है कि मामा मोहब्बत शफकत और कुर्बानियां दे एक मुजस्मा होंदिया।

कई कलाकार जिवें कि कॉमेडी करके सानू मनोरंजन देंदे ने, सानू ऐसा दर्शक बना देंदे ने अपनी कॉमेडी दे राही कि असी उत्थे बैठण लई मजबूर हो जांदे हां। उस कॉमेडी नू असी बढ़ावा देंदे हां और सानू देना भी चाहीदा है कि ऐसे कई शोज़ होण जिथे असी बैठ के कॉमेडी जड़ी हुंदी है उहदा आनंद लै सकीए। ऐसे कई प्रोग्राम आयोजित किए भी जाने चाहिए ने ताकि लोगों नू स्ट्रेस तो बाहर किया जाए। साथियों, हसदे वक्त साडे शरीर विच एंडोफिन नामक हारमोन जड़ा है उत्पन्न हो जाता है। हसी साडे शरीर लई एक पेन किलर का काम करती है। बिल्कुल सच है, जिवें असी पेन किलर लैके अपने दर्द नू दूर करते हाँ, इदा ही हसी साडे लई बहुत जरूरी है ते सानू हसना चाहिए है ताकि असी बीमारियों तो दूर रह सकीए। हसन नाल टेंशन डिप्रेशन तो भी असी दूर रह सकते हाँ। हसन नाल फेस दियां 12 मसल जड़ी ने वो साड़ी जड़ी ने जद असी हसते हाँ, वो मसल जद उपर थले होंगे ने तो वो एक सानू एक्सरसाइज का काम मिल जाता है। जद असी हसते हाँ तो साड़े शरीर विच इंडोफिन नामक कैमिकल रिलीज होंदा है जड़ा सानू खुशी महसूस कराता है ते अच्छा सोचण नू मजबूर कराता है। हसी वो दवाई है जड़ी बिना खर्चे दे हर दर्द नू हल्का कर देंदी है। हसी सानू तनाव तो दूर ले जांदी है। अज दे समय विच जो मुस्कुरा सकता है वो हर मुश्किल नू मात दे सकता है। जिंदगी दी रफ्तार विच हसी एक रुकावट नहीं ऊर्जा देंदी है। टेंशन विच हसना हसाना सब तो वड्डी जीत होंदी है। हसते रहो क्योंकि ये सच्ची जिंदगी दी निशानी है। साथियों, दिमाग नू शांत रखण लई सब तो सस्ता असरदार इलाज है हसना। हसी ओ भाषा है जिहड़ी बिना बोले दिल तक पहुंच जांदी है। दिन दी शुरुआत हसी नाल करनी चाहीदी है। हसी जिंदगी दा ओ संगीत है जिहनू हर उम्र दा बंदा गुनगुना सकदा है। हसी दा मतलब ए नहीं कि असी दुखी नहीं, बल्कि असी ए कह सकदे हां कि उम्मीद बाकी है। हसदे रहना एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीण दी कला होनी चाहीदी है। सच्ची हसी दिल तो निकलती है ते आत्मा नू छू जांदी है। अज दे वक्त विच जो हसदा रहिंदा है ते हसदे होए जिंदगी नू बितांदा रहिंदा है ओ इस दुनिया विच सब तो ज्यादा अमीर बंदा है। हसी या हसाना ओ आईना हुंदा है जिस विच सच्ची खुशी छलकती है। दुनिया दे मशहूर कॉमिक एक्टर चार्ली चैपलिन, उन्हां दा ए कहना सी कि हसी दे बगैर बिताया होया दिन समझो कि दिन बर्बाद करना है। जद असी हसते हाँ तो बॉडी विच ब्लड सर्कुलेशन तेज होंदा है। स्वस्थ रहन लई सिर्फ हेल्दी डाइट ते एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि टेंशन फ्री रहना भी जरूरी है। स्ट्रेस की वजह नाल कई बीमारियां दा खतरा बन जाता है। कारण ए है कि लोग स्ट्रेस फ्री रहन लई लॉफ्टर थेरेपी अपनाना चाहते ने। हसन नाल इम्यून सिस्टम मजबूत होंदा है। इहदे नाल स्ट्रेस हारमोन घट जाते ने। हसन नाल हैप्पी हारमोन रिलीज हो जाते ने। इसलिए हसते रहो ते मुश्किल वक्त नू आसान बनाओ। साथियों, जिंदगी बहुत ही छोटी है। कुछ मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। जिन्ना मिलिया है उदे विच ही खुश रहना है। की असी दुखी होके करना है कि सानू ए नहीं मिलिया, ए नहीं मिलिया। जो मिलिया है उदे विच ही

0: समीर, अभी आप पंजाबी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर के नवा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज शब के 9:30 पर आकाशवाणी पॉडकास्ट समाप्त करें। मेहमान है मीर सरवर, बॉलीवुड एक्टर। इनसे हम कलाम होंगे मीर तबरेज हुसैन मदनी।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम लेके हूँ थारो मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा थारी खिदमत में हाजिर हूँ। ते तम सारा ना मेरा तरफ ते प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समीन इकराम, उम्मीद करूँ कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपनो मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहे होएगा। अज अतार है ते अज थारे वास्ते SMS बेसिट प्रोग्राम पेश करा का। आज का प्रोग्राम वास्ते मारे कोल मुझ सारी SMS आई हैं। आज तक जितनी भी SMS मारे कोल पहुंची हैं ये सारी SMS आज का प्रोग्राम में शामिल करा का। तो इसके नाल ना तमने यो भी दस्ता चलूं कि अगर तम भी अपनी पसंद को कोई भी गीत नगमो या फिर प्रोग्राम के बारे राय ते अपना फरमाइशी ना मारा तक पहुँचाना चाहें तो हम अपना 9596012521 इस नंबर पर SMS करके या फिर WhatsApp करके अपना फरमाइशी ना प्रोग्राम के बारे राय ते अपनी पसंद मारा तक पहुँचा सकें। आज का प्रोग्राम ना अगे बदाता थारी आई भी SMS पढ़नी शुरू करा। सब ते पहली SMS मोहम्मद इकबाल मलनगामी साहब की आवाज़ में गीत सुन वास्ते अमना आई है या SMS कोडारा बांडीपुरा ते आई है। इसमें फरमाशी ना है मखना जुनैद अहमद जरीना ते रौनक DHपुरा यारी खा ते अमना SMS की है चौधरी निसार अहमद गोरसी साहब और ने इनके ना बाकी फरमाशी ना है मोहम्मद इस्माइल गोरसी हाजरा बे।

गुलाम हसन तबस्सम की आवाज़ माँ सोफियाना कलाम सुनो वास्ते हमारा SMS आई है टंगडार करना ते परवेज़ इकबाल लोन साहब और हमारा SMS करें तो इनके ना बाकी फरमाशी नाएँ मोहम्मद आदिल लोन मोहम्मद हमजा मीर काजम अमजद इस्माइल लोन उर्वा लोन रहीस सैरिश इफ्तिखार इशफाक लोन हमाद लोन ते इनका बाकी संगी साथी टोक परोडो बांडीपुरा ते SMS करें मकसूद बिजरान मोहम्मद सादिक बिजरान जरीना बेगम नहीमा बेगम मोमिना मकसूद आरिफत जान ते इनका बाकी संगी साथी लार वलीवार ते SMS करें फयाज अमन मीर रुकैया फयाज सुमैया फयाज ते सफीना फयाज पोगल परिस्तान बानिहाल ते अपना SMS करें अल्ताफ हुसैन आवान ते इनके ना बाकी फरमाशी नाएँ रुखसाना कोसर आवान ज़ुबैर अहमद आवान ज़ैनब बेगम मीर हुसैन आवान फ़कीर मोहम्मद आवान ते मोहम्मद यासीन आवान ग़ुलाम हसन तबस्सम की आवाज़ माँ आमने सोफियाना कलाम ला के रखे हुए तयो कलाम है हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह को आओ सुन लिया।

अग्गे जी नूर जान की आवाज़ माँ लोक गीत सुन वास्ते अपना SMS करें पुष्कर कंगन ते रफाकत नज़ीर रिफत नज़ीर रफीक आमंद कोली तौसीफ आमंद कोली असमत जान जाहिदा यूसुफ ते मैं आजाद जान कुकरनाग टोक मंडू ते SMS करें जाकिर हुसैन खारी फारूक आमंद खारी हाजी शावली मोहम्मद अमीन खारी अब्दुल अजीज खारी गुलाम नबी खारी अली मोहम्मद खारी ते सादिक खारी छतरगुल बाबा रेशी ते SMS करें सरपंच मोहम्मद याकूब साहब ते इनका बाकी संगी साथी बाबा नगरी ते SMS करें खलील अमन ते इनका बाकी संगी साथी कुकुरनाक टोक मंडू ते अमना एक और SMS आई है और इसके बिच जिहड़ा फरमाशी ना है वे इस तरह आए रफीक अमन खारी काला खारी हाँ वाहिद खारी वजीर अहमद खारी हाजी मूसा खारी फरीद अहमद खारी परवेज अहमद खारी अख्तर खारी शबीर अहमद खारी ते गुलाम हुसैन खारी तम सारा दोस्तों की पसंद पर नूर जान की आवाज़ में लोक गीत ला के रखे हुए आओ सुन लिया।

अग्गे जी टोक रतन आरी मार्ग खड़ी राम बनते अपना SMS करें फरीद अहमद चौहान साहब और इनके ना बाकी फरमाशी नाए अब्दुल लतीफ चौहान मोहम्मद यूसुफ चौहान शौकत अमन चौहान इकबाल अहमद तेड़वा साहिल लतीफ मासूमा फरीद आसफा शौकत ते जमीला यूसुफ कनल वन अनंतनाग ते अपना SMS करें शबीर अहमद फारूक अहमद ते यूनस अहमद गोंडाकू ते सजाद अमन चेची शकील अमन चेची अब्दुल कयूम चेची केसरा बेगम ते मुनीरा बानो लतीफाबाद बारामूला ते SMS करें मंजूर अहमद बजाड़ शाहिद अहमद बजाड़ आरिफ अहमद इकबाल गेगी शफीक अहमद गेगी मुदस्सर अहमद गेगी मोहम्मद अल्ताफ चेची अब्दुल रशीद चेची ते मेराजुद्दीन रंग वरनू लुलाब ते अपना SMS करें नाजिम दीन गेगी उमर अमन गेगी दानिश अहमद गेगी साइमा अख्तर ते परवीना बेगम तम सारा दोस्तों की पसंद पर अयाज सैफ की आवाज़ में पेश हैं ये बेहतर।

गुजरी प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। आज का प्रोग्राम तमना कैसा लगो अपनी राय ते जरूर नवाजियो। तो इसके नाल ही मारा अज का गुजरी प्रोग्राम को वक्त मुक्के लगोव। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेजबान शौकत अहमद बोकड़ा ना अगली मुलाकात तुड़ी दे इजाजत। अच्छा जी, रब राखो।

0: समीन अभी आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारा अगला ऐलान सुने। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन 5:50 हो रहे हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम का 5:50 ओयाई खबर नामो लेके आम हाजिर। पहला खास खास खबरों की सुर्खी। जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी का खात्मा में जम्मू कश्मीर पुलिस को रोल काबिल सताइश, एलजी मनोज सिन्हा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में 40 करोड़ रुपया लागत आला प्रोजेक्टों को कियो आगाज। JLNM हस्पताल में जदीद तबी आलात न कियो अवाम के ना वकफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इंसानी खिदमत, रूहानी इकदार और समाजी इर्तिका का जज्बा न बढ़ावा देण पर जोर। तय आलमी योम मदर आज, उन तफसील के नाल खबर सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी का खात्मा और अंदरूनी सलामती न यकीनी बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल की सराहना की है। आर्मड पुलिस कम्प्लेक्स जोन जेवन श्रीनगर में हाल ही में मंतखब किया गया पुलिस कांस्टेबल में नौकरियों का आर्डर तकसीम करन का सिलसिला में मनकदा तकरीब तो खिताब करता हुआ एलजी ने कहा कि पुलिस, सीआरपीएफ और सुराग रसा एजेंसियों का आपसी तालमेल का नतीजा में ही लोग आज अमन और खुशहाली को दौर देख रहे आई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और DGP नीलिन प्रभात के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया का कई आला अफसरान भी मौजूद था। जम्मू कश्मीर ना मनशियात की बिद्दत तो पाक करन वास्ता 100 तैड़ा पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी तेजी नाल जारी है। नौजवानों ना इस बुरी आदत तो दूर रखन वास्ता दरकार इकदाम के बारे में सागर कल्चर फोरम का सदर सागर नजीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हूं क्यों। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफों बांडीपुरा और बारामूला में जानकारी प्रोग्रामों को इनेकाद किया गया, जिस दौरान समाज ने मनशियात तो पाक ब्रांड वास्ते इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दितो गयो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपना हल्का इंतखाब गांधरबल को दौरो करके 40 करोड़ रुपया की लागत आला कई तरक्याती प्रोजेक्टों को आगाज कियो, जिनमा सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को पहलो मरहलो भी शामिल है। वजीर आला ने जिला हस्पताल गांधरबल में बोन डेक्सा स्कैन मिशन और फाइब्रो स्कैन मिशन को भी इफ्तिता कियो। ये आलात HDFC बैंक की समाजी कारपोरेट जिम्मेदारी के तहत लाया गया है। उनने उत मुख्तलिफ कलीदी नवियत का तरक्याती इकदाम को भी जायजो लियो। बाद में यहाँ वजीर आला ने श्रीनगर का जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हस्पताल में 2.25 करोड़ रुपया मालियत का तबी आलात ना अवाम के ना वाकिफ कियो। इनके नाल नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और सेहत तबी तालीम के वजीर सकीना इत्तू और MLA जडीबल तनवीर सादिक भी था। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर वादी और गाफ के दरमियान एक गहरो और तारीखी रिश्ता है और वादी का गाफ कोर्सेज मुल्क का बेहतरीन गाफ कोर्सेज में शुमार हुए। रॉयल स्प्रिंग्स गाफ कोर्सेज श्रीनगर में गाफ टूर्नामेंट को इफ्तिताह करता हुआ उन्होंने कहा कि आलमी सतह का

आज मदर्स डे यानी योमे मदर है। यो त्यारो हर साल मई का दूजा अतार नार मनायो जाए। यो त्यारो दुनिया भर मा मावा की शफकत और इनकी कुर्बानियां का एहतराफ मा इनका वस्ते शुक्रगुजारी को इजहार करन को एक मौको है।

0: में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 6:05 मिनट समय थे। वन भोजन गर्मी पर प्रोग्राम

0: लाइन 14416 पर कॉल करो। यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
1: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
5: शर्मिन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स जेवन में मुनाकिद तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स में तकरूरी नामे तकसीम किए। वाजिर है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर अमल में लाई गई भर्ती के तहत 4000 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए कांस्टेबल्स को मुबारकबाद देते हुए उन्हें तलकीन की कि वो अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी, गैर जानबदारी और कौमी खिदमत के जज्बे के साथ अंजाम दें। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
6: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आर्मर पुलिस कॉम्प्लेक्स जेवन श्रीनगर में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स में तकरूरी नामे तकसीम किए, जबकि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में इंडिया गोल्फ कार्निवल 2026 टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और JLNM अस्पताल रैनावारी में जदीद तबी सहूलियात आवाम के नाम वक्फ की। जेवन श्रीनगर में मुनाकिदा तकरीब के दौरान तकरीबन 4000 नौजवानों को तकरूरी नामे दिए गए, जिन्हें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स को मुबारकबाद पेश की और इन पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस की अजीम रिवायात को दयानतदारी, नज्म व जब्त और कौमी खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में शमूलियत सिर्फ मुलाजमत नहीं बल्कि कुर्बानियों से लिखी गई एक अजीम रिवायत को कबूल करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की पुलिस अहलकारों की कुर्बानियों और अजम का नतीजा है। मौसूफ एलजी ने जम्मू कश्मीर पुलिस को अवामी एतमाद, बेलोस खिदमत और कुर्बानी की अलामत करार देते हुए कहा कि फोर्सेज ने कानून की हुक्मरानी और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में खतरात की नवीयत तब्दील हो चुकी है और साइबर क्राइम, नार्को टेररिज्म, डिजिटल फ्रॉड और नैरेटिव वॉरफेयर जैसे चैलेंजेस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सामने आ रहे हैं। मौसूफ एलजी ने कहा कि आज दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिम और दहशतगर्द हमेशा हथियार नहीं उठाते बल्कि कोड, डेटा और खुफिया नेटवर्क्स के जरिए सरहदों के पार कार्रवाइयां करते हैं। ये मुस्तकबिल के नहीं बल्कि मौजूदा दौर के हकीकी खतरात हैं। मौसूफ एलजी ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर जोर दिया कि वो फोर्सेस को मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग बनाने के लिए एक वाजिया रोड मैप तैयार करें और पुलिसिंग में मसनूई जहानत यानी AI और जदीद डिजिटल निजामों को मजीद मौसर अंदाज में शामिल किया जाए। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और आवाम के तहफ्फुज़ को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नलीन प्रभात ने कहा कि नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स तालीम याफ्ता और तकनीकी सलाहियतों से लेस नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं जो मुस्तकबिल में फोर्सेज को मजीद मजबूत बनाएंगे। DGP ने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, BTEC और MTEC डिग्री होल्डर्स भी शामिल हैं जिनकी तकनीकी सलाहियतों को जदीद पुलिसिंग, साइबर ऑपरेशंस, भारतीय न्यायिक संहिता और दीगर टेक्नोलॉजी पर मबनी शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मुल्क की दीगर पुलिस फोर्सेज के मुकाबले में मुनफरिद सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, इसलिए

0: में भर्ती होने वाले को जिस्मानी, जहनी और पेशेवराना तौर पर मुकम्मल तरबियत दी जाएगी ताकि वो पेचीदा हालात से मौसर अंदाज में निमट सकें। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्र खरभारती, स्पेशल डीजीपी कोऑर्डिनेशन एसजेएम गिरानी, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स अब्दुल गनी मीर, एडीजीपी हेडक्वार्टर्स एमके सिन्हा, पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरान और नई भर्ती होने वाले अहलकारों के अहल खाना भी मौजूद थे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती किए गए नए कांस्टेबल्स में तकरूरी नामे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तकसीम किए। इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर उनकी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने आज अपने हल्का इंतखाब गांधरबल के दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान मौसूफ ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आवामी सरकार पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का पीडीपी सदर का यह मकसद यह है कि वो राज्यसभा इंतखाबात में अपनी पार्टी की करतूत से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती हैं। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के हालिया इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि पीडीपी वालों को पहले आउटसोर्सिंग और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का फर्क समझ में आना चाहिए। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से रहीम रिजवान।
2: मैं आप पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कैसे समझाऊं क्योंकि उर्दू और अंग्रेजी वो समझ नहीं पाते हैं। आउटसोर्सिंग और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। इन ख्यालात का इजहार आज जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए किया।
3: आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा, जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहां तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है। एक दो काम ऐसे हाथ में लिए गए हैं जिनको और थोड़ा सा एक धक्का मारने की जरूरत है ताकि वो जल्दी से मुकम्मल हो। उन दोनों चीजों के लिए डिप्टी सीएम साहब से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से बात हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द वो काम भी मुकम्मल हो जाएंगे। जरा एक जगह बताएं कहां बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नाम लेके बताएं हमें। आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं पीडीपी वालों को क्या सिखाऊं ना, मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते। अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ये पीडीपी वाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो उर्दू का इस्तेमाल करना चाहा, वो फेल हुआ। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला, ये भी फेल। अब कल मैं उनकी कोई तकरीर देख रहा था कि किसी अफसर ने ट्रांसफर के लिए जो है मांगा और उनसे पैसे मांगे गए और फिर मोहतरमा अपनी तकरीर में कहती है कि इसमें इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है। अब मैडम जरा बताएं वो कौन सा मिनिस्टर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है, क्योंकि जहां तक मैं अपनी तंजीम को जानता हूं मेरे ट्रेजरर मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबरॉय साहब हैं और अभी तक शमी ओबरॉय साहब ना जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर बने हैं ना मरकज में मिनिस्टर बने हैं। तो जब आपको झूठ बोलना है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा होमवर्क करिए, जरा सीखिए, सीखने के बाद झूठ बोलिए। लेकिन आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसका सेकंड के अंदर अंदर जो है पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रही हो। लेकिन ये सब किया जा रहा है सिर्फ इस बात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में आरटीआई के जरिए साबित हुआ कि पीडीपी ने बीजेपी की मदद की, तब जाके जो है बीजेपी एक राज्यसभा की सीट जीत पाए, उस पे महबूबा मुफ्ती खामोश। और आप अब क्लाउड बर्स्ट होने दीजिए ना, आप लोगों को इतनी बेसब्री क्यों? एक सेकंड मुझे ये बताइए ना, पिछले साल क्लाउड बर्स्ट हुए आपसे पूछ के हुए नहीं पूछ के हुए ना, तो ये भी पूछ के नहीं आएगा।
2: वजीर आला ने अपने हल्के इंतखाब गांधरबल में अपने मुख्तसर दौरे के दौरान जिले में 40 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जबकि चंद एक जेर तामीर प्रोजेक्टों का मुआयना भी किया। दौरे के दौरान उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हदफी तनकीद बनाते हुए कहा कि पीडीपी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि वो झूठ बोलने से पहले अच्छी तरह

प्रैक्टिस करें ताकि उनका झूठ इतनी आसानी से पकड़ाना जाए। वजीर आला ने तामीराती प्रोजेक्टों का तज़किरा करते हुए कहा कि इसी बहाने एक तो वो गांदरबल आकर नए कामों का संगी बुनियाद रखते हैं और दूसरा यहाँ दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों का भी जायजा लेते हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज के दौरे के दौरान गांदरबल को जाज़िबी नजर बनाने के लिए रिवर फ्रंट फर्स्ट फेज और दीहामा में लाइब्रेरी का संगी बुनियाद रखा, जबकि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने नए बस अड्डे में कई तामीराती प्रोजेक्टों का भी संगी बुनियाद रखा। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में यूथ हॉस्टल का भी संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेक्सा स्कैन और फाइब्रो स्कैन का इफ्तिताह करके उन्हें अवाम के नाम वक्फ कर दिया। बाद में वजीर आला ने गोजहामा जाकर यहां जेर तामीर पुल का भी मुआयना किया। वजीर आला के हमरा डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, सेहत और समाजी बहबूद की वजीर सकीना मसूदियतू, खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा

0: आला ने गोदहामा जाकर यहाँ जेरी तामीर पुल का भी मुआयना किया। वजीर आला के हमरा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, सेहत और समाजी बहबूद की वजीर सकीना मसूदियतु, खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असनवानी के अलावा सिविल और पुलिस के आला अफसर भी थे।
1: रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी, वजीर आला अब्दुल्ला के दौरे गांधरबल के ताल्लुक से। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान अंदराबी ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में एक निजी तंजीम की तरफ से मुनाकिद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान अंदराबी ने कहा कि नशे की बेदत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए समाज के हर तबके को आगे आना होगा। इधर आज अदबी मरकज कमराज की तरफ से मरकज के सदर दफ्तर कानिसपुरा बारामुल्ला में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के सिलसिले में एक खसूसी आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत साबिक प्रिंसिपल डायट शेख उला मोहम्मद ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आयुष गांधरबल डॉक्टर बहार अहमद और चेयरमैन ह्यूमन एड सोसाइटी बारामुल्ला मीर बशीर अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: एक बार ट्राई करके तो देख, तू डरता है? कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा।
5: नशा किसी भी तरह का हो, एक बार इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा सिर्फ आपका जीवन ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि ये आपके परिवार, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, आपके फ्यूचर को अंधकार में ले जाएगा।
6: क्यों? सुन के डर लगाना, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाय टू गुड लाइफ।
7: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण ले और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दे।
8: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: इंजीनियरिंग में फ्यूचर बनाना है तो एनरोल योरसेल्फ इनटू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जुगुरा कैंपस। जुगुरा कैंपस के ओपन डे पर ऑन 11th of May 2026 एक्सप्लोर कीजिए मॉडर्न लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, इनोवेशन स्पेसेस और इंटरैक्ट कीजिए एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। एडमिशन्स ओपन है बीटेक और एमटेक प्रोग्राम्स के लिए इन सिविल, मैकेनिकल, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी अदर कोर्सेज। एनएएसी A++ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टेड एकेडमिक एनवायरनमेंट में पाइए क्वालिटी एजुकेशन, प्लेसमेंट्स और फ्यूचर रेडी लर्निंग्स। अप्लाई करने की डेट है 13th May 2026। तो इंतजार किस बात का, विजिट कीजिए iot.uok.edu.in इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वेयर इनोवेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सभी आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में कौमी पैमाने के गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। वाजिर है कि टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने वादी में सियाहत की तरक्की के लिए गोल्फ की अहमियत उजागर की और कहा कि उनकी हुकूमत गोल्फिंग की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए गैर मामूली तौर पर संजीदा है। बाद एजा मौसूफ ने JLNM अस्पताल रैनवारी के 9 तामीर शुदा ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
10: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में इंडिया गोल्फ कार्निवल 2026 टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गोल्फ और एडवेंचर टूरिज्म के बेपना इम्कान मौजूद हैं और इस तरह की तकरीबा खित्ते के आलमी मैयार के खेलों के बुनियादी ढांचे को दुनिया के सामने पेश करने का अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट्स जम्मू कश्मीर को एक बड़े सियाहती मकाम के तौर पर मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ मकामी मईशत और होटल इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाएंगे। वज़ीर आला

0: ने कहा कि श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सिद्रा जम्मू में मौजूद गोल्फ कोर्सेज न सिर्फ सयाहों और गोल्फर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं बल्कि नौजवानों में इस खेल को फरोग देने में भी मददगार हैं।
1: गोल्फ और कश्मीर का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मुल्क में सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स में अगर आप देखें, कश्मीर के तीन कोर्स जो हैं आसानी से गिने जाएंगे, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम। और हमारी कोशिश रहती है कि एक तो यहाँ जो हमारे लोकल गोल्फर्स हैं उनको बढ़ावा मिले और इन कोर्सेज का हम इस्तेमाल करें टूरिज्म प्रमोशन के हवाले से। तो आज ये टूर्नामेंट उसी सिलसिले में एक और दौर है, कोशिश की जा रही है एक तो यहाँ खेल को एक बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ एक नई जनरेशन जो है गोल्फर्स का हम शुरू करें और टूरिज्म के हवाले से थोड़ा सा कश्मीर के कोर्सेज का हम प्रमोशन करें। 100 से ज्यादा गोल्फर आज खेल रहे हैं, इनमें से कई सारे जो हैं मुल्क के दूसरे कोनों से आए हैं और ठीक इसी तरह कुछ हफ्तों के बाद इनका इरादा है कि 60 यंग गोल्फर्स को लेके आए और पहलगाम में उनके लिए ऑर्गेनाइज करें। इसी तरह गुलमर्ग का कोर्स जुलाई तक जो है पूरी तरह से खुल जाएगा, उसके लिए जो नया सामान ऑर्डर किया वो आया हुआ है। और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जब जब बाकी मुल्क में खासकर नॉर्थ इंडिया में फ्राइडे या मंडे को छुट्टी होती है तो कई सारे गोल्फर्स जो हैं लॉन्ग वीकेंड के लिए अब श्रीनगर आना शुरू कर गए हैं दोबारा सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए। उम्मीद है कि इसका टूरिज्म से जो है फायदा जरूर है। वी वॉन्ट दैट व्हेन पीपल थिंक ऑफ गोल्फ and particularly golf tourism, the first thought that should cross their minds is Kashmir and the three main golf courses.
0: Is mauke par wazir-e-ala ke mushir Nasir Aslamwani, MLA Zaribal Tanveer Sadiq, MLA Gulmarg Farooq Ahmed Shah, secretary Raj Spring Golf Course Haris Ahmed Sandhu, director tourism Kashmir Sayyid Qamar Sajjad, muntazameen aur Jammu Kashmir samet behroon riyasat se aaye golfers bhi maujood the. Baad azam wazir-e-ala ne JLNM hospital Rehnawari mein jadid tibbi sahuliyat ka iftitah kiya. इन सहूलियात में ERCP, एंडोस्कोपी मशीन, अल्ट्रासाउंड, डोपलर मशीन, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए टिश्यू प्रोसेसर और लेजर यूरोलॉजी यूनिट शामिल हैं, जो तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से HDFC बैंक के CSR इकदाम के तहत कायम किए गए हैं। इन सहूलियात से रैनावारी, खानियार, जड़ीबल और मुनिका इलाकों के मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमत मयसर आएंगी। इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वजरा सकीना यत्तू, जावेद राना, सतीश शर्मा और वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, MLA जड़ीबल तनवीर सादिक, महकमा सेहत के आला अफसरान, डॉक्टरों, हस्पताल अमले और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
2: इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर रहनुमा मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की 36वीं बरसी पर उन्हें अपना खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की आवामी खिदमात नाकाबिले फरामोश और तहरीक बख्श हैं। इधर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इम्तियाज हुसैन मीर के वालिद गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर शुपियां शौकत हुसैन गनाई और जिला सेक्रेटरी शुपियां निसार अहमद निसार ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा बिलखसूस DIGP इम्तियाज हुसैन मीर के साथ ताजियत का इजहार किया है। सदर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज रफियाबाद के बराई देहात का मुफस्सल दौरा किया और दौरे के दौरान अवामी सहूलियात की मजमू फराहमी का जायजा लिया। दौरे के फौरन बाद अब्दुल गनी वकील ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वह रफियाबाद के जिन देहात से होके आए हैं वहां सड़कों की हालत नागुफ्तगह है और इन देहात में शरह खानदगी अजहद कम होने की यह भी एक बड़ी वजह है।
3: इस वक्त मैं वहीं से आ रहा हूं जो हमारा अपर बेल्ट रफियाबाद का है, पिछड़ा इलाका हमाम मरपुर, केतरदजी, दाजना और इसी तरीके से पाजलपोरा, टोनीवारी, हमाम मरपुर और इसी तरीके से खामू ब्रह्मन, एक ऐसा एरिया है फाक साहब कि आप अगर दौरा करोगे आप कहोगे ये आज वही जिंदगी गुजार रहे हैं जो ये 60 साल से गुजार रहे हैं। उनका पोशाक वही है, उनका खाना पीना वही है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं कुछ इंतजाम ही, उनका कोई अस्पताल नहीं है। ये लोग कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अपर बेल्ट रफियाबाद है और इस रफियाबाद ये लोग इतने गरीब है कि वहाँ कोई MA PhD नहीं होगा। वहाँ मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके ये लोग मिडिल से

0: पार्षद पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनकी सुनवाई नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, और उनका जो एमएलए है वो इस वक्त मिनिस्टर है, लेकिन 1.5 साल से मिनिस्टर होने के बावजूद इसने इस अपर बेल्ट का कहीं दौरा ही नहीं किया। अगर आप सड़कें देखेंगे कितने खड़े हैं, कितनी बुर्बाजी है सड़क की, कि जिस जहां आधा घंटा लग सकता था वहां पहुंचने में, वहां 1.5 घंटा लगता है। ये हालात है सड़कों की, हस्पताल की हालत। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ, मुतालबा करना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ ये सड़कों की हालत बेहतर कीजिए, और इन गरीबों को आप अस्पताल की सुविधा दीजिए, और स्कूलों में स्टाफ ही नहीं है। तो कुछ मिडिल स्कूल, कुछ प्राइमरी स्कूल, वहाँ बराबर स्टाफ ही नहीं है, और जरूरत है इस इलाके में इस गुर्बत को दूर करने के लिए एक स्पेशल पुलिस भर्ती होनी चाहिए इस इलाके में। मैट्रिक से ज्यादा कोई पढ़ा नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा एरिया है, हमाम मरकूट से लेकर दोनों वारी से, फिर ब्रह्मन कुतरू नरीबल, और इसी तरीके से खाहमू, ये बड़ा एरिया है, और सड़कों की हालत अब तक कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा मैं वहीं से अभी आया, और मैं हैरान हो गया कि ये सरकार कहाँ है। ये तो
1: ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील, जिन्होंने आज रफियाबाद के बालाई देहात का दौरा किया। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल त्रहगाम में यौम मादर मनाया गया, जिसमें स्कूल के तलबा व तालिबात की माओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में नौजवान सहाफी अशरफ चिराग ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तेहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
12: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
11: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आस पास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
12: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
11: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
13: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ। रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
14: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे।

0: अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
1: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
0: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ, अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर, शाम के 7:30 खबरनामे हूँ मीर तारिक, गुड हेडलाइनन पे अख नजर। जम्मू कश्मीर अंदर दहशत पसंदी हूँ खात्मा करने बाप जम्मू कश्मीर पुलिस रोल तारीफन लायक, एल जी मनोज सिन्हा। वजीर आला उमर अब्दुल्लान कोर गांधरबल 40 करोड़ रुपये लागत वाले प्रोजेक्टन हूँ आगाज, जे एल एन एम हस्पताल मज कर नवीन तबी आलात लूकन हंद नाव वक्फ। जम्मू कश्मीर मज नशा मुक्त अभियान तहत कार्रवाई जारी, आलमी मदर्स डे आज। वन पेश खबर तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी हंदि खात्मे तो अंदरूनी सलामती यकीनी बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस के रोल की तारीफ करमित। आर्मड पुलिस कम्प्लेक्स जेवन श्रीनगर हाल मुंतखब कर आम पुलिस कॉन्स्टेबलन अंदर नौकरी हंद आडर तकसीम करने के सिलसिले में मुनद तकरीब खिताब करान वो एल जी एन पुलिस सीआरपीएफ तो सुराग रसा एजेंसियन हंदि बाहमी अथवास किन लूख आज अमन तो खुशहाली हूं दौर व अत मौक पे चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू तो डी जी पी नलिन प्रभात अलव सिविल तो पुलिस इंतजामिक आला अफसर मौजूद। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत आई जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ बांडीपोरा तो वर्मुल जानकारी प्रोग्राम मुनद कर या दौरान समाज मंशियात नश पाक कर खात इजमी कोशन पे जोर दिन आव पुलिसन कर वर्मल तो सोपर खशकाशिश काश्त तबाह। वर्मल किस जानबाजपुर इलाकस में आव रियाज अहमद खान नए ड्रग स्मगलर सुंद अख दुकान मिसमार कर अनंत नाग आई एनडीपीएस एक्टस तहत वुहन जान पे तलाशी कार्रवाई अंजाम दिन पुलवामे आव मुख्तार अहमद रथर नए ड्रग स्मगलर गिरफ्तार कर। अर्रहीम ट्रस्ट नए तंजीम हंद एहतमाम बोर्ड डिग्री कॉलेज गांधरबल मुनद सपूद प्रोग्राम असलुक आलो आज अंद प्रोग्राम दौरान आई शुरकान मनशियात के बिद माहौलियात पकीजगी तो समाजी कदर मुतलिक जानकारी दिन इख्तितमी तकरीब मज कर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशा अंद्राबी तिरकत। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में सपूद अदबी मरकज कमराज के अहतमाम मरकज के सदर दफ्तर कानसपुरा वर्मल अक बेदारी प्रोग्राम मुनद मुकर्रो वोन नौजवानन मनशियात निश दूर रोजन बंद बंद करान तिमन पजि बसलियत माशर तमीर तमीर करनस मज शराकतदार बन अम ब्रो सपूज मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट सिंद सदारत मज रतवार एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनद। वजीर आला उमर अब्दुल्लान कोर आज पन्ने हल्के इंतखाब गांधरबल दौर कर 40 करोड़ रुपये लागत वाले वारियन तरक्याती प्रोजेक्टन हूं आगाज इन सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट गोडन मरहल तामिल वजीर आला तुल जिला हस्पताल गांधरबल बून डेक्सस सेक्शन मशीन तो फाइब्रो सेक्शन मशीन हूं तस यम आलात एच डी एफ सी बैंक समाजी कॉरपोरेट जिम्मेदारी तहत लागन आम तमो मुख्तलिम अहम नवीयत कैन तरक्याती इकदाम साम यपर कर वजीर आलान श्रीनगर के जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल हस्पताल में 1.5 करोड़ रुपये मालियत तबी आलात लूकन हंद नाव वक्फ तिमन सई वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सेहत तबी तलीम वजीर सकीन अटो तो एम एल ए जेड बल तनवीर सादिक मौजूद। ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा दिज आज तुलमला गांधरबल माता खीर भवानी अस्थापन पे हाजरी तो अति श्रद्धालु बाप दस्तियाब सहूलियतन साम तम मेला खीर भवानी बाप कर इंतजाम साम पत वजीर मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह आलानंदिस आस्थानस पे हाजरी तो ये तमो अकीदतमंद बाप दस्तिया बुनियादी सहूलियतन साम हिज। आज मदर्स डे याज माजन हुंद आलमी दो ये दो प्रेथ वरी मई रेत चे दुमे आतवारे मनावने इवान ये दो दुरुस दुनियास मज माजन हंस शफकत तो तिजन कुर्बानियन हंदिस एतराफस मज तिमन नस्बत शुक्र गुजारी हुंद इजहार करनुक अख मौका। वादी हंद एक नामवर शायर रफीक ताहिर काउचेकियन कर माज हंज अजमत मंजूम अंदाजस मज बयान।
4: दुनिया मज माज हू का गम गुसारा छाति का यस नंदर का मन गसा वन तुत सह

0: أتھ سۭتۍ ووت یہِ خبر نامہٕ اَنٛد. وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ اردوٗ خبرن ہُنٛد بُلٹِن. اَسہِ دِیِو اِجازت. خۄدا حافِظ.
1: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
2: Saving करने की भी यही उम्र है.
3: I know, pa. Save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
1: I know, ma.
3: RBI कहता है,
4: करो सही शुरुआत, बनो financially smart.

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समय इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरा फिक्री पसमानदगी इंतशार और अब्तरी की जिस सूरत

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त आप वादी की आवाज समाप्त कर रहे हैं। समीन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से विफाक पर महासिल की तकसीम में अदम मसावात के इल्जामात तूल पकड़ते जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर मौकिफ इख्तियार किया है कि सूबे के 500 अरब रुपए सालाना खाए जा रहे हैं। पिशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिशावर के लिए जब से 200 अरब रुपए का प्लान दिया तब से कुछ चीखें निकल रही हैं। हमारा सूबा जितनी गैस और बिजली इस्तेमाल करता है उसे कहीं ज्यादा पैदा करता है। सूबे का मुकदमा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विफाक का अगर यही रवैया रहा तो विफाकी हुकूमत से ताउन खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के वजीर आला को दूसरे दर्जे का शहरी समझकर उन पर मुसलसल जुल्म करके पाकिस्तान के हालात खराब किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम विफाक से ताउन खत्म और राब्तों का बायकॉट करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत को भी शिकायत है कि विफाकी हुकूमत सिंध को नजरअंदाज कर रही है और सखर मोटरवे की तामीर पर उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जितनी माजी में पंजाब में मोटरवे बनाने पर तवज्जो दी गई, और अदम तवज्जो की वजह से सखर के दरमियान मोटरवे की तामीर ही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक में दुश्वारी का सामना है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर के नवा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन 8:30 हुए हैं। आइए चंद फिल्मी नगमे समाप्त करते हैं। आगाज में मोहम्मद रफी की सदाबहार आवाज में दो रास्ते फिल्म का नगमा।

नाज से। कोई तो बताओ, कोई समझाओ, दिल किसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। समीन अय्या आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज हिंदी खबरों के लिए। रिले का बस जरा सा इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं

0: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।

0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीर जी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित

0: करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर समय मुहतरम रेजिडेंस है।

0: करने के लिए
1: ये हमारी खुशनसीबी कि आज आपने अपना वक्त हमें दिया और लकली आप कश्मीर में थे और हमें मौका मिला आपसे मुलाकात होने का। जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, शुरुआत कहां से हुई, पैदाइश पढ़ाई और उसके बाद ये बॉलीवुड में पहुंचने तक का सफर कैसा था और कैसे शुरू हुआ?
0: ये सफर काफी तवील रहा, तकरीबन 26 साल का सफर है। देखा जाए तो आधी उम्र से ज़्यादा वक्त इस सफ़र में गया है। और जर्नी के बारे में तो अक्सर बात हो चुकी है, लोग भी काफ़ी हद तक जानते होंगे उसके बारे में, बट थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, पैदाइश शहर श्रीनगर में हुई है। एक ना एरिया है पांद्रेठन नाम का, जहाँ पे मैं रहता हूँ। इस नाम से जानबूझ के मैं हर बार इसको बोलता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग इस जगह से वाकिफ नहीं हैं, जबकि ये एक हिस्टोरिकल
1: प्लेस है,
0: प्लेस रही है। अभी वहाँ पे मज़ार महजूर भी है, दैट इज़ देयर। और इस एरिया से हबा खातून का भी वाबस्तगी रही है, ललदत की भी वाबस्तगी रही है। तो अब ये ज़रूरी होता है अपने अपने एरिया, मोहल्ला, शहर, रियासत का नाम लेना, ताकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं इसी चीज़ से इंस्पायर हो जाए। हमारे मोहल्ले में भी कुछ आर्टिस्ट रहे थे, गयूर साहब, फजूल साहब, बट ये होता है कि एज वी से इन कश्मीरी पन्यन छन पैगम्बर खसान फेंक रहे। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम आर्ट फील्ड में यू आर्टिस्ट को वही तारीफ, वही ताली चाहिए होती है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डायरेक्शन में हो। अभी भी ऐसा एक वक्त है कि जो इज्जत अफजाई उनकी होनी चाहिए वो नहीं हो रही, जो रिकग्निशन होना चाहिए वो नहीं होता। और वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, अगर हम मेन स्ट्रीम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करें, धर्मेंद्र साहब जो अभी गुजर गए, हाल नहीं, उन्हें भी वो मकाम नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज उनका नेचर अलग था। देर आर सम पीपल लाइक हु आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, दे नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स एज अ प्रोडक्ट। उसके अलावा भी उन्हें दे आर वेरी गुड विद मीडिया, थोड़ा दे हैव सम गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस एज वेल, तो वो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। वो इनफैक्ट लोगों को भी उनके बारे में पता चलता है। एंड द पीपल लाइक हु आर लिटिल रिजर्व, या फिर उनसे वो होता नहीं है कि दे नॉट दैट आर आउट गोइंग, कि वो पार्टीज में जाएं, मीटिंग्स में जाएं, एंड दे फ्लैम्बॉयंट तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें। और आज की तारीख में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हुआ है कि थोड़ा विजिबल रहना ज़रूरी है। या बड़ा कश्मीरी में जो कहावत भी है, एक और है कि अब रिसेंटली मैंने कहा था कि दूर छो नाबूत नाबूत टठान,
1: टठवन
0: एग्जैक्टली। तो देखना बड़ा ज़रूरी है, और हमारी इंडस्ट्री का भी यही उसूल है कि वी विल हैव टू प्रेजेंट आवर सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें, जो बार बार बोलता हूँ कि हमें अपने आप को इस तरह से चीज़, एक प्रोडक्ट हैं हम, वो हमें इतना काम करना है अपने आप पे कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू हो। अब आपका प्रोडक्ट कितना भी ऑर्गेनिक हो, सेहत के लिए अच्छा हो, आई एम गिविंग एन एग्जांपल दैट वेज, लेकिन जब तक आप इसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे,
1: तब तक है वही बिकता है,
0: जो दिखता है वही बिकता है। तो यू हैव टू मीट द राइट पीपल, आपको सही लोगों से मिलना है, सही जगह जो जो एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म्स जो हैं
1: वहां पहुंचना है।
0: अगर ऑनलाइन पोर्टल है, अगर हम मार्केट की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें इसी प्रोडक्ट के लिए, तो आप सोशल मीडिया जो है, जितने भी सारे वसाइल हैं हमारे पास, इन सब पे अपने आप को इस तरह से विजिबल रखना है, जितने भी लोग तलाश रहे हैं इस प्रोडक्ट को, उनको दिखना चाहिए। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमें झिझक होती है किसी को अप्रोच करने में। मेरे साथ भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि यार क्या मैं इनके पास जाऊं कि आई नीड वर्क,
1: छोड़ना चाहता इंसान,
0: वो होता है, दैट इज राइट, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्या पता वो चीज़ वो होता हमारे हमारे आसपास

0: बार मुझे पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर इंसान चाहिए बिहाइंड द कैमरा जो मेरे नजदीक उस वक्त टच में होगा, मैं उसी को कंसिडर करूंगा. ये मेरे जहन में भी नहीं आएंगे. दैट इज द पॉइंट. तो एट द सेम टाइम उस वक्त हम कई बार किसी को जानते हों, किसी डायरेक्टर को जानते हों, किसी प्रोड्यूसर को जानते हों, अच्छे रिलेशन भी हों, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट इन टच तो मैं उनके जहन में नहीं रहूंगा. एग्जैक्टली. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एट लीस्ट नॉट आस्क फॉर वर्क, बस
1: बीन टच. मालूम हो कि सर्वर है.
0: एग्जैक्टली. इसमें ये जरूरी नहीं कि लाइक यू जस्ट सेंड कीप ऑन सेंडिंग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी एवरीथिंग. नो, इट्स अ ईद, हैप्पी ईद, हैप्पी न्यू ईयर, दिवाली, होली, उन पे मैसेज करो. कोई पर्टिकुलर ओकेजन हो उस पे मैसेज करो. कोई फिल्म का अवार्ड मिला है, मुबारकबाद करो. सो एटलीस्ट यू आर देयर इन दैट पर्टिकुलर लूप. तो वो बड़ा जरूरी होता है मेरे हिसाब से. और मेरे एक दोस्त ने भी, डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि यू हैव ओनली वन लाइफ. बोलने में झिझक नहीं करनी चाहिए. एटलीस्ट डोंट आस्क फॉर वर्क, बट एटलीस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन ऑप्शन. अगर उनके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारी, तो आप अगर उनमें से रहोगे तो कहीं ना कहीं आप भी कंसिडर किए जाओगे. अगर हो गए ही नहीं तो फिर आप कंसिडर कैसे हो गए. सो दैट इज माई पॉइंट.
1: सर ये शुरुआत तो पांडरेठन से हुई.
0: बराबर.
1: पढ़ाई
0: शुरू. एग्जैक्टली. वो शहर यही श्रीनगर से हुई है मेरी इनिशियल तालीम, वुडलैंड से हुई है. उसके बाद बिस्को में 2 साल दिए हैं मैंने हायर सेकेंडरी के. उसके बाद दिल्ली गया पढ़ाई के लिए, और उसी दौर में वो ये सब कीड़ा घुस गया. तो दिस वॉज लाइक इन अवर मिड 90s. मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम केम टू नो अबाउट मॉडलिंग, रैंप मॉडलिंग के लिए पता चला उसके बारे में. सो दैट टाइम थॉट लाइक एक हवा थी, एक चीज थी लाइक ओन यू विल वॉक ऑन द रैम्प, बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्स मैन. सो आई न्यू कि जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो हैं मुझ में. दैट वॉज 6-pack, फुल स्लीक ब्रूस ली वाला फिजिक था, फ्लेक्सिबिलिटी मार्शल आर्ट्स की वजह से, एंड द जॉ लाइन्स विच आई हैड. और तब तक आई डिडंट नो इट वॉज एन एडवांटेज. तब तक मुझे लगता था कि ये यार चेहरा मेरा धंसा हुआ है, अजीब सा लग रहा है. तो आई यूज टू टेक पिक्चर्स लाइक दिस, चेहरा फुला के, इसको खींच के. देन आई रिमेम्बर एक प्रिंट एड हो रहा था. तरुण खेवाल बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, तब भी थे ऑफकोर्स, आज तो खैर उससे भी बड़े वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं. तो ही अप्रिशिएट लाइक दिस, आई लाइक योर जॉ लाइन्स.
1: ये क्या हो गया,
0: ये अच्छा है. और ये दूसरी चीज भी उन्होंने अप्रिशिएट की थी, यू हैव अ गुड स्माइल. तो सो लाइक उससे पहले आई यूज टू टेक पिक्चर्स एवरी ईयर का मेरा ये था कि आई यूज टू गो टू द फोटो स्टूडियो. हर साल के 2-3 लुक्स के पासपोर्ट फोटोग्राफ्स मेरे पास मौजूद हैं, लेट 80s से लेके 90s तक, जब तक ये ज्यादा आम नहीं हुआ कि एवरीबडी हैज अ कैमरा, एवरीबडी टेक्स पिक्चर्स.
1: तब तक सिर्फ फोटोग्राफर ही हुआ करते थे.
0: एग्जैक्टली. या शादी या पिकनिक में हम 36 वाला रील डाल के एग्जैक्टली या करते थे. सो मेरे पास हर लुक के फोटोग्राफ्स हैं. उसका मैंने कोलाज भी बनाया था हाल ही में. एक स्कूल में था एक फोटोग्राफ, तो उसमें मैंने स्माइल करने की कोशिश की थी, विच आई डिड नॉट लाइक. अजीब से चेहरा हुआ था बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पिक्चर. आई डिड नॉट स्माइल फॉर मेनी ईयर्स इन एनी पिक.
1: सीरियस मूड में.
0: एग्जैक्टली. सीरियस मूड में. विच वॉज दैट पर्टिकुलर शूट 2001 में. तरुण खेवाल सेड लाइक यू नो वी नीड दिस इज देयर 3 फ्रेंड्स एंड दे हैविंग फन. इसके बड़े होर्डिंग्स बनने वाले हैं. यू हैव टू स्माइल. तो करने लगा था, यू हैव अ गुड स्माइल. फोटो दिखाई उसने. तो वहां पर वो दो चीजों ने एक पूरा कितना फर्क पड़ जाता है किसी की अप्रिसिएशन से. उसने नोटिस करी, विच आई वॉज इन द वेयर बोर्ड. लेकिन काफी होता है कि ग्रूमिंग होती है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं इस चीज के. तो ये उस स्टूडेंट लाइफ में आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे. आई जस्ट ज्वाइन सम कोर्स पर्टिकुलर. मुझे याद है फोटोग्राफी का उन दिनों नोएडा में वो फिल्म सिटी में कोई एक था इंस्टीट्यूट, विच वॉज वेरी पॉपुलर. काफी सारे लोगों ने वहां से किया था. उस वक्त वो अमाउंट हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था. उसमें तो हम पूरा साल खर्चा निकाल देते, अपना रेंट का, खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, पेट्रोल का. तो वो कोर्सेज नहीं किए. और तब ये इंटरनेट भी नहीं था कि विल गूगल एंड आस्क फॉर द सेम. आदत इतनी थी कि किताबें पढ़ के, किसी से मिलके, जितनी नॉलेज मिली उतनी

0: मिली। तो आज के तारीख में भले कंपटीशन उससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा है,
1: लेकिन
0: अपॉर्चुनिटी 1000 गुना है।
1: बिल्कुल सही।
0: और आसान इतना है कि प्रोज एंड कॉन्स विद दिस ऑफ दिस मोबाइल, बहुत सारे लोग अक्सर यही कहते हैं कि एमसुजगो वक्त जाए, कंप्यूटर एंड मोबाइल वॉज क्रिएटेड टू सेव योर टाइम। बट अब ऐसा हुआ है कि हम काफी हद तक डिपेंडेंट तो हो ही गए हैं सेव वक्त के, हम तो वक्त ज्यादा वेस्ट भी इसी पे करते हैं। बट इट हैज ऑन सम प्रोज ऑल्सो। तो फवाइद ये हैं कि अगर यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, तो इसमें से आप दुनिया की कितनी चीजें सीख सकते हैं,
1: से नॉलेज ले सकते हैं और वहां अपनी प्रेजेंस बता सकते हैं।
0: एग्जैक्टली। तो यही चीज है कि आपको सर्च क्या करना है और आपकी पेशेंस और आपका जो फोकस है वो उस चीज पर रह रहा है कि नहीं रह रहा है, दैट मैटर्स। क्योंकि पेशेंस बड़ी कम हुई है, इफ वी कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड वी विल कीप ऑन स्क्रोलिंग, वी विल नॉट स्टे एनीवेयर। अगर हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे हम हैं, वी विल वॉचिंग ए वंडरफुल रील, इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर अ मिनट और थ्री मिनट्स, जितने भी लिमिट है उसका, स्टॉप इट देयर एंड कंटिन्यू फॉर द रिलेटेड सब्जेक्ट्स। आप विकिपीडिया पे जाके टॉक रीड अबाउट इट, इफ यू हैव अ बुक ऑफ दैट सब्जेक्ट ढूंढो उसको ले लो, अदरवाइज गो टू यूट्यूब एंड वॉच अ वीडियो ऑफ द सेम। सो उससे आगे मत जाओ जब तक कि उसके बारे में यू हैव समथिंग, पूरी तो नहीं मिल सकती बट जितनी भी मिल जाए, प्लस राइट देम डाउन। आई वुड रिकमेंड टू राइट इट डाउन बाय हैंड, नॉट ऑन अ डिजिटल मीडिया मीडियम। क्या है कि उससे क्या होता है कि लाइक आपका माइंड, आपकी आंखें, आपका हाथ, बहुत सारी चीजें उस पर कर रही है, एंड दैट्स एग्जैक्टली एक मेडिटेशन
1: बनता है, वो एक पैटर्न बनता है।
0: एग्जैक्टली। और एट द सेम टाइम दैट्स अ वंडरफुल स्ट्रेस बस्टर।
1: बिल्कुल सही।
0: आज की तारीख में एवरीबडी इज मेंटली एग्जॉस्टेड एंड एवरीबडी इज सो डिस्टर्ब, और पेशेंस की बहुत कमी है आज की तारीख में। वो एक मेडिटेशन है। हम अभी क्या करते हैं कि बच्चों को, अगर हम विल कम बैक टू द वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि स्कूल में हम उनसे छड्डी पकड़ के मार मार के कोई चीज कराते हैं, या घरों में हमें बचपन में मार पड़ती थी कि नमाज पढ़ो, तो हम पढ़ते थे या पढ़ते हैं। मगर इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर, इस टाइम पे ये चीज करने से, इफ यू वुजू के फवाइद, उसके फायदे इस तरह से हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग, नो ऑर्गेनिक है तो खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा है, फास्टिंग करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, इट विल हेल्प यू विद दिस एंड दैट। अब इसी चीज को अगर हम पेश करें कि लाइक वट एवर इज सुन्नत इज गुड फॉर योर हेल्थ, वट एवर इज वाजिब इज गुड फॉर योर हेल्थ, एंड वाइस वर्सा, इस जो भी मकरूह हराम है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो इसको सवाब और गुनाह के बजाय इस तरीके से बताया जाए, तो मे बी शायद वो बच्चे को समझ में ज्यादा है। आज की तारीख में तो आएगा ही आएगा, इसमें बेनिफिट समझ में आएंगे, तो दे विल डू इट होल हार्टेडली। हाफ हार्टेडली कोई काम करने से बेहतर है कि पूरा समझ के करें। हम तो बेसिकली भी हमें अरबिक समझ नहीं आती, सो वी डोंट अंडरस्टैंड कुरान शरीफ, जो हमारी गलती है कहीं ना कहीं, और
1: समझना बहुत इंपॉर्टेंट
0: जरूरी है। अभी इसी बात पे मुझे याद आया कि खुदा के लिए एक फिल्म थी, शायद आपने देखी हो, देयर वाज अ पर्टिकुलर सीन व्हेन एक बंदा अमेरिका में आफ्टर दैट इंसिडेंट 9/11 का, वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है, एंड दे फाइंड ए तावीज इन हिज सामान, उस पर नक्शे होते हैं, तो उसने कहा ये क्या है, व्हाट इज इट, इट्स लाइक दिस इज तावीज, नो आई कैन सी दिस इज अ मैप ऑफ मैनहट्टन, व्हाट आर द नंबर्स, दिस आर द नंबर्स ऑफ द स्ट्रीट्स, नहीं ये लिखते हैं हम, एंड व्हाट इज रिटन, अरबिक में लिखा था, इट्स रिटन इन अरबिक, व्हाट डज इट मीन, आई डोंट नो, आई कैन रीड इट बट आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता। तो जो उसने थप्पड़ मारा है वहां से, मतलब बोल के, व्हाट इज द फन ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज यू डोंट अंडरस्टैंड। हम सब पे अप्लाई होता है। हम भले ही कितना भी मसरूफ रहे जिंदगी में, दुनिया में, इस जो हम सब ने पढ़ी है, लेकिन हमें नहीं पता है कि उसमें है क्या। तो ये तो खैर टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो गया, लेट्स कम बैक।
1: 2001 में आपने मॉडलिंग शुरू करी
0: जी,
1: तो आपने
0: 1999
1: में मॉडलिंग का वो शुरू हो गया। बॉलीवुड कब आया, बॉलीवुड में कब आपने एंट्री ली?
0: बॉलीवुड तो बहुत लेट आया, बहुत बाद में आया, इट वॉज

0: 14 साल की जर्नी के बाद 2013 जो मैंने पहली बॉलीवुड फिल्म की थी वो रिलीज नहीं हो पाई थी, उसका नाम था दिल पतंग। लेकिन उसी साल फैंटम फ्री ऑफर हुई थी जो नडियाडवाला ग्रैंडसन्स की थी, कबीर खान कबीर सर डायरेक्टर थे उसके, वो शूट शुरू हुआ 2013 में और फाइनली 14 में कंप्लीट होके 14 में हमने बजरंगी बाजान का शूट शुरू किया जो 15 में पहले रिलीज हुई, फिर फैंटम रिलीज हुई, सेकंड वाज फैंटम। और उससे पहले तो जो अल्टीमेटली जो आपने डिसीजन लिया होता ना कि अभी हमें ये करना है, तो स्टेप बाय स्टेप नजर टारगेट वही था। अभी टारगेट हॉलीवुड है तो टारगेट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, दूर होते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन समथिंग कि अब और क्या और क्या
1: नेक्स्ट।
0: और यहाँ पर यही है कि हम अपनी इंडस्ट्री को भी उस मायार तक ना सही, कम से कम इंटरनेशनल सिनेमा के किसी मायार तक पहुँचाएं। अब ये टारगेट है दिमाग में, अगर हम फिल्मों की बात करें तो हॉलीवुड और दूसरा अपनी J&K की जो इंडस्ट्री है हमारी, स्पेशली कश्मीरी फिल्म इंडस्ट्री, उसको डेवलप करें। तो लेकिन जो 14 साल थे वो सिर्फ उस इंतजार में नहीं थे, उसमें तैयारी चल रही थी, जिसको इंसान बोलता है स्ट्रगल, मैं उसको जर्नी बोलता हूं। हर दौर में कुछ ना कुछ सीखा जो बाद में काम आया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो नदामत उस दौर में आई। उस टाइम पे आई रिमेंबर लाइक यू नो जब ग्रासिम और ग्लैड रैक्स मिस्टर इंडिया चल रहा था, आई वॉज पार्ट ऑफ दोज ऑल्सो। उन दो जमाने में राहुल देव, मिलन सुमन, दे वर द बिग शॉट्स मॉडलिंग में, सुपर मॉडल्स। जॉन अब्राहम वॉज न्यू, ही वॉज मोर लाइक यू नो उसमें भी इतना क्या खास है कि जो मुझ में नहीं है, विच इज देयर बिकॉज ही वॉज नॉट दैट ह्यूज दैट टाइम। एंड अपना भी ये था कि लाइक यू नो वी आर कॉम्पिटिटर्स, ऐसा वाला था। रजनीश दुग्गल वॉज द पर्सन जो जिसने उस साल ग्रासिम जीता था। और उस टाइम ऐसा नहीं होता कि लाइक ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ये हमेशा मानना चाहिए कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ओवर नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड एग्जैक्टली। और दूसरा ये एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, बाकी सब हल्का सा नदामत उससे आती है व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग जॉब, क्योंकि मॉडलिंग में पैसा बहुत था लेकिन आई वॉन्टेड टू लर्न मोर। तो थिएटर जब ज्वाइन किया तो पैसा नहीं था, तो डोर टू डोर मार्केटिंग करके आधा पैसा थिएटर को दे के आधे पैसा सैलरी से खर्चा निकाल के, तो उस जमाने में उस दौर में समझ में आया कि स्टे ग्राउंडेड, सीखो पहले थिएटर जाने से पहले वह ना चल रही कि ना मुझे तो सब आता है। वहां समझ में आया कि कुछ नहीं आता, जबान बॉडी लैंग्वेज तलफ्फुज। जब लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप जो यहाँ पे हुआ था, पहला नाटक दिल्ली में ही किया था मैंने 2002 में, जूलियस सीजर के आखिरी 7 दिन बापीदा के साथ, बापी बोस हमारे उस्ताद हैं। उसके बाद 2003-4-5-3 कंटिन्यूसली रैना साहब के साथ, मिस्टर एम के रैना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्कशॉप्स किए थे। आखिरी वाले में आई वॉज वन ऑफ द फैकल्टीज, जो उसमें मैंने एक स्किट डायरेक्ट किया था बिकॉज ऑफ माई मार्शल आर्ट स्किल्स एंड ऑल। उस समझ उस टाइम पे आई केम बैक टू द रूट्स, कशर पर कथ करूँ, कशर लिटरेचर पढ़ूँ, कशर म्यूजिक से ज़्यादा लगाव था। सो दैट वॉज 2003 बिकॉज ऑफ दैट थिएटर वर्कशॉप। उससे पहले तो हमें ये लगता है कि लाइक यू नो इंग्लिश, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश म्यूजिक, इंग्लिश मूवीज। उसके अलावा हमें फिर थोड़ा वसी नज़रिया बढ़ने लग गया, लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चला, 5,500 साल की लिखित हिस्ट्री है उसके बारे में पता चला, इतने बड़ी बड़ी किताबों के बारे में पता चला। तो समझ में आ गया कि लाइक हम जो वेस्टर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास इतना जखीरा बड़ा हुआ है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसको करने के बाद हमें भले डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप इसी में रहो, नज़रिया बढ़ाना ज़रूरी है ऑलवेज देयर, बट एट द सेम टाइम वी शुड एटलीस्ट नो अबाउट आर ओन कल्चर, आर ओन हेरिटेज, जो हमारा अपना है, अपनी ज़बान जो है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़बान के बारे में सोचेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो दैट इज़ द एंड डिक्लाइन अगर किसी भी कौम का होता है वो आपकी ज़बान ख़त्म होने से। अगर आपकी ज़बान गई उसके बाद क्या बचा,
1: पहचान खत्म हो गई,
0: पहचान खत्म हो गई, दैट्स व्हाट आई थिंक।
1: सर आपने ये कहा कि अब तो फिल्मों को लेकर बात करें, आपने बॉलीवुड इतना कर लिया है, 100 से ज्यादा फिल्में आपने कर।
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
1: और अब जो नेक्स्ट है वो हॉलीवुड है, कि हॉलीवुड करना है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा आपने बात करी कि हमें अपनी इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप करना।

0: उसके लिए आप अभी कुछ कर रहे हैं या उसमें कहीं कुछ शुरुआत हुई है?
1: जी हॉलीवुड पे कहते हैं, मैंने एक फिल्म जैकी चैन के साथ की थी, वैनगार्ड, विच वॉज अ हॉलीवुड फिल्म. तो वो एक सपना पूरा हुआ था जैकी चैन से मिलने का और उनके साथ काम करने का, बिकॉज मार्शल आर्ट्स के वजह से ब्रूस ली वॉज एवरीथिंग. उसके बाद जैकी चैन, और जैकी चैन सामने दिखने के बाद ही पर्सन हु हैज अ प्राइवेट जेट, बट इन द इवनिंग और जो लंच टाइम पे वो आपके साथ खाना खा रहा है. ही कम्स टू एवरी टेबल एंड गिव सम थिंग्स. He is speaking to each and every person. He takes pictures with thousands of people around him.
0: Such a humble person.
1: जो इंसान जहनो गुमान में भी नहीं आ सकता है इंसान के. ये छह साल से लाकुट मकुट के करूँगा इंसान कार्ड इन खुद बहुत. Which is there. In fact, वो यहाँ पर भी है. हमारी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड बोले या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोले, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि हवा में उड़ते हैं. लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि दे आर ग्राउंडेड. और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना जरूरी भी है, हो सकता है कि अदरवाइज विल बी फ्लडेड, बट इतना भी ना बनाओ कि आप डिस्कनेक्ट ही हो जाओ. दूसरा, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए हमारा बेसिकली कंट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि जितने भी सारे लोग जिनको एक्सपोजर मिला है वहाँ पे सीख के, या इन माई केस ऑल्सो, अगर मैं बाहर फिल्में कर रहा हूँ, आई हैव टू सर्वाइव इन बॉम्बे, माई फैमिली इज इन बॉम्बे. तो अगेन, क्योंकि इसमें सबका सपोर्ट जरूरी होता है. इन माई केस माई फैमिली हैज़ बीन सपोर्टिव. माई वाइफ एंड माई डॉटर इज इन बॉम्बे राइट नाउ. वो अकेले हैं, वो उनका सपोर्ट है, तब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पे काम कर सकता हूँ, किसी भी शहर में जा सकता हूँ. माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव. बचपन से ही उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है. सफदर साहब, सफदर मोटर्स, जिनका ही नाम से मेरा बैनर है सफदर आर्ट्स. अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं जा आ पाता. कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री पार्ट, जितना वहाँ से एक्सपर्टीज सीखी है वो कहीं ना कहीं यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है. बिकॉज द फिल्म विच आई डायरेक्टेड दैट वाज बेड नंबर 17, उसका पैटर्न दूसरी फिल्मों से अलहिदा है. जिसमें भी एक्टर्स उसमें हैं, उनका काम जो उस फिल्म में है वो दूसरी फिल्मों में अलग है. क्यों? बींग एन एक्टर, आई नो कि एक्टर की पोटेंशियल क्या है और उससे क्या निकलना है. यू आर एन एक्टर, यू नो इट अबाउट इट. हमारा काम यह है कि हमें हर शोबे के बारे में थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट इफ नॉट ऑल, बट पता होना चाहिए. कैमरा का नॉलेज, लाइटिंग का, साउंड का, डायरेक्शन का, एक्टिंग का, म्यूजिक सेंस, एडिटिंग का, ये सब हासिल करने के बाद, सीखने के बाद, आई कैन नॉट, आई विल बी लाइक यू नो एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट. मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगा कि आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन. कि एम वरे है अच्छा वह कलर बार आन सोहज बनी लाल चौक. सो वैसा वाला हाल नहीं, वैसा हाल नहीं होना चाहिए. सो इससे ये होता है कि लाइक आपका मैन पावर कम होता है. यू आर हैंडलिंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड यू हैव लेस पीपल ऑन द सेट. आपका खर्चा बचता है. जो हम बाहर अभी कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अभी जो फिल्म बनाई लास्ट ईयर में, एक फिल्म डायरेक्ट की थी जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है, दैट्स दैट वाज द फिल्म व्हिच आई हैव डन. और एक्ट भी करना पड़ता है साथ में, इसलिए बिकॉज उससे एक ब्रांड वैल्यू बढ़ती है. अदरवाइज अपनी फिल्म की जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा मैं उसमें एक्ट करूँ. मगर अब अगर थोड़ा सा महार दिखाना है कि कौन कौन है इसमें, तो उसे सेलिंग होती है. एग्जैक्टली,
0: फेसेस बिकते हैं.
1: एग्जैक्टली. और यही हमारे अभी हाल फिलहाल में भी हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने भी कहा था थोड़ा सा एक सीन है ऐड कर लो, थोड़ा सा एक्ट स्टार कास्ट बढ़ जाएगी. मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कर लिया. हम कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी माइंड में रखना चाहिए, इंडस्ट्री में जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पर, जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये चुकेश्वरी क्या जाता है ज़्यादा बरादरी मस करियो सर. तो बरादरी में क्या होता है ना कि आपका घर कैसे चलेगा. इफ यू आर एन आर्टिस्ट, यू हैव योर बिल्स टू पे, तो वो कैसे पे करोगे आप. तो वो चीज़ बैलेंस, भले आप कम रखो बट वो रखना जरूरी, रखना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो भी होती है. मैंने फ्री मार्शल आर्ट्स भी सिखाया है बच्चों को, उसकी वैल्यू नहीं थी. मेरे कोच ने कहा कि फ्री मत सिखा,
0: पैसे लेकर सीखा तब वैल्यू.
1: भले कम लेके देखा, लेकिन पैसे लेना जरूरी होता है. एंड
0: सीरियस होते हैं.
1: एग्जैक्टली. एंड इट इज समथिंग, यू नो, मेरी 26 साल की जर्नी है, आपकी 20-25 साल की जर्नी है. आप इतना वक्त दे रहे हो, एक दिन में इतना जी 6 फिगर या 7 फिगर का अमाउंट लेना है, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ ये चीज मुझे, ये तो कोई और भी कर लेगा. तो कोई और का वो
0: 26 साल का सफर है,
1: जो चीजें सीखी है, हुनर जो है, हुनर का कोई वैल्यू नहीं है.
0: नहीं होता.
1: वो अनमोल है.
0: बिल्कुल सही.
1: एग्जैक्टली. तो अब इसके भी है ना कि अच्छी वैल्यू भी कम, वैसा वाला वैल्यू नहीं, उसमें अनमोल है.

0: नो वैल्यू, यू कांट, यू कैन वैल्यू इट. और जो एक्सपर्टीज आप किसी प्रोडक्ट फिल्म में प्रोजेक्ट में डालोगे, जो एक्सपर्टीज मैं डालूंगा वो दूसरा बंदा नहीं डाल सकता,
1: उसकी शायद उस इमेजिनेशन में होगा.
0: एग्जैक्टली. और आप अपने इस तजुर्बेकार एक्टर को, फिल्म मेकर को, राइटर को, जिस भी बंदे को लेते हो आप, वो अपनी तरफ से उस चीज को एनहेंस करता है 10 times. तो वो चीज के पैसे हैं, वो चीज का फी होता है. तो यही पे ये हमारा यही आता है कि लाइक एटलीस्ट हम कलेक्टिवली चीजें जो करते हैं करनी हैं. कई बार मेरा हमेशा हर बार यही होता है कि जस्ट गिव योर टैलेंट, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है. अभी तसरफदार बनी हाल फिलहाल में, कपिल मंटू साहब ने डायरेक्ट की थी वो. आई वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म. मैंने उसमें एक्ट किया, अश्वत भट्ट भाई आए थे, लोन साहब थे उसमें, शाफिया जी थी उसमें. दैट इज अ कश्मीरी फिल्म. वो जब सामने आएगी तो लोग डेफिनेटली, अब ये है कि लाइक सुधीर मिश्रा इज प्रेजेंटिंग इट, तो बड़ी हो गई,
1: वैल्यू बढ़ गया,
0: वैल्यू बढ़ गया. तो इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं लोग, अरे सुधीर साहब ने कोई कश्मीरी फिल्म प्रेजेंट की है, तो एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है,
1: देखें क्या है.
0: एग्जैक्टली. तो हमें चीज बनानी है अपनी जबान में, चाहे वो जम्मू में डोगरी में बनाए, पहाड़ी में, गोजरी में, हर जगह जिसे भी बनाए. हम, मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, कश्मीरी में हम फिल्म बनाएंगे, किस मैार की बनाएंगे, फिल्म फेस्टिवल्स में किस लेवल तक जाएगी. और कमर्शियल सक्सेस के लिए ऑडियंस का देखना जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: ऑडियंस का सवाल रहता है कि आजकल क्या जिम सीरियल वीरियल बने नहीं कश्मीर है, कॉडोस मज लगा. फिल्में तो खैर नहीं बनती थी ऑफकोर्स, बट दे आर मिसिंग दैट. कहीं ना कहीं ऑडियंस चाहती है वो देखना,
1: कहीं क्रिएट हो गया है.
0: एग्जैक्टली. भले कि जो जनरेशन आज की है वो टीनएजर्स, दे हैव नॉट सीन दूरदर्शन सीरियल्स एज सच, बट पीपल लाइक हुआ 30 और प्लस, दे हैव सीन दैट,
1: करते हैं वो चीज.
0: एग्जैक्टली. और जो बाकी सारे है, कशीर मोशन घसे ही नहीं किया है, बनाई है चेयर पोस्टर करा, बट वी आर नॉट ओनली दैट. ऑडियंस का मच्योर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप कोई ऐसी रील बनाते हो विच इज थॉटफुल, यू आर टॉकिंग अबाउट पोएट्री, या आपका आपके आपकी आवाज अच्छी है, आप उस अंदाज में बताते हो, कंपेयर टू द पर्सन लाइक वहां पे कोई ऐसा मस्करी हो रही है, दैट गोज वायरल. योर्स हैज 1000 likes, 20,000 likes, 50,000 likes, नॉट इन मिलियंस. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
1: ऑडियंस,
0: ऑडियंस की. एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा चीज, ऐसी चीज, अच्छी चीज बना रहा है, उसे अप्रिशिएट करो.
1: बिल्कुल सही.
0: इफ यू आर मेकिंग ए फिल्म इन कश्मीरी जबान में बना रहे हैं, अपना हार्ड अर्न मनी लगा, पैसा लगा के, अगर हम उसे कहीं ऐसे मोनेटाइज जगह पे यूट्यूब पे डालते हैं, 50 rupees, 100 rupees की टिकट करके, जैसे तारे जमीन पे, नहीं सितारे जमीन पे आमिर खान ने किया है, आमिर खान ने किया, तो वॉच इट. तो सो एग्जैक्टली, अगर अगर अगर फॉर एग्जाम्पल आईनॉक्स में लगी है बाई चांस, 99 rupees की टिकट है, 150-200 की टिकट है, अगर कोई भी हम कहीं पर भी जाते हैं बाहर फॉर अ कप ऑफ कॉफी इन एनी कैफे, 250 की तो वैसे भी आती एक बंदे की. इफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, 5-8 लोग जा रहे हैं और वो यूट्यूब पे वो 100 rupees का मिलता है 24 घंटे, 48 घंटे के लिए, दैट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट यू विल हैव टू प्रोवाइड. उस तरीके से
1: तब जाके इंडस्ट्री डेवलप होगी,
0: तब तभी तो होगी. साउथ में क्यों है? कांतारा इज ए फोकलोर ऑफ कन्नड़, तुलु का कुछ है, उन्होंने उससे इतना
1: सपोर्ट किया.
0: एग्जैक्टली. पहली जो है 400 crores कर लिया, दूसरे ने 800 crores कर लिया. चलिए हम भी नजर रखते हैं उम्मीद है करोड़ों के फिल्म में बनाने की, और करोड़ों इंशाल्लाह बिल्कुल बनाएंगे और कमाएंगे भी, मगर एट द सेम टाइम उस चीज को, उसके लिए कुछ पागल दीवाने चाहिए. तो हम हैं उस कैटेगरी में, है आपने प्रोड्यूस की है, मैंने प्रोड्यूस की है, वी आर इन दैट कैटेगरी. बट एट द सेम टाइम हमारी फैमिलीज भी हैं,
1: वो भी चलाना है,
0: हमारी बिल्स भी हैं.
1: बिल्कुल सही.
0: और हम अपना हार्ड एंड मनी से, हाउ वी कैन ओनली पुट इन सम अमाउंट ऑफ मनी, अगर उसका रिटर्न आएगा विल बी हैप्पी टू डू इट अगेन. टिल द टाइम एक कलेक्टिवली लाइक माइंडेड लोग आते नहीं, आएंगे नहीं, तब तक डेवलप नहीं बन होगी इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री बनाने के लिए जितने जरूरी एक्सपर्ट्स हैं, जितना जरूरी टैलेंट है, उतना जरूरी ऑडियंस.
1: बिल्कुल. और सीरियस ऑडियंस का होना बहुत लाजमी है अगर आप सच में चाहते हैं कि कश्मीर को हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उस लेवल से दिखाएं जिस लेवल के एक्चुअली हम हैं. तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, और जो सीरियस कंटेंट आता है सोशल मीडिया पर उसको पसंद भी करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा. मुख्तसर में जानना चाहूंगा, कितने मुतमईन हैं जिंदगी से आज?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन ग्रेट काइंड, शुक्र खुदा है उसका हर हाल असमस. क्या होता है कि जब कुछ फैसले जिंदगी में लिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं की, बाकी चीजें नहीं.

0: अगर आपके पास थोड़ा बैकअप हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा,
1: अलग होगा बिल्कुल, आप सेफ रहेंगे, आप हमेशा सेफ फील करेंगे।
0: There was a phase in my life when I did not know मैं शाम को क्या खाऊंगा। There was a phase of life कि अगला कब होगा, कहां से होगा। So I used to have one meal a day for entire year, तीन फिल्में रिलीज होने के बाद। उस वक्त अगर ये समझ होती, I had, मेरे पास जी सेफ फिगर का, सेवन फिगर का अमाउंट अकाउंट में है, एंड नहीं अब मुझे फोकस करना है इस कॉन्सेंट्रेट पे, आई विल बी 100% देयर। बट अगर मैं किसी काम में भी हूँ, शामस क्या करब, घर से मैं पहुँच सोचूँ अभी अगले महीने का रेंट क्या होगा, तो आई एम नॉट देयर
1: एक्चुअली,
0: आई एम एक्चुअली नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट वर्क।
1: सो एग्जैक्टली वहाँ से फ्री होंगे,
0: सो उस पर काम करो। और बहुत सारे जगह हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, किसी से भी सीखने में
1: शर्म नहीं
0: होन करनी चाहिए। उस्ताद बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ जो कहते हैं वो ज़रूरी है। अपने हुनर पे काम करें, उस्तादों की तलाश करें। किसी का रेफरेंस काम नहीं आएगा, कभी भी काम नहीं आता। मैंने देखा है कि मिनिस्टर्स के लेटर्स लेके लोग आते हैं, सर एक्टिंग में चांस दो। ओके,
1: फिर क्या मिल जाएगा, उसके बाद क्या
0: गाली पड़ती है वहां पे उस मिनिस्टर को भी, ये इसने रिकमेंड क्यों किया। तो यही होता है कि अगेन वर्क ऑन योर स्किल्स, वी हैव टेक्नोलॉजी, उसका यूटिलाइज कीजिए, फायदा होगा उससे। मोबाइल्स हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनो, उसके बारे में सर्च फॉर दीज मास्टर क्लासेस ऑन, एग्जैक्टली आप सीखो, अपने अपनी ही वीडियोस बनाओ अगर आप एक्टिंग में फील्ड में जाना चाहते हो। इसी एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से बोलो, नवरस के बारे में पढ़ो, और अगेन डू द सेम आफ्टर ए मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ्स, आप फिल्म मेकिंग में बनना चाह रहे हो, अपनी फिल्म मेकिंग में बनाना चाह रहे हो, घर पे ही मोबाइल लेके अपने फैमिली में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, शॉर्ट्स बनाओ, एंगल्स सम अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड द लाइट, अंडरस्टैंड द एंगल्स। थोड़ी ना आपको पब्लिश करना है, दैट इज योर क्रॉस। आप एक्टर को एक्टर नहीं हायर कर सकते, घर वाले तो हैं,
1: कर सकते हैं।
0: आप एडिटिंग में जाना चाह रहे हो, यू हैव, देयर आर सो मेनी मोबाइल सॉफ्टवेयर्स, एडिटिंग सीखो। म्यूजिक के लिए इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, एवरीथिंग इज देयर। आपकी चाह होनी चाहिए, जहां चाह वहां।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। बहुत देर के बाद ऐसे बैठे हैं और ऐसे बात करें, और यकीन माने मुझे तो यही नहीं लग रहा था कि हम सच में एक पॉडकास्ट में बैठे हैं। मुझे लग रहा था कि गुफ्तगु चल रही है काफी देर के बाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर तो हमारी बात गुफ्तगु ऐसी ही होती है माशाल्लाह, पर ये अभी कैमरे के सामने।
1: मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही अपने टैलेंट से, अपने स्किल से आगे बढ़ते रहें
0: इंशाल्लाह।
1: अल्लाह ताला ने जो दिया है उससे और ज्यादा दे,
0: आमीन।
1: और आप ऐसे ही अपनी मिट्टी की खिदमत करते रहें। आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू
1: एक बार फिर हमारी तरफ से, बस बेस्ट विशेस।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।
1: तो नाज़रीन, ये थे मीन सरवर, जिनसे आज हमने बात की, बॉलीवुड एक्टर और सन ऑफ सॉइल, बस ऐसा कहना चाहिए मुझे। उन्होंने कोशिश तो हमेशा की यही कि हम हमारे यहाँ अपनी मिट्टी की खिदमत कैसे करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत कर रहे हैं और आगे भी खिदमत करते रहेंगे, और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने में अपना पूरा पूरा योगदान देंगे। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में होगी मुलाकात। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।
2: समीर, आप आकाशवाणी पॉडकास्ट समाप्त कर रहे थे। आज के इस पॉडकास्ट के मेहमान थे मीर सरवर, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। उनसे हम कलाम थे मीर तबरेज हुसैन मदनी, मामूनत सुहेल अहमद, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शब के 10:10 हो रहे हैं। पेश खदमत है प्रोग्राम आपकी फरमाइश।

बेशतर को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। इससे पहले कि आपके भेजे गए खतूत और ईमेल्स पढ़े जाएं, हम आपको प्रोग्राम का पता बता देते हैं। पता है, इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 19001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज फिल्म लोफर के एक गीत से करते हैं। आवाज लता मंगेशकर की है। इस नगमे को सुनना चाहते हैं गोहन बारामुला से गुलाम नबी परदेसी, मिसरा बेगम, फैसल, उमर, महक, इदरा और मजीद काक। बाना मोहल्ला राजदान कोचा न्यू फतेह कदल श्रीनगर से एडवोकेट अल्ताफ अहमद, संबलपुर कैंकर से फगू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, हयात कॉलोनी आर्या बिहार से ये हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सेवल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। ये ईमेल हमें मौसूल हुआ है कृष्णा पार्क दिल्ली से लिखने वाले हैं सुखविंदर सिंह जोधा और विसल दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराई, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ये हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वांकल, प्रथमेश देशमुख और कुमारी प्रणाली देशमुख। ये खत आया है नागवल राथर मोहल्ला से, लिखने वाले हैं गुलाम मोहम्मद राथर, मोहम्मद काक, ईमार साहब, रुबी जान, इमाम हबीब, औरूबा जान, अजान साहब, सीरत, सफूरा, निगहत जान, महता सलीम, जानी, मोहम्मद अशरफ और गुलाम मोहिद्दीन भट्ट। सीर हमदान से ये खत आया है, लिखने वाले हैं शाखसाज मोहम्मद इब्राहिम और उनके घर वाले। दोस्तों, आपकी फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज में हम नगमा सुनवाते हैं फिल्म लोफर से। नगमा सुनाने से पहले ये शेर। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे। दोस्तों, आज भी हमें आपकी ढेर सारे ईमेल्स और खतूत मौसूल हुए हैं, जिनमें से

आपने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लोफर से प्रोग्राम का पहला नगमा सुना। अब जो गीत हम आपकी फरमाइश पर पेश करने जा रहे हैं वो है फिल्म खतरों के खिलाड़ी से, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। इस नगमे को सुनना चाहते हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, ठाकुर केथल और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, हयात कॉलोनी आर्या बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान, फरहान, समीर एजम और गुड़िया, पद्मा टाकीज नीपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकार शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वन शाह, मंगला बिन शाह और राजेंद्र जी शाह, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदेन अब्बासी, सोहान अब्बासी, अर्जुन अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी खानदान के दूसरे अफराद। तो आप सभी दोस्तों को इंतजार होगा अपनी पसंद का नगमा सुनने का। तो लीजिए समाप्त कीजिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में फिल्म खतरों के खिलाड़ी से ये नगमा।

दोस्तों, अब जो नगमा आप सुनेंगे वो फिल्म रोटी से है, किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल हैं, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर। इस नगमे को इन दोस्तों ने सुनना चाहा है। ये हैं गांधी बाग अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय कटंकर। ये मेल हमें मिला है हमारे एक मुक्तदर सामयिक की तरफ से, जो कई सालों से इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे हैं और रेडियो के दीगर प्रोग्राम भी बाकायदगी के साथ सुनते रहते हैं। ये हैं आसार शरीफ जनाब साहब आंचार से साहिल डार, एजाज अहमद हमदानी, तारिक अहमद, फारूक अहमद मलिक, मोहम्मद आसिफ, कोंदू बसपोरा से गुलाम रसूल डार, उस्मान हमीद डार, दानिया और फलक। ये ईमेल आया है सलर पहलगाम से। लिखने वाले हैं पीरजादा मेराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और उनके दूसरे साथी। तेलंगाना बोंगिया से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और उनके दूसरे साथी। गांव दोराबंदा बाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। नागफिन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इन सामीन ने इस नगमे को सुनना चाहा है। ये हैं अब्दुल गफ्फार दावर, अब्दुल हक दावर, जियाउल हक दावर, मोहम्मद उमर दावर और राजेंद्र कटारे। आदर्श नगर मलूत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नेवान शर्मा, मांडी शर्मा, सोरू शर्मा और शाइना शर्मा। तो पेश है आप सब दोस्तों की फरमाइश पर फिल्म रोटी से ये नगमा।

आपने लता मंगेशकर की आवाज में नगमा सुना, फिल्म थी अजीबा। शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ एक नगमा। फिल्म है रूप तेरा मस्ताना। इस नगमे को इन दोस्तों ने पसंद फरमाया है। ये हैं अजीत नगर मलोट पंजाब से चंद्र सिंह छन्ना, सतना कौर, दिलप्रीत सिंह और सीएस बेगाना, चार डिंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू और इंद्रानी, कालाअंब नाहिन हिमाचल प्रदेश से रजाक मोहम्मद, शिम्यमा बेगम, इरफान खान, इमरान खान और रूबी। ये पोस्टकार्ड हमें मौसूल हुआ है श्रीनगर से बजरंगलाल शर्मा, कपिल शर्मा और दीगर साथियों की तरफ से, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, सोहैब खान और अरबाज खान। ये खूबसूरत खत हमें मिला है सरफाव कंगन से। लिखने वाले हैं लतीफ अहमद रैना, खालिदा जान, अफरोजा जी, रऊफ शेख, साहिल तनवीर, बनियारी मोहम्मद अशरफ डार, जान मोहम्मद डार और मंजूर अहमद डार। तो पेश खिदमत है आप सभी दोस्तों की पसंद का नगमा, मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा है रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। आइए सुनते हैं।

मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। जी सामी, ये हैं उस नगमे के बोल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है वारिस और गीत लिखा है वर्मा मलिक ने। इस नगमे को आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं। बामरादा खाक बीरवा से गुलाम कादरवानी, शाहीना, अनीसा, समीना, फरहान और रिजवान, इंदिरा चौक दिल्ली से आजम वखार, माहिरा आजम और नगमा आजम, निजाम आबाद तेलंगाना से शेखुल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम और मुन्ना, बारागाम बीरवा से नगमा मलिक, हीमू जान, ताहिरा, रजिया जान, तब्बू रानी, ड्राइवर मोहम्मद शफी, खालिदा जान, बिल्कुल।

जान, अशरफ डार, मंजूर डार, पीर अल्ताफ खान, तनवीर खान और अब्दुल अहद खान। इसी नगमे को इन दोस्तों ने भी पसंद फरमाया है। ये हैं मालीबुग इमाम साहब शुपायन से हिलाल अहमद खांडे, उनके साथी हैं हादिया, मदिया, सीरत, सालिक, रायहान और सफ्तर। यही नगमा इन दोस्तों की भी पसंद है। ये हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार दावर, अब्दुल खालिक दावर, जियाउल हक दावर, मोहम्मद उमर दावर और राजेंद्र कटारे। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

आप इस वक्त अपना चहिता प्रोग्राम आपकी फरमाइश समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। प्रोग्राम का अगला नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ है फिल्म झुक गया आसमान से। ये नगमा सुनना चाहते हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। लिखने वाले हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकबल और नफीसा परवीन। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से ये हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे।

गणेश, कार्तिक, फेरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। निजामाबाद तेलंगाना से शेखुल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम और मुन्ना। यह मेल हमें मिला है बरारा टाउन मुल्लाना अंबाला से। लिखने वाले दोस्त हैं रवि कुमार राहुल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, प्रयर, गुरु किरत राहुल और गर्शपत सिंह। दोस्तों लीजिए समाप्त कीजिए अपनी पसंद का नगमा फिल्म झुक गया आसमान से, और इस नगमे को अपनी मधुर आवाज से अमर बना दिया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, फिल्मी लगों के इस सफर में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं फिल्म तकदीर से एक नगमा। आवाज मोहम्मद रफी की है। इस गीत की फरमाइश की है चमन पारक दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अरीबा ने। पुराना तालाब दुमराव से ये हैं वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी। बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां,

इशरत जहां और मुकर जहां। इंदिरा विहार दिल्ली से ये हैं डब्ल्यू अंसारी, निशा अंसारी, सदफ आरजू अंसारी। ये ईमेल हमें मिला है चंदन नगर राजकोट से। भेजने वाले हैं कौशल्या जोशी और सोनाली जोशी। अंबाला से पाथक जट्टू और एस के जट्टू। ये फरमाइशी पैगाम हमें मिला है बिहार से। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब के मेम्बरान वसीम अकरम, सालिहा खातून और गुड़िया खातून। तो रफी साहब की आवाज और आपके बीच हाइल रहे बगैर हम आपको सुनवाते हैं यही प्यारा सा नगमा फिल्म तकदीर से।

दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी गीत पेश है जिसे सुनना चाहते हैं जबीगुल बिरवा से जावेद कश्मीरी। दरवेशबाग पटन से ये हैं हमारे मुस्तकिल सामय तौसीफ शौकी, छोटी और गुड्डी। गांव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद यूपी से ये हैं हमारे सामीन मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, मनु सुरेश, राजपाल पंकज, काजल बोरड, लक्ष सोनी, मोनी हार्तिक और बलोहर सिंह। वसन कंगन से फयाज अहमद कुच्छे और उनके दूसरे दोस्त। तवील इबारत पर मबनी ये खत हमें मौसूल हुआ है शिवाजी चौक कटनी से। लिखने वाले हैं अनिल तमराकर, अमर तमराकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनुज, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, राजन राजक, लालू, सोनिया, मोना, हनी, लिस और उनकी मम्मी डैडी। तो लीजिए, महजूज हो जाइए इस नगमे से जिसे गाया है लता मंगेशकर ने अपनी पुरसोज आवाज में। ये दिल एक मंदिर फिल्म का नगमा है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, शंकर जयकिशन की प्यारी सी मौसीकी में। तो समाप्त कीजिए प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

समीर, आप प्रोग्राम संवाद कर रहे थे, आपकी फरमाइश। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे जावेद अंद्राबी। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समय आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज हिंदी और अंग्रेजी खबरों के लिए। रिले का बस जरा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि

आरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समीन पयाम सुबह की नशियात में सुबह के 10:30 पर एक मेहमान भी शामिल होता है। कल प्रोग्राम में आरिया मीर, एसोसिएट हेड वाइल्ड लाइफ SOS जम्मू एंड कश्मीर शामिल होंगी। मौजू है जंगली हयातियात का तहफ़ समीन। सोमनाथ अमृत पारो के मौके पर कल सुबह के 11:10 पर वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी कौम से ख़िताब करेंगे। हम ये ख़िताब आकाशवाणी दिल्ली के वसादत से सुबह के 11:10 से बराए रास्त नशर करेंगे। समीन शक्री और रूप समाप्त करें सुबह के 11:30 पर अब्दुल खालिक कावा और साथी पेश करेंगे कलाम वहाब खार। इन्हीं से कलाम रहीम सब समाप्त करें 2:30 और कलाम शम्स फ़कीर 4:30 पर। समय ख़्वातीन की महफिल सजेगी प्रोग्राम बज़्मे रिस्वा में 12:40 पर। कल की बज़्म आप ही की फ़ोन कॉल से सजेगी। मेज़बान हैं शाहीन रेशी। NCERT का स्पॉन्सर प्रोग्राम नशर होगा 1:10 पर। सपहर 3:00 फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम नशर होगा। समीन पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 और गोजर प्रोग्राम रोज़ की तरह 5:00 नशर होगा। देहाती भाइयों के लिए प्रोग्राम नशर होगा गमी बायन हिंदी खतर 6:05 पर। हालत वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन रोज़ की तरह 7:00 और प्रोग्राम वादी की आवाज़ का वक्त रहेगा 8:00। समीन शब के 8:30 पर स्पोर्ट्स टाइम समाप्त करें। यह थी तफसील हमारे यहाँ से कल नशर होने वाले प्रोग्रामों की। समीन हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती है। कल मामूल के प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शब बख़ैर। जय हिंद।

कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है। अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही

0: कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है। अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही मौसम मिल जाए, तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है। लेकिन समस्या ये है, क्या उस बीज को मैं पहचान पाया? क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा, और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा, जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा। तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा, और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा। तो प्रतिफल दो तरह के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को। लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है। फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं, तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं। जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता, पवित्र हो सकता है। लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है।
1: जी, यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते हैं। जी, और कॉर्पोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं।
0: जी।
1: तो राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है, शांति। जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो वो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में। और आज का जो युग है आपाधापी का है, और हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं। ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है, और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है?
2: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला है।
1: जी,
2: एक व्यक्तिगत शांति की बात की, और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दोनों दो बातें हैं। बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं, पर्यत्ति, पटिपत्ति और पटिवेधन। पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं, पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
1: जी,
2: और पटिवेधन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं। तो जब हम अपने मन को, ये चीज उपनिषद में भी है
1: जी,
2: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस, अमनी भाव। अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
1: जी,
2: अगर आपके पास एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा, और जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए
1: जी।
2: हमें किस तरह की चीज सोचना है, हमें क्या सोचना है, ध्यान और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया
1: जी,
2: तो वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं, हर तरह के पाप को छोड़ देना, नहीं करना
1: जी,
2: कुशलस्य उपसंपदा, मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना, सचित्त परियोदपनं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, सचित्त परियोदपनं, एतान बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। तो सील का पालन करते हुए, मोरलिटी का पालन करते हुए, मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
1: जी,
2: आपको अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है। आपकी दूसरी बात थी
1: जी,
2: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है। एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास। विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना। जिस

0: जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए, ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा। उपयोग मानवों के ऊपर होगा, क्षति किसकी होगी, मानव की क्षति होगी, वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो, दुखों का नाश हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है
1: जी।
0: अगर हम टेरिटरी, आज इतिहास गवाह है, सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता, सब ने टेरिटरी जीता, किसी के पास आज वो नहीं है। इस सत्य को, इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी चीजें नश्वर हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है
1: जी।
0: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा
1: जी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है, ये कहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए, उनके दर्शन दिए, तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहां ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है, लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है, क्या वजह आप पाते हैं?
0: देखिए, ऐसा नहीं है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं है
1: जी।
0: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है
1: जी।
0: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जाते हैं सिक्किम में, मणिपुर के कुछ हिस्से में, लेह लद्दाख में, वहां की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है। एक तो ये बात
1: जी।
0: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं, हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है
1: जी,
0: लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है
1: जी,
0: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध को स्वीकार करता है, पूजन करता है, यजन करता है, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं
1: जी।
0: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है। हम तो सील का पालन करते हैं, हर भारतीय सील का पालन करता है, हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, हर चीज का अभ्यास करता है। हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है? है,
1: यानी हमारे व्यवहार में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है, वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है,
0: बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है। क्योंकि ये अच्छी बातें, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, जो सनातन शब्द है, जो सनातन परंपरा है, न ही बेरेन बेरानी सम्मंतित कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंती एस धम्मो सनातनो, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, मित्रता से बैर शांत होता है। अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है, भगवान बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि ही ऐसी है
1: जी।
0: हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है, शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है। इसीलिए हम पर पूरी दुनिया, मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
1: तो जो नैतिक मूल्य हमें, चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन

0: हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा जाए।
0: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रही हैं।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉरपोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है और बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाएगा, परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको दो दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी।
1: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं, और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापानासति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है, वो बैठे बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था स्कूल जाता था तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से स्कूल जाना, मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय कहता था बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और माल बेचने की बात होती है या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं, ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है। बट रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो।
0: क्योंकि यानी जो बातें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं कि बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें और शांत भी रहें, चीजों को समझें, है ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं।

0: मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं, कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
1: जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी, एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म है ही नहीं
0: जी।
1: जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है
0: जी।
1: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना, उन्हें लगता है वो धर्म है। असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज है
0: जी।
1: जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना
0: जी,
1: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है
0: जी,
1: वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्वता, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहां मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जब भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती हैं, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है
0: जी। तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं जी। बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: इकबाल फिल्म का एक गाना है आशाएं
0: जी, ये आपको पसंद है गाना
1: जी?
0: बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, पीयर प्रेशर एक महसूस होता है, ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम AI जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है, तो जहां कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है।
0: जी,
1: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है और ये हमें नॉलेज देने वाला है। क्योंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुज्जनिको अनरियो अनर्थ संगितो, यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आप की चर्चा में, परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा
0: जी।
1: है। मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो, राइट लाइवलीहुड। इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें जीवन जीना चाहिए
0: जी।
1: और यही सारी चीजें आगे बढ़ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
0: जी।
1: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाए मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
0: जी।
1: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं, जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है, माइंडफुलनेस पे आधारित है, जो मेडिकल साइंस की बात है
0: जी।
1: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को

0: कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए।
1: जी
0: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का, हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं, तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। अब एआई कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हम एआई के माध्यम से हर चीज को देखें समझें, लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
1: जी।
0: और नैतिक सील, समाधि और प्रज्ञा, हमें सील का पालन करते हुए, समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे, बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है, हम सील का विकास कर रहे हैं, सील का अभ्यास कर रहे हैं, हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
1: जी।
0: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो
1: जी।
0: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे, मनुष्य के, मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे, न कि ध्वंस के लिए करेंगे
1: जी।
0: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी, बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का, मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे, सदैव सामने रखे, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त परियोधपनं एतान बुद्धान शासनं। इसको ध्यान में रखे, कोई पाप न होने पाए, चित्त परिशुद्ध हो जाए, कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पूरे मानवता की शांति होगी, विश्व शांति होगी
1: जी। यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से, समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा। जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
0: बिल्कुल
1: जी। मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है। हम लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने। और अगर है भी रोजगार उनके पास, तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा है, एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि। और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको प्रयास के लिए प्रेरित करेगी असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
0: यहाँ भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है
1: जी।
0: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
1: जी,
0: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के बाद या 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है? जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
1: जी,
0: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
1: जी।
0: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे, या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु

0: का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपकू आंदोलन वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
1: जी।
0: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
1: जी,
0: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें, तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा, बेरोजगारी और असंतुष्टि, संतुष्टि परमंग धनंग की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे, और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्जवल, एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण, हर स्तर पे हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की, नियंत्रित रखने की बात करता है
1: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
1: जी,
0: हर समय दबाव में रखेंगे।

0: को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे। जब आप असंतुष्ट हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नहीं, भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है, और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है, और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत है।
1: संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
0: बिल्कुल
1: जी। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात न करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, वो करना चाहें, तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से वो ये सब पढ़ें जानें?
2: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं, जो आपको रीचेबल हो वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देर इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे

0: कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेंजी जो श्रोता हैं, वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्रयास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी न किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे, और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, नालंदा से आप जुड़े हैं, और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है, और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है, और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत साधुवाद।
1: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल

भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व और निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य का बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वो देखो जरा कि हौले हौले मध्यम मध्यम बह रही है ये पुरवैया, और न जाने कितना शोर करे, इटलाती जाए बहती जाए, मिट्टी की खुशबू लाए हवा में बहती जाए ये पुरवैया।

जिसको चाहते हो दिल से उसका सपना आता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा कि जिसको चाहते हो दिल से उसका सपना आता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा। ये सोच मैंने अपनी चादर खींच ली, कब आएगी ये नींद, ये सोच आंखें मिच ली।

इश्क के फूल खिलते हैं तेरी इन आँखियों में, इश्क के फूल खिलते हैं तेरी इन आँखियों में, जहां देखे तो वहां ये खुशबू बिखेर देती है।

लोग तो कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग तो अब भी कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, पर तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे।

मैं थक चुका हूँ जिंदगी से, तू मुझे अपने साथ ले चल। मैं थक चुका हूँ जिंदगी से, तू मुझे अपने साथ ले चल। कि एक मुद्दत से हूँ कुछ तो मुझसे बात कर।

अजीब कश्मकश है मोहब्बत की राहों में, सामने तुम हो तो लफ्ज नहीं मिलते, और जब तुम चले जाते हो कमी खलती है तुम्हारी, तुम्हारे जाने के बाद फिर तुम्हारी हर एक बात याद करके हम मुस्कुराते हैं।

दोस्तों, अभी होंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के सर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: कभी कभी
1: अजीब सी बेबसी है तुम्हें न देखने में, दिन कटता नहीं और रातें सोती नहीं, तुम पास हो तो हर चीज मुकम्मल लगती है, वरना जमाने की कोई खुशी अपनी होती नहीं।

तुम्हें क्या पता कि सदाबहार हो तुम और मेरी किस्मत हो मेरा इंतजार हो तुम। कोई बहार ना थी इस बहार से पहले, इसलिए मेरी जिंदगी की बहार हो तुम।

अब कौन घटाओं को घूमने से रोक पाएगा, अब कौन घटाओं को घूमने से रोक पाएगा। जुल्फ जो खुल गई तेरी, लगता है अब सावन आएगा।

खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं और सामने

जब मैं चलूं तो साया भी अपना साथ ना दे, जब मैं चलूं तो साया भी अपना साथ ना दे, और जब तुम चलो तो ये जमीन चले आसमां चले।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी।

उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 7 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कुछ सोचती हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलती हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी तो हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है।

अजब सा चैन था हमको कि जब थे हम बेचैन, अजब सा चैन था हमको कि जब थे हम बेचैन, करार आया तो जैसे बाकी करार जाता रहा।

ऐ दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद, ऐ दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी।

दोस्तों, कार्यक्रम गागरी के तहत अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना गोयल रहेंगे आपके साथ हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर

हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की दो दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात और राजस्थान में आज लू चलने के अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात की इस नरम चादर में चांद की हल्की रोशनी के साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम रहे, जहां बातें होती हैं दिल की, एहसासों की और उन जज्बातों की जो अक्सर होठों तक आ जाती है मगर शब्द नहीं बन पाते। मैं आपकी दोस्त, आपकी साथी अर्चना गोयल और अगले 50 मिनट तक हम साथ चलेंगे यादों में, मोहब्बत में, रिश्तों और जिंदगी के उन खूबसूरत पलों के बीच जिन्हें शायद आपने महसूस तो किया मगर कहा नहीं। आज की रात कहने सुनने की, आइए सुनते हैं ये नगमा।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत था फिल्म ब्रह्मचारी से। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर रोज बात नहीं करते, मगर जब भी दिल उदास हो तो सबसे पहले वही याद आते हैं। कभी सोचा है कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही इसलिए हैं ताकि हमें एहसास हो सके कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, महसूस करना भी होता है।

कभी कभी किसी का चुपचाप ख्याल रखना, उनके आने का इंतजार करना और बिना वजह मुस्कुरा देना, यही छोटे छोटे एहसास को खूबसूरत बनाते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी होता है एहसास, क्योंकि जहां एहसास खत्म हो जाए वहां शब्द भी खाली लगने लगते हैं। कहना

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गीत था फिल्म नगमा से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:29।

minute or thik 31 second. आज की रात जरा अपनी यादों की खिड़की खोलिए और याद कीजिए वो इंसान जिसे कभी आपकी जिंदगी में खुशबू की तरह दस्तक दी थी। वो पहली मुलाकात, वो पहली लंबी बातचीत और वो छोटी छोटी बातें जो आज भी दिल को मुस्कुरा देती हैं। अजीब बात है ना, वक्त गुजर जाता है मगर कुछ एहसास उम्र भर वहीं ठहरे रहते हैं।

प्रिय जिंदगी, शुक्रिया उन लोगों के लिए जो बिना किसी मतलब के साथ निभाते हैं, जो हमारी खामोशी पढ़ लेते हैं और उदासी में भी मुस्कुराना सिखा देते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हमराही है तो आप उसे सिर्फ इतना कह दीजिए, तुम हो, इसलिए जिंदगी खूबसूरत है।

चलिए अब एक शेर और कुछ जज्बात। रिश्ते मोहताज नहीं होते शब्दों के, बस एक एहसास काफी है जिंदगी भर के लिए।

कभी कभी इंसान भीड़ में भी अकेला होता है और कभी कभी एक की मौजूदगी पूरी दुनिया जैसी लगती है। इसलिए अपने अपनों के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, क्योंकि वक्त गुजर जाता है मगर प्यार से बोले गए शब्द हमेशा याद रहते हैं।

दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, बहुत करीब भी हो जाते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक दूरी रह जाती है। और फिर उनकी यादें हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती हैं। कभी देर रात जब सब सो जाते हैं, तब वही अधूरी बातें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं।

हर बात शब्दों से कही जाए जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते खामोशी से निभाए जाते हैं। कभी किसी की आंखें पड़िए, वहां अक्सर वो बातें मिल जाएंगी जो जुबां पर कभी आ नहीं पाई। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप शायद वही है जहां बिना कहे सब कुछ समझ में आ जाए।

अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी खामोशी को समझ ले, तो उसे कभी दूर मत जाने देना, क्योंकि जिंदगी में ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। इसी एहसास के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते के प्रयासों के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को अस्वीकार्य कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं पसंद नहीं आई हैं। इससे पहले ईरान ने कहा कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के माध्यम से भेजी गई, जो ईरान और अमरीका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्के ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने नहीं समझा जाना चाहिए। रूस के राजदूत सरगेई नेचायेव ने कहा है कि रूस नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच को लेकर चल रही चर्चाएं महाद्वीप के रणनीतिक संतुलन को बदल सकती है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास स्थित एक क्रूज जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकासी के लिए जहाज से उतारना शुरू कर दिया गया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत आइसोलेशन में रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो चैनल। समय हो चुका है सुबह के 4:11 और ठीक 8 सेकंड हुए हैं और हमेशा की तरह ये समय है कार्यक्रम अरुणिमा का। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज के दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना के साथ करते हैं। ये वही वक्त है जब हम ईश्वर को खुद से जोड़ते हैं। कहते भी हैं कि सुबह की बेला में भगवान से जुड़ने का सबसे सही समय होता है।

दोस्तों, आज अरुणिमा की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मंत्र। जो बीत गया वो सीख था, जो आने वाला है वो मौका है, और जो अभी है ये पल, यही असली जिंदगी है।

सुबह की शुरुआत में दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आसमान हमें क्या सिखाता है? रात चाहे कितनी भी अंधेरी रही हो, सुबह फिर भी आती है। यानी जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हों, उम्मीद हमेशा लौटती है। हर सुबह हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक सपनों को पूरा करने का और दूसरा फिर से सो जाने का। इसलिए उठिए, अपने दिन को प्यार से अपनाइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। चाय की खुशबू, ठंडी हवा, अपनों की मुस्कान, यही तो जिंदगी है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आपके साथ मैं हूं अर्चना गोयल। जिंदगी में हर दिन नया मौका आता है, लेकिन अक्सर हम बीते हुए कल का बोझ लेकर आज को भी भारी बना देते हैं। याद सूखे पत्तों को पकड़ कर नहीं रखते, तभी तो नए पत्ते आते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ पुरानी तकलीफों को छोड़ना चाहिए। कभी खुद के लिए भी समय निकालिए, थोड़ी देर शांत बैठिए, अपने मन की आवाज सुनिए।

सुबह की हवा में एक अलग ही जादू होता है। ये मन को शांत करती है, उम्मीदों को जगाती है। कभी सुबह उठकर आसमान को देखिए, लगता है जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, मुस्कुराओ, आज का दिन खूबसूरत है।

सकता है। कभी अपनों से कहकर देखिए कि आपका दिन शुभ हो। छोटे शब्द हैं लेकिन दिल को सुकून देते हैं। रिश्तों को समय दीजिए क्योंकि जिंदगी की असली खुशी रिश्तों में ही छुपी होती है।

एक छोटी सी कहानी। एक बुजुर्ग माली रोज सुबह अपने पौधों को पानी देता था। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों? कुछ पौधे तो सूख चुके हैं। तो माली मुस्कुराया, मैं फूलों की उम्मीद में मेहनत करता हूं, क्योंकि प्रकृति कभी मेहनत बेकार नहीं जाने देती। दोस्तों, आपकी कोशिशें भी एक दिन जरूर खिलेंगी, बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए। आज की प्रेरक पंक्ति, धीरे चलिए मगर कभी रुकिए मत।

बाहर की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए, कुछ पल ईश्वर के समीप आकर बिताइए, मन को शांत रखकर एक चाय का कप लेकर धीरे धीरे प्रकृति को निहारिए। यकीन मानिए, जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत सोच और मुस्कुराहट के साथ आप मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। उम्मीद है अरुणिमा की ये सुबह आपके मन को सुकून और नई ऊर्जा दे पाई होगी। हमेशा खुश रहिए और हर सुबह को नए सपनों के साथ अपनाइए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने

0: वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी शीर्ष में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आशा है कि नया मंत्रिमंडल भाजपा के चुनावी वायदों पर चर्चा करेगा। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। नवनिर्वाचित विधायकों के भी बैठकों में शामिल होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 18वें सत्र के नवनिर्वाचित सदस्य बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तापस रॉय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थीं। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि हता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनसे वायरस के कोई लक्षण नहीं हैं। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा है कि चालक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे दोनों भारतीयों को नीदरलैंड ले जाया जाएगा, जहां उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbh Abhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat, Nabanna today. Portfolios are expected to be distributed among the 5 ministers who took the oath of office and secrecy along with the chief minister on Saturday at the Brigade Parade Ground. The new cabinet is expected

आप सुन रही हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मैं आपके साथ अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, सुबह की इस सुनहरी बेला में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम

सुहानी में अगले 40 मिनट तक हम साथ चलेंगे प्रकृति की उन राहों में जहां ओस की बूंदों में उम्मीद चमकती है, जहां हवाओं में ताजगी बसती है और जहां हर नई सुबह हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है। पॉजिटिव विचारों के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सुनते हैं ये गीत।